कृपा कृपा कर साध मलावहु जग थम्मन को थम दीजै बसदा तले तले सब ऊपर मिल साधु चरण रुलीजै अति उत्तम अति उत्तम हो सब सिष्ट चरण तल दीजै गुरमुख जोत भली सिवनी की आन पानी सकत परीजै मैन दंत निकसे गुर बचनी सार चब चब हर रस पीजै राम नाम अनग्रह बहु किया गुर साधु पुरख मलीजै गुण राम नाम बिसथीरन किए हर सगल भवन जस दीजै साधु साध साध मन प्रीतम।

राग राग प्रभाती बेपास महला पहला चौपदे कर पहला नाए तेरे तरना नाए पत पूज नाऊ तेरा गहना मत मकसूद नाए तेरा नाऊ मन्ने सब कोए विण नावै पत कबहु ना होए।

कहो जम की तलब ना होई प्रभाती महला पहला जां कै रूप नाही जात नाही नाही मुख मासा सतगुर मिले निरंजन पाया तेरा नाम है।

जल जाए। प्रभाती महला पहला अमृत नीर ज्ञान मन मज्जन अठ सठ तीरथ संग गए। गुर उपदेश जवाहर मानक सेवे सिख सो खोज लह।

जाकी वास बनास पत सौर है तास चरण निव रही है। गुरमुख जी प्राण उपज है गुरमुख सेव कर जाई है। गुरमुख नानक सच समाई है गुरमुख निज पद पाई है। प्रभाती महला पहला गुर प्रसादी विद्या विचार है। पढ़ पढ़ पावे मान आपा मदे आप परगासिया।

लाव पंच तस कर तावत राखी चूका मन अभमान दिष्ट विकारी दुर्मत भागी ऐसा ब्रह्म ज्ञान जत सत चावल दया कनक कर प्राप्त पाती तान दूध कर्म संतोख घीओ कर ऐसा मांगो दान खिमा धीरज कर गऊ लवेरी सहजे बछरा खीर पिए सिफत शर्म का कपड़ा मांगो हर गुण नानक रवत रह प्रभाती महला पहला आवत किने ना राखिया।

मन जोगी मन भोगिया मन मूर्ख गवार मन दाता मन मंगता मन सिर गुर करतार पंच मार सुख पाया ऐसा ब्रह्म विचार घट घट एक वखाणिया कहो ना देखिया जाए खोटो पूठो रालिए मिन नावे पत जाए जा तू मिल है ता मिल रहा जा तेरी होए रजाए जात जन्म नह पूछिए सच घर लेहो बताई सा जात सा पत है जेहे कर्म कमाए जन्म मरण दुख काटिए नानक छूट सुनाई प्रभाती महला।

जाने, जिसनो नजर करे सोई बिद जाने। मैं मैलो उजल सच सोए, उत्तम आख ना उचा होए, मनमुख खूल महा बिख खाए।

कह कहावे सोई प्रभाती महला पहला खाया मैन बधाया पेंदे घर की हान बक बक वाद चलाया बिन नावे बिख जान बाबा ऐसा बिकम जाल मन वासिया बिबल झाग सहज प्रगासिया रहाउ बिख खाना बिख बोलना बिख की कार कमाए जम दरबादे मारिया छूटस साच नाई जिव आया तिव जाए सी किया लिख ले जाए मन मुखमूल गवाया दरगाह मिले सजाए जग खोटो सच निर्मलो

निजर चरै अमर आनंद स्वरूप नानक जल को मीन सै थे पावै राखो प्रीत प्रभाती महला पहला गीत नाद हरक चतुराई।

श्री किरण रस कमल बिगासी सस कर सूर समाया काल बिंदु सुमनसा मन मारी गुर प्रसाद प्रभ पाया आतरस रंग च लूलै राती दूजा रंग न कोई नानक रसन रसाए राते रव रहे आ प्रभ सोई प्रभाती महला पहला बारह मह रावल खप जावह चौ छे मह सन्यासी जोगी का पड़िया सिर कूथे बिन शब्द गल पासी शब्द रते पूरे बैरागी औ हठ हस्त मह भीखे आ जाची एक पाए लिव लागी रहा ब्राह्मण वाद पढ़े कर क्रिया करनी कर्म कराए बिन बूझे किस सूझे नाही मन मुख विछड़ दुख पाए शब्द मिले से सूचाचारी साची दरगाह माने आन दिन नाम रतन लिव लागे जुग जुग साच समाने सगले कर्म धर्म सुच संयम जप तप तीरथ शब्द वसे नानक सतगुर मिले मलाया दुख परासत काल नसे प्रभाती महला पहला संता की रेण साध जन संगत हर कीरत तर तारी कहां करे बपरा जम डरपे गुरमुख हृदय मुरारी जल जाओ जीवन नाम बिना हर जप जाप जपो जप माली गुरमुख आवे साध मना रहाउ गुर उपदेश साच सुख जाको क्या तिस उपमा कही है लाल जवेहर रतन पदार्थ खोजत गुरमुख लही है तीन ज्ञान ध्यान तन साचो एक शब्द लिव लावे निरालंब निरहार निह केवल निरपहु ताड़ी लावे शायर सप्त भरे जल निर्मल उल्टी नाव तरावे बाहर जातो ठाक रहावे गुरमुख सहज समावे सो गिरही सो दास उदासी जिन गुरमुख आप पछानिया नानक कह अवर नहीं दूजा साच शब्द मन मानिया राग प्रभाती महला तीजा चौपदी।

साच रहै लिवलाई, हर हर नाम जपहु जन पाई। गुर प्रसाद मन अस्थिर हुए, अन दिन हर रस रहिया आगाई रहाउ। अन दिन भगत करहु दिन राती, इस जुग का लाहा पहाई। सदा जन निर्मल मैल न लागे, सच नाम चित लाई। सुख शिंगार सतगुरु दिखाया, नाम वड्डी वड्याई। अखोट भंडार भरे कदे तोट ना आवे, सदा हर सेव पाई। आपे करता जिसनो देवे, तिस वसै मन आई। नानक नाम त्याए सदा तू, सतगुर दिया दिखाई।

सच पाए प्रभाती महला तीजा जो तेरी सरनाई हर जियो तिन तू राखन जोग तुद जेवड़ मैं अवर ना सूजै ना को हुआ ना होग हर जियो सदा तेरी सरनाई ज्यों पावै त्यों राख।

शब्द समाहे प्रभाती महला तीजा गुरमुख हर जियो सदा त्यावहु जब लग जी परान गुर शब्दी मन निर्मल हुआ चूका मन अभमान सफल जन्म तिस प्राणी केरा हर कै नाम समान मेरे मन गुर की सिख सुनी जै हर का नाम सदा सुख दाता सहजे हर रस पीजै रहाऊ मूल पछाणन तिन निज कर वासा।

हुई गुरमति मन निर्मल हुआ अमृत तत्व खाने हर का नाम सदा मन वसिया विच मन ही मन माने सद बलिहारी गुरे अपने बिटो जित आत्म राम पछाने मानस जन्म सतगुरु ना सेविया बिरथा जन्म गवाया नदर करी ता सतगुर मेले सहजे सहज समाया नानक नाम मिले वडियाई पूरे भाग त्याया प्रभाती महला तीजा आपे भांत बनाए बहुरंगी।

अमर दे अंतर पायो, गुरमंत दियो हर कान रहाओ। आवहु संत मिलो मेरे पाई, मिल हर हर नाम बखान। कित बिद क्यों पाइए प्रभ अपना, मोको करहो उपदेश हर दान। सत संगत मह हर हर वसिया, मिल संगत हर गुण जान। बड़े भाग सत संगत पाई, गुर सत गुर परस भगवान। गुण गाव है प्रभ अगम ठाकुर के, गुण गाए रहे हैरान। जन नानक को गुर कृपा तारी, हर नाम दियो खिन दान। प्रभाती महला चौथा, उगवे सूर गुरमुख हर बोल है, सब रैन समाल है हर गाल। हमरे प्रभ हम लोच लगाई, हम करह प्रभु हर पाल। मेरा मन साधु धूर रवाल, हर हर नाम दरडायो गुर मीठा। गुर पग चार है हम बाल रहाओ, साकत को दिन रैन अंधारी। मोहे फाथे माया जाल, खिन पाल हर प्रभ हृदय ना वस्यो। रिन बांधे बहु विदबाल, सत संगत मिल मत बुद्ध पाई। हौ छूटे ममता जाल, हर नामा हर मीठ लगाना। गुर की ये शब्द निहाल, हम बारिक गुर अगम गुसाई। गुर कर कृपा प्रतपाल, बिख पौ जल डुब दे काढ़ ले हो प्रभ। गुर नानक बाल गोपाल, प्रभाती महला चौथा। एक खिन हर प्रभ कृपा तारी, गुण गाए रस कर सीक। गावत सुनत दो पय मुक्ते, जिन्ना गुरमुख खिन हर पीक। मेरा मन हर हर राम नाम रस पीक। गुरमुख नाम शीतल जल पाया, हर हर नाम पिया रस चीक रहाओ। जिन हर हृदय प्रीत लगानी, तिन्ना मस्तक उजल टीक। हर जन सोभा सब जग ऊपर, जो विच उडवा सस कीक। जिन हर हृदय नाम ना वस्यो, तिन सब कारज फीक। जैसे शिंगार करे देह मनुख, नाम बिना नकते नक कीक। घट घट रमैया रमत राम राई, सब वरतै सब मह ईक। जन नानक को हर कृपा तारी, गुर बचन त्यायो करी मीक। प्रभाती महला चौथा, अगम दयाल कृपा प्रभ तारी। मुखार हर नाम हम कहे, पतत पावन हर नाम त्यायो। सब किल विख पाप नहे, जप मान राम नाम रव रहे। दीन दयाल दुख पंजन गायो, गुरमत नाम पदार्थ लहे रहाओ। काया नगर नगर हर बस्यो, मत गुरमत हर हर सहे। शरीर सरोवर नाम हर प्रगट्यो, कर मंदर हर प्रभ लहे। जो नर परम परम उदयानी, ते साकत मूड मोहे। ज्यो मृग नाभ बसै बास बसना, भ्रम भ्रम्यो चार गहे। तुम वड अगम अगाद बोध प्रभ, मत देव हो हर प्रभ लहे। जन नानक को गुर हाथ सिर धरयो, हर राम नाम रव रहे। प्रभाती महला चौथा, मन लागी प्रीत राम नाम हर। हर जप्यो हर प्रभ वडफा, सतगुर बचन सुखाने ही अरै। हर तारी हर प्रभ कृपफा, मेरे मन पज राम नाम हर निमखफा। हर हर दान दियो गुर पूरै, हर नामा मन तन बस पा रहाउ। काया नगर वसेउ घर मंदर, जप सोभा गुरमुख कृपफा। हलत पलत जन भए सोहेले, मुख उजल गुरमुख तरफा। अनुपव हर हर हर लिव लागी, हर उर तारयो गुर निमुख पा। कोट कोट के दोख सब जन के, हर दूर किए एक पल फा। तुमरे जान तुम ही ते जाने, प्रभ जान्यो जन ते मुख फा। हर हर आप धरयो हर जन मह, जन नानक हर प्रभ एक फा।
प्रभाती महला चौथा गुर सतगुर नाम दरड़ायो हर हर हम मोए जीवे हर जप भा तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा बिख डुब दे बाहां दे कड बहा जप मन राम नाम अरधंबा उपजंप पाए ना पाईए कतहु गुर पूरै हर प्रभ लाभा रहाउ राम नाम रस राम रसायन रस पिया गुरमत रस भा लोहो मनूर कंचन मिल संगत हर उर तारियो गुर हर भा हों मैं बिखिया नित लोभ लोभाने पोत कलात मोहे लुग भा तिन पग संतना सेवे कबहू ते मन मुख पूंबर परबा तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो हम परे हार तुम सरन भा ज्यो जानो त्यो राखो स्वामी जन नानक दास तुमन भा शका एक प्रभाती बेपास पड़ताल महला चौथा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद जप मन हर हर नाम निदान हर दरगाह पावह मान जिन जपया ते पार प्राण रहाओ सुन मन हर हर नाम कर ध्यान सुन मन हर कीरत अठसठ माजान सुन मन गुरमुख पावह मान जप मन परमेश्वर प्रधान खिन खोवै पाप कुटान मिल नानक हर भगवान प्रभाती महला पंजवा बेपास एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन हर किया तन सब साजिया पंच तत रच जोत निवाजिया सहजा धरत बर्तन कौ पानी निमख ना वसारहु सेव हो सारग पानी मन सतगुर सेव होए परम गति हरख सोग ते रह निरारा ता तू पावह प्राण पते रहाउ कापड़ भोग रस अनक पुंचाए मात पिता कटंब सगल बनाए रिजक समाहे जल थल मीत सो हर सेव हो नीता नीत तहां सखाई जह कोई ना होवे कोट अपराध एक खिन महत होवे।

साध संगत में बसे गोपाल, गुर मिल आए तुमरे द्वार, जन नानक दर्शन देहु मरार, प्रभाते महला पंजवा, प्रभ की सेवा जन की शोभा, काम क्रोध मिटे तिस लोभा, नाम तेरा जन कै भंडार।

कै रंग तिन सुख पाया प्रभ कै संग जिस रस आया सोई जाने पेख पेख मन मह हैरान सो सुखिया सब ते उत्तम होए जां कै हृदय वस्या प्रभ सोए सोई निश्चल आवे ना जाए अन दिन प्रभ के

सेवा, नानक उदर है जन की सेवा। प्रभाती महला पंजवा, गुण गावत मन हुए आनंद, आठ पहर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कल मल जाहे, तिस गुर की हम चरनी पाहे, समत देव हो।

पल जाई अगमे अगोचर बेअंत स्वामी ताका अंत न पाइये लाहा खाट हुई तनवंता अपना प्रभु ते आइये आठ पहर पार ब्रह्म ते आई सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ पार ब्रह्म गुर पाया प्रभाती महला पंजवा सिमरत नाम किलबिख सब नास्ते सच नाम गुरदीनी रास्ते प्रभ की दरगाह सुभावंते सेवक सेव सदा सोहंते हर हर नाम जपो मेरे भाई सगले रोग दोख सब बिन सह अज्ञान

होई। सदा सदा प्रभ जी कै संग, उत्तरी मैल नाम कै रंग। चरण कमल स्यों लागो प्यार, बिनसे काम क्रोध अहंकार। प्रभ मिलन का मार्ग जाना, पाए भगत।

गुरपूरा पाइय वडभागी निर्मल पूर्ण रीत रहाउ पाया लाभ बजी वधाई संत प्रसाद हर के गुण गाई सफल जन्म जीवन परवान गुर प्रसादी हर रंग मान बिरसे काम क्रोध अहंकार नानक गुरमुख उतरह पार प्रभाती महला पंजवा गुर पूरा पूरी ताकी कला गुर का शब्द सदा

चरण पूजारी मुख उज्जल साचे दरबारी जिस मस्तक गुर तरिया हाथ कोट मदे को विरला दास जल थल मैयल पेख भरपूर नानक उदरस तिस जन की तूर प्रभाती महला पंजवा कुरबान जाई गुरपूरे अपने जिस प्रसाद हर हर जप जपने रहाउ अमृत बाणी सुनत निहाल बिनस गए बिखिया जंजाल साच शब्द स्यों लागी प्रीत हर प्रभ अपना आया चीत नाम जपत हुआ प्रगास गुर शब्दे की नारदय निवास गुर समरथ सदा दयाल हर जप जप नानक पय निहाल प्रभाती महला पंजवा।

संत संगत मिल पया प्रगास, हर हर जपत पूर्ण पई आस। सर्ब कल्याण सुख मन बूठे, हर गुण गाए गुर नानक तूठे। प्रभाती महला।

क्रोध अहंकार बिनसै लगै कै प्रीत रहाउ। नाम लागै दुख भागै शरण पालन जोग। सतगुर भेटै जम ना तेटै जिस तुर होवै संजोग। रैन दिन सत्याए हर हर तजहो मन के भरम। साध संगत हर मिलै।

लोभ मोह बिन सजाए हं ताप रहाउ आप त्याग संत चरण लाग मन पवित्र जाहे पाप नानक बारक कछु ना जानै।

फुन बंद ना पाया, सतगुर राखे नाम दिरडाया, ना मन मरे ना माया मरे, जिन किश किया सोई जाने, शब्द विचार भव सागर तरे, रहाउ माया संच राजे अहंकारी, माया साथ ना चले प्यारी, माया ममता है बहुरंगी।

नानक खोज लहै जन कोई प्रभाती महला पहला माया मोहे सगल जग छाया कामन देख काम लुभाया सुत कंचन सिंह हेत बधाया सब किसे अपना एक राम पराया ऐसा जाप जपो जप माली दुख सुख पर हर भगत निराली रहाउ गुण निदान तेरा अंत ना पाया साच शब्द तुझ माहे समाया आवा गौण तुद आप रचाया सेई भगत जिन सच चित लाया ज्ञान ध्यान नरहर निर्वाणी बिन सतगुर भेटे।

मन वसाए विषम बनोद रहे परमादी गुरमत मानिया एक लिव लागी देख नवारिया जल मह आगी सो बूझै होवै बड़ भागी।

आदि दुष्टि सभा विगुती है बिकवाती जीवन बाद। हे ब्रह्म भूले मरो ना कोई सतगुर सेव सदा सुख होई। बिन सतगुर मुक्त किने ना पाई आवह जाहे मरह मर जाई। एहो शरीर है त्रै।

मर जान, नानक नदरी नदर पछाण। प्रभाती महला पहला दखनी, गौतम तपा अहल्या स्त्री। तिस देख इंद्र लोभाया, सहस शरीर चिहन पग हुए। ता मन पछोताया, कोई जान न भूलै पहा।

आई करो अढ़ाई धरती मांगी बावन रूप बहाना क्यों पयाल जाए क्यों चलिए जे बल रूप पछाना राजा जनमेजा दे मती बर्ज ब्यास पढ़ाया तिन कर जग अठारह कहाय कीर्तना चले चलाया गणत ना गणी हुक्म पछाना बोली भाई सुपाई जो किछ वरतै तुदै सलाही सब तेरी वडियाई गुरमुख अलिपत लेप कदे ना लागै सदा रहै सरनाई मनमुख मुगद आगै चेतै नाही दुख लागै पछताई आपे करे कराए करता जिन एह रचना रचियै हर अभमान ना जाई जियो अभमाने पै पचियै भुलण विच किया सब कोई करता आप ना भुलै नानक सच नाम निस्तारा को गुर प्रसाद अकुलै प्रभाती महला पहला आखना सुनना नाम आधार धंधा छुटक गया बेकार ज्यों मनमुख दूजै पत

इस मन माया मोहे बनास, तुर हुक्म लिखिया ता कही है कास। गुरमुख विरला चीना कोई, नाम बिहु ना मुक्त ना होई। ब्रह्म ब्रह्म डोले लख चौरासी, बिन गुर बूझे जम की फासी। एहो मनुआ खिन खिन ऊब पयाल, गुरमुख छूटे नाम संभाल। आपे सदे ढिल ना होई, शब्द मरे सहला जीवे सोई। बिन गुर सूझी किसे ना होए, आपे करे करावे सोए। झगड़ चुकावे हर गुण गावे, पूरा सतगुर सहज समावे। एहो मन

जस कर्म धर्म पथ पूजा काम क्रोध अग्नि मैं पूजा हर रस चाखिया तौ मन पीजा प्रणवत नानक अवर ना दूजा प्रभाती महला पहला राम नाम जप अंतर पूजा गुर शब्द विचार अवर नहीं दूजा एको रव रहया सब ठाई अवर ना दिसै किस पूज चढ़ाई रहाउ मन तन आगे जियड़ा तुझ पास जो पावे त्यो रखो अरदास सच जिहवा हर रसन रसाई गुरमत शू

भूख पयाली जब लग शब्द ना जाने भूख पिया सह जग पया तिपत नहीं बिन सतगुर पाई सहजै सहज मिले सुख पाई दरगाह पैंदा जाई दरगाह दाना बिना एक आपे निर्मल गुर की बाणी आपे सुरता सच विचारस आपे बूझै पद निर्वाणी जल तरंग अग्नि पवन फुन त्रै मिल जगत उपाया ऐसा बल शल तिनको दिया हुक्मी ठाक रहाया ऐसे जन विरले जागे अंदर परख।

तीर्थ से निर्मल दुख हो मैं मैल चुकाया। नानक तिनके चरण पखाले जिन्ना गुरमुख साचा पाया।

ज्ञान रतन प्रगट होए, मनमुख मूल ना जाननी, मानस हर मंदर ना होए, हर मंदर हर जियो साजिया,

जन निर्मल हर कै नाम समाई, हर मंदिर हर का हाट है रखिया शब्द सवार, तिस विच सौदा एक नाम गुरमुख नैन सवार, हर मंदिर में मन लोहट है मोहया दूजे पाई, पारस भेटिया कंचन भया कीमत कही ना जाई, हर मंदिर में हर वसै सर्ब निरंतर सोई, नानक गुरमुख वणजीऐ सच्चा सौदा होय, प्रभाती महला तीजा तै पाए जागे से जन जागरण करह हउ मैं मैल उतार, सदा जाग है कर अपना राख है पंच तस्कर काढ़ मार, मन मेरे गुरमुख नाम ते आई जित मार्ग हर पाई है, मन से ही कर्म कमाए रहाओ गुरमुख सहज तुन उपजै दुख हो मैं विचों जाई, हर नामा हर मन वसै सहजे हर गुण गाई, गुरमती मुख सोहणे हर राखिया उर तार, ऐतै उतै सुख घणा जप हर हर उतरे पार, हउ मैं विच जागरण ना होवई हर

कीड़े बिस्ताराते, मर जम्मह होहे खुआर। जिनको सतगुर भेटिया तिन्ना विटोह बल जाऊं, तिनकी संगत मिल रहा सच।

पूरा भाग गुर पाईए उपाय किते ना पाया जाय। सतगुर ते सहज उपजे हम शब्द जलाई। हर सरनाई भज मन मेरे सब किछ करने जोग। नानक नाम ना विसरे जो किछ करे सो होग। बेपास प्रभाती महला पंजवा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मात पिता भाई सुत बनता चूगह चोग आनंद सिंह जुगता।

गई विखोट गुर कृपाल मोहि कीनी छोट एह ठगवारी बहुत घर गाले हम गुर राख लिए कृपाले काम क्रोध स्यों ठाठ न बनिया गुर उपदेश मोहे कानी सुनिया जह देखो तह महा चंडाल राख लिए अपने गुर गोपाल दस नारी मैं करी दोहागन गुर कहया ए रसह बिखागन इन संबंधी रसातल जाई हम गुर राखे हर लिव लाई अहम मेव स्यो मसलत छोड़ी गुर कहया एह मूरख होड़ी एह नी कार कार कहीं ना पाई हम गुर राख लिए लिव लाई इन लोगन स्यो हम भये बैराई एक ग्रह मह दुए ना खटाई आए प्रभ पह अंचर लाग करहु तपावस प्रभ सरबाग।

आसोए तिस बिन बीजो नाई कोए बैर बरोध शेडे पै परमा प्रभ पुन्य आत्मै कीने धर्मा महा तरंग ते कांडै लागा जन्म जन्म का टूटा गांडा जप तप संयम नाम संभालिया अपने ठाकुर नदर निहालिया मंगल सुख कल्याण तथाई जह सेवक गोपाल गुसाई प्रभ सो प्रसन्न।

तेरा पाणा, जो इव बूझै सो सहज सुमाणा। कहत कबीर किल बिख गए खीना, मन भया जग जीवन लीना। प्रभाती अल्लाह एक मसीत बसत है, अवर मुल्क किस

निधाना कहां उड़ीसे मजन किया क्या मसीत सिर नाए दिल में कपट निवाज गुजारे क्या हज का पै जाए एते औरत मर्दा साजे ए सब रूप तुम्हारे कबीर पूंगरा राम अल्लाह का सब गुर पीर हमारे कहत कबीर सुनो नर नरवे पर हो एक की सरना केवल नाम जपो रे प्राणी तब ही निश्चय तरना प्रभाती अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे लोगा परम ना भूलो पाई खालक खलक खलक मह खालक पूर रहो सब ठाई रहाउ माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे ना कछ पोच माटी के भांडे ना कछ पोच कुंभारे।

ते मन का भरम ना जाई रहाओ। पकर जियो आनिया देह बिनासी, माटी को बिस्मिल किया, ज्योत स्वरूप अनाहत लागी, कहो हलाल क्या किया। क्या उजू पाक किया मुंह धोया, क्या मसीत सिर लाया, जो दिन में कपट नवाज गुजार हो, क्या हज का बह जाया। तू ना पाक पाक नहीं सूझिया, तिसका मर्म ना जानिया, कह कबीर पिस्त ते चूका, दोजक स्यो मन मानिया। प्रभाती सुन संध्या तेरी देव देवाकर, अदपत आद समाई, सिद्ध समाधि अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई। लेहो आरती हो पुरख निरंजन, सतगुर पूजो पहाई, ठाढ़ा ब्रह्मा निगम बीचार, अलख ना लखिया जाई। रहाओ तत तेल नाम किया बाती, दीपक दे उजियारा, ज्योत लाए जगदीश जगाया, बूझे बूझनहारा। पंचे शब्द अनाहद बाजी, संगे सारिंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्बाणी।

व्यापी निर्भउ समत बिचारी जो जन जान भजह पुरखोत्तम ताकी अवगत बाणी नामा कह जग जीवन पाया हृदय अलख बिडाणी प्रभाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत ना जानिया सर्व निरंतर राम रहिया रव ऐसा रूप बखानिया गोविंद गाजै शब्द बाजै आनंद रूपी मेरो रामैया रहाउ बावन बीखु बन बीखे बास ते सुख लागेला सर्वे आद परमलाद काष्ट चंदन पहला तुम चे पारस हम चे लोहा संगे कंचन पहला तू दयाल रतन लाल नामा साच समायला प्रभाती अकुल पुरख एक चलते उपाया काट काट अंतर ब्रह्म।

बिखियन स्यो अत लुभान मत नाहिन फेरी रहाउ मानस को जन्म लीन सिमरन नह निमुख कीन दारा सुख पयो दीन पगहों परी बेरी नानक

पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूजस बगल समाधं मुख झूठ बेभूखन सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गल माला तिलक लाटं दोए धोती बस्तर कपाटं जो जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चय कर्मं कहो नानक निश्चौ त्यावै बिन सतगुर बाट ना पावै निःपलंग तस्य जन्म से जावद ब्रह्म ना बिंदते सागरं संसार से गुर प्रसादी तरह के कर्म कारण समर्थ है कहो नानक विचार कारण करते वास है जिन काल रखी तार जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ता ब्राह्मण है क्षत्रिय शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं ता एक शब्दं

तादि कतंच माता कतंच पिता कतंच बनता विनोद सुतह कतंच प्रात मीत हित बंधव कतंच मोह कटंबयति कतंच चपल मोहनी रूपं पेखंते त्यागं क्रोत रहंत संग भगवान सिमरन नानक लभदेहं अचुत तनह किरगंत मात पिता स्नेहं त्रिग स्नेहं प्रात बांधवह त्रिग स्नेहं बंता बलास सुतह त्रिग स्नेहं गिरहार्थ कह साध संग स्नेहे सत्यं सुखियं बसंत नानक है मिथ्यंत देहं खिनंत बलनं बरदंत जरुआ हित्यंत माया अत्यंत आसा अथित्य पवनं गनंत स्वासा पयान धर्मं पतंत मोह कूप दुर्लभ्य देहं तात आश्रयं नानक गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल कृपा काच कोटं रचंत तोयं लेपनं रक्त चरमन है नमंता द्वारं पीत रहतं बाय रूपंग असथंबन है गोविंद नामं नह सिमरंत अज्ञानी जानंत अस्त्रिं दुर्लभ दे उदरंत साध सरन नानक हर हर हर हर हर हरे जपंत सुभंत त्वं अच्युत गुणज्ञं

विलंब पापं दृढ़ंत नामं तजंत लोभं सरण संतं किल बिखनासं प्राप्तं धर्म लखियण नानक जेह सो परसन माधवह मृत मोहं अल्प बुद्धिहं अरचंत बनता बनोद साहं जौवन बह क्रम कनक कुंडल विचित्र मंदर सोभंत बस्तरा इत्यंत माया व्यापकं हे अच्युत सरण संत नानक ओ भगवानी नमः जन्मंता मरणं।

वर्तंत बनासनं गोविंद भजन साध संगेन अस्त्रिं नानक भगवंत भजनासनं किरपंत हरियं मत तत् ज्ञानं बख्शी देह बुधा कुशल थानं बसे अंतरिक्षं त्याग मानं शीतलंत हृदयं दृढ़ संत ज्ञानं अरहंत जन्मं हर दर्शलीना बाजंत नानक शब्द बीना कहंत बेदा गुणंत गुनिया सुनंत बाला बहु विद प्रकारा दृढ़ंत सो विद्या हर हर कृपाला।

एक जठरागन नह सिमरंत मलीन बुद्धिहं हे गोविंद करत माया नानक पतत उदारन साध संग मह गिरंत गिर पतत पतालं जलंत दे दीपय वैसवांतर है बहंत अगाह तोयं तरंगं दुखंत ग्रह चिंता जन्मं तामरन है अनक साधन ना सिद्ध्यते नानक अस्थंबं अस्थंबं अस्थंबं शब्द साध स्वजन है कोर दुखियं अनक हत्यं जन्म दारिद्रं महाभिख्यादं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ठ पसमं करोत अंधकार सिमरत प्रकाशं गुण रमंत अग खंडन है रिद बसंत भय भीत दूत है कर्म करत महा निर्मल है जन्म मरण अरहंत सरोता सुख समूह अमोघ दर्शन है शरण जोगं संत प्रिय नानक सो भगवान खेमं करोत पाशं क्रोत अग्रणी वह निरासंग आस पूर्ण है निरतन भयं तनवंत है रोगियं रोग खंडन है भगत्यं भगत दानं।

मिल साध संग है नानक से प्राणी सुख बासन है सेना साध समूह सूर अजितं सन्नाहं तन निमरता आवदह गुण गोबिंद रमण ओट गुर शब्द कर चरमण है अरुणते अश्वरथ नाग है बुझंते प्रभ मार्ग है विचरते निर्भयं सत्र सेना तायंते गोपाल कीर्तन है जितते विश्व संसार है नानक वस्यं क्रोत पांच तस्कर है मृग तृष्णा गंधर्व नगरं द्रुम छाया रच दुर्मत है ततः कुटंब मोह मिथ्या सिमरंत नानक राम राम नाम है नच विद्या निधान निगमं नच गुणज्ञ है नाम कीर्तन है नच राग रतन।

जीहि पणिच्यो उत्तम सलोक उदरणं नैन नंदनी गुरमंत्रहीनस्य जो प्राणी तिरगंत जन्म प्रष्टन है कुकर है सुकर है गर्द बह काक है सर्पन है तुलखल है चरनार बिंद भजनं हृदयंग नाम धारण है कीर्तनं साध संगीन नानक नह दृष्टंत जम दूत नह नच दुर्लभंग धनंग रूपं नच दुर्लभंग स्वर्ग राज नह नच दुर्लभंग भोजनंग बिंजनंग नच दुर्लभंग स्वास अंबर है नच दुर्लभंग सुत मित्र प्रात बांधव नच दुर्लभंग बनता बिलास है नच दुर्लभंग विद्या प्रवीणं

पाप्रभं जत कतह ततह दृष्टं स्वर्ग मर्त पयाल लोकह सर्वत्र रमणं गोविंदह नानक लेप शेप ना लिप्यते विख्या पयंत अमृतं दृष्टा सखा सुवजनह दुखियं पयंत सुखियं तय पीतंगता निर्भय है थान विहून विश्राम नामं नानक कृपाल हर हर गुर है सर्वशील ममं शीलं सर्व पावन मम पावन है सर्व कर्तव्य ममं कर्ता नानक लेप छेप ना लिप्यते नह शीतलं चंदर देव है नह शीतलं बामन चंदन है नह शीतलं शीत रुतेन नानक शीतलं साध सुवजन है मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण है ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरन है दयालं सर्वत्र जिया पंच दुख विवर्जित है भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहत है उपदेशं सम मित्र सत्र है भगवंत भगत पावनी पर निंदा नह सुरूत श्रवणं आप त्याग सगल रेणु कह खट लखियन पूर्णं पुरख है नानक नाम साध सुवजन है अजापो गंत कांड मूलं।

परमावण है। चित हरनं त्रैलोक गम्यं जप तप सील बदारण है। अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समावण है। तब भय विमुंचित साध संगम ओट नानक नारायण है। हे काल मूल क्रोधं कदंच करुणा न उपर्जते। विखियंत जीवं वस्यं क्रोध नृत्यं क्रोध जथा मर्कट है। अनक शासन ताड़ंत जमदूत है। तब संगे अधमंग नर है। दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक सर्ब जी रख्या करोत। हे लोबा लंपट संग सिर मोर है। अनक लहरी कलोलते तावंत जिया बहु प्रकार। अनक भांत बहु डोलते नच मित्रं नच इष्टं नच बांधो नच मात पिता तब लज्जिया। अकरणं क्रोध अखाद्य है खाद्यं असाज्यं साज समझ्य। त्राहे त्राहे शरण स्वामी विज्ञापत नानक हर नर हर है। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा मित्रं त्यजंत शत्रुं दृढ़ंत। अनक माया बस्तीर्ण है। आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगण है। ब्रह्म प्यान उद्यान रमण महाबिकट असाध रोगण है। वैद्यं पार ब्रह्म परमेश्वर अराध नानक हर हर हरे। हे प्राण नाथ गोविंद है।

दुत है सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म हस्त काया रखिया परमेश्वर है आत्म रखिया गोपाल स्वामी तन चरण रखिया जगदीश्वर है सर्ब रखिया गुरदयाल है भय दुख बनासन है भगत वचल अनाथ नाथी शरण नानक पुरख अचुत है जेन कला धार्यो अकाशं बैसंतरं काष्ट बेष्टं जेन कला सस सूर नक्षत्र ज्योतियं सासं शरीर धारणं जेन कला मात गर्भ प्रतपालं नह सिदंत

सिमरणं सर्वत्र जीवन है लब्धहं संत संगीन नानक श्वास मार्ग हर भगतन है मस्कं पगनंत सैलं कर्दमं तरंत पपील कह सागरं लगंत पिंगं तम प्रकाश अंध कह साध संगीन सिमरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरि तिलकहीनंग जथा बिपरा अमरहीनंग जथारा।

स्याम आश्चर्य रूपं रहंत जन्मं नेत नेत कथंत बेदा ऊच मूच अपार्ग बिंद है बसंत सादृध्यं अच्युत बजंत नानक बड़भागी है उद्यान बसनं संसारं संबंधी स्वान स्यान खर है विखम स्थान मन मोह मदनं महा असाद पंच तस्कर है हीत मो पै परम भ्रमण अहं फांस तीक्षण कठन है पावक तो असाध कोरं अगम तीर नह लंघन है पज साध संग गोपाल नानक हर चरण सरण उदरहन कृपा कृपा करंत गोविंद गोपाल है सगल अहं रोग खंडन है।

निमंत हुवंत मिथ्या चेतनं संत स्वजनः आचेत मूढ़ा ना जानंत कटंत सासा नित प्रति सिजंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रासती रचंत पुरख है कटंब लीला अनित आसा बिख्या बनोद परमहंत परमहंत बहु जन्म हारियो शरण नानक करुणामय हे देहबे हे रसगे मदर प्रिय त्वं सात हतं परम बादं वर्त इथ है सुध असरण है गोविंद दामोदर माधवी गर्भंत नारी मधुन मतं बलवंत बलात् कारण है चरण कमल नह पजंत त्रिण समान त्रिग जन्म नह हे पपील का ग्रस्ते गोविंद सिमरण त्वं तने नानक अनक बार नमो नमः त्रिणंगता मेरं सहकंगता हरियं बूडंगता तरियं ऊणंगता परियं अंधकार कोट सूर उजारं बिनवंत नानक हर गुर दयारं ब्राह्मण है संग उदरं ब्रह्म कर्म जे पूर्ण है आत्मरतं संसार गहंते नर नानक निहपल है पर दर्भ हिरणं।

कर्पूर पोहपु सुगंधा परसमनुखे देहं मलीनं मज्झारुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्भेण अज्ञान।

चलंथो पणंत नानक साध संगेन माया चित परमेण इष्ट मृतेख बांध वह लब्धे हम साध संगेन नानक सुख अस्थानं गोपाल भजनं मैला गर संगेन निम बिरख से चंदन है निकट बसंत।

समंतर साध बचना कोट दुख बनासन है हर चरण कमल त्यानंग नानक कुल समूह उदाहरण है सुंदर मंदर सैन है जेण मध्य है हर कीर्तन है मुक्ते रमन गोबिंद है नानक लभदिहंग बड भागण है हर लभदो मित्र सुमितो विदारण कदे ना चित्तो जाका अस्थल तोल अमितो सोई नानक सखा जी संग कितो आप जसंग मटंत सत पुत्र है सिमत बिहर दै गुरमंत्रण है प्रीतम

कसो वरंगण है, रोग सोग बियोगं नानक सुख ना सुपन है। हुनहे महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती, उर्ज रहे हो सब संग अनूप रूपावती, उस्तत कहन न जाए मुख तोहारिया, मोही देख दर्श नानक बलिहारिया, संत सभा में बैस के कीर्त मैं कहा, हरपी सब शिंगार एहो जियो सब देवा, आस प्यासी सेज सो कंत बछाई है, हर हां मस्तक होवै भाग तां साजन पाई है, सखी काजल हार तंबोल सबै किस साजिया, सोलह किए शिंगार के अंजन पाजिया, जे घर आवै कंत तां सब किछ पाई है, हर हां कंतै बाज शिंगार सब बिरथा जाई है, जिस घर वसिया कंत सा वड भागणे, तिस बनिया हब शिंगार साई सोहागणे, हौ सुती होए अचिंत मन आस पुराइया, हर हां जां घर आया कंत तां सब किछ पाइया, आसा इती आस के आस पुराइया, सतगुर भये दयाल तां पूरा पाइया, मैं तन अवगण बहुत के अवगण छाया, हरे हां सतगुर भये दयाल तां मन ठहराया, कहो नानक बेअंत बेअंत ते आया।

सच धना सुपने उ भी भई गहयो की ना अंचला सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचला।

पवन च फूलन हार संतोह माखन खाया शास पिय संसार कबीर माया डोलनी पवन वह हे अवतार जिन बुलोया।

की कै हर के गुण गाए। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर पी ना जानिया कोई, ऐसे मरने जो मरे बहुर।

कह यार हरुए हरुए तिर गए डूबे जिन सिर पार कबीर हाड जरे ज्यों ला करी केस जरे ज्यों कास

कोई सांझा करे कबीर स्यों हर संग बणज करे कबीर एह चेतावनी मत सहसा रह जाए पाछे भोग।

थोड़े जल माछुली चीवर में ले ओ जाल ए टोग नैना सूट सह फिर कर समुंद संभाल कबीर समुंद ना छोड़ी है जो अत खारू होए पोखर पोखर ढूंढते

ऐसनों की कूकर भली साकत की बुरी माए ओ नित सुने हर नाम जस ओ पाप बसाहन जाए कबीर हर

और काया हांडी काठ की ना उह चढ़ बोहोर। कबीर ऐसी होए परी मन को भावत कीन, मरने ते क्या डरपना जब हाथ सदोरा लीन। कबीर रस को गांडो चूसी है गुण को मरिया रोए, अवगुने आरे मानस है भलो ना कह है कोय। कबीर गागर जल भरी आज काल जय है फूट, गुर जो ना चेत है अपनो अदमहा।

मैया कंठ में चूक है सर्व जंजाल, कबीर ऐसा को नहीं मंदर दे जराय, पांचों लड़के मार

लोग सब आया चल गयो हम तुम काम निदान। कबीर मन पंखी पयो उड़ उड़ दह दिस जाए जो जैसी संगत मिले।

जिन हर का नाम ना चेतेओ, बद है जन्मे आए कबीर आसा करिए राम की, अवरै आस नरास नरक परह ते मानई।

क्या करे, जो राम ना करे सहाय। जेह जेह डाली पग धरो सोई मुर मुर जाय। कबीर अवरह को उपदेश ते मुख।

आई सर्पन हुए कह अवतर जाए अपने खाई कबीर हर का सिमरन छाड़ के ओहो ही राख नार गद ही हुए कह अवतर पार सह मन चार कबीर चतुराई अत कणी

पुन भली जा कुल हर को दास जेहे कुल दास ना उपजै सो कुल ढाक पलास कबीर है गए बाहन सगन कन लाख तजा फहराहे या सुख ते भिख्या भली जो हर सिमरत दिन जाए कबीर सब जग हो फिरे मांडल कंध चढ़ाए।

आए जोत बिना जगदीश की जगत अलंगे जाए। बूढ़ा वंश कबीर का उपजो पूत कमाल हर का सिमरन छाड़ के घर ले आया माल। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ न लीजै कोई

कहबे को सुबा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख कह के कहो कहे ना को पते आए, हर जैसा तैसा उही रहो हरख गुन गाय। कबीर चुगे चितारे पी चुगे चुग चुग चितारे, जैसे बच रह कूंज मन माया ममतारे। कबीर अंबर कन हर छाया बरख परे सरताल, चात्रक ज्यों तरसत रह तिनको कौन हवाल। कबीर चकई जो निस बिसर आए मिले परबात, जो नर बिसरे राम स्यों ना दिन मिले ना रात। कबीर रह नायर बिशोरिया रहो रे संख मचूर, देवल देवल ताहड़ी

कबीर काल करंता अबह कर अब करता सोए ताल पाछ कछु ना होएगा जो सिर पर आवे काल। कबीर ऐसा जन तिक देखिया जैसी तोई लाख दिसै चंचल बहुगुना मत ही ना ना पाक। कबीर मेरी बुद्ध को जामना करै तिसकार जिन एहो जमुआ सिरजिया सो जपिया परवदगार। कबीर कस्तूरी भया पवर पये सबदास ज्यों ज्यों भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास। कबीर गह गच परे उकटा।

कबीर साकत ते सूकर भला राखै आछा गांव। ओ साकत बपरा मर गया कोई ना लै है नाव। कबीर कौडी कौडी जोर कै।

बाहर बाहर कंचन बारहा भीतर परी पंगार। कबीर रोड़ा हुए रहो बात का ताजमान का अपमान, ऐसा कोई दास हुए

ऊंच पवन कन कामनि शिखर तजा फहराय ताते भली मधु करी संत संग गुण गाय कबीर पाटन ते उजर भला

मान मुनि मुनिवर गले मान सब है को खाए। कबीर साचा सतगुर मैं मिलया शब्द जो बाह आएक लागत ही पोए मिल गया परया कलेजे शेक। कबीर साचा सतगुर क्या कर है जो सिखा महचूक अंधे एक ना लागे ज्यो बांस बजाई है फूक। कबीर है गै बाहन सगन कन छत्रपति की नार ताश पतंत्र ना पुज्य हर

बहीर एक अवघट काटी राम की तेह चढ़ रहे हो कबीर कबीर दुनिया के धोखे मुआ चालत कुल की कान तब कुल किसका।

सरवर भरा पी ना सके कोई नीर पाल बड़े तह पायो तू पर पियो कबीर कबीर पर बाते तारे खिसह।

संत मने आगर कोई अंगम बेदेव ता शीतलता नात जंत कबीर मन शीतल पया पाया ब्रह्म ज्ञान जिन ज्वाला जग जारिया सो जन के उदक समान कबीर सारी सिर जनहार की जाने नाही कोई कह जाने आपन तनी कह दास देवानी होए कबीर भली पई जो पौ परया दिसा गई सब भूल उरा घर पानी।

के बिन मिले पलट पई सब खे जहन पौ तह पै नहीं जह पौ तह हर नाही कहियो कबीर बिचार कह संत।

दिया, तब हुई गो कौन हवाल। कबीर खूब खाना खीचरी, जा मह अमृत लोन। हेरा रोटी कार ने गला कता वह कौन। कबीर गुर लागा तब जानिए, मिटै मोह तन ताप। हरख सोग दाजै नहीं, तब हरे आपह आप। कबीर राम कहन मैं भेद है, ता मह एक विचार। सोई राम सबै कह, सोई कौतकहार। कबीर रामे राम कहो, कहबे माहे बबेक। एक अनेक है मिल गया, एक समाना एक। कबीर जा कर साधना सेवी है, हर की सेवा नाए। ते कर मरहत सारखे, भूत बस है तिन माहे। कबीर गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान। पावह ते पिंगल भया, मारिया सतगुर बान। कबीर सतगुर सूर में, बाहया बान जो एक। लागत ही पोए गिर परिया, परा करे जे शेक। कबीर निर्मल बूंद आकाश की, पर गई भूम बेकार। बिन संगत इओ मानी, होए गई पाठशार। कबीर निर्मल बूंद।

कबीर हज काबे हो जाए था आगे मिलया खुदाई। साई मुझस्यों लर परया तुझे किन फरमाई गाय। कबीर हज काबे हुए हुए गया।

मान मह पल्ला ना पकड़े कोय, कबीर धरती अर आकाश मह दुए तू बरी अवद, हक दर्शन संसे परे हर चौरासी ही सिद्ध, कबीर मेरा मुझ मह किछ नहीं।

आस कबीर हर का सिमरण जो करे सो सुखिया संसार इतोत कतह ना डोले जिस राखै सिर जनहार कबीर कहानी पीड़ते सतगुर लिए छड़ाए परापूर्व ली पावनी प्रगट होई आए कबीर टालह टोलह दिन गया ब्याज बढ़ंतो जाए ना हर भजियो ना खत फटियो काल पहुंचो आए महला पंजवा कबीर कूकर भौंकना करंग पिछे उठ ताए करमी सतगुर पाया जिन्हों लिया छड़ाए महला पंजवा कबीर धरती साध की तस्कर बै सहगाए धरती भार ना व्यापई।

आए संगुक संगी बैसते तब पूछे धर्म राय नामा माया मोहया कहत लोचन मीत काहे शी पोषाय ले राम।

कोठे मंडप हेत कर काहे मरहो सवार कारज साडे तीन हाथ कनी ता पौने चार कबीर जो मैं चितमो ना करे या मेरे चितवे होए अपना चितवे आ हर करे जो मेरे चित ना होए महला तीजा चिंता पे आप कराए सी अचिंत पे आपे दे नानक सो सलाही।

कह ताराम पाज नाहे ता बिरठी बात कबीर केसो केसो कुकिया ना सोई आसार रात दिवस के कूकने कबहू के सुने पुकार कबीर काया कजली बन पया मन कुंचर मय मंत अंकस ज्ञान रत्न है खेवत

नाम जानियो नहीं पाल्यो कटक कुटंब तंदे ही मैं मर गयो बाहर पई ना बंब कबीर आखी केरे माटके के

वीर तरवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग छाया रूपी साध है, जिन तजया बाद विवाद कबीर ऐसा बीज बोए, बारह मास फलंत शीतल छाया गहर फल, पंखी केल करंत कबीर दाता तरवर दया फल, उपकारी जीवंत पंखी चले दसावरी, बिरखा सुफल फलंत कबीर साधु संग प्राप्ति, लिखया हुए ललाट मुक्त पदार्थ पाइए, ठाक ना अवकट घाट कबीर एक घड़ी आदि घड़ी, आदि हूं ते आद भगतन सेती गोसटे।

वामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाही। अर्ज उर्ज कह पचमुआ, चारो बेदो माही। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए। कह कबीर गुर भली बुझाई, कीती होए कह खाए। कबीर जो तुहे साध पिरम की, शीस काट कर गोए। खेलत खेलत हाल कर, जो किश होए ता होए। कबीर जो तुहे साध पिरम की, पाके से ती खेल। काची सरसों पेल कै, ना खाल पई ना तेल। टूंडत ढोल है अंधगत, हर चीनत ना ही संत। कह नामा क्यों पाईए, बिन भगत हो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ कै, करह आन की आस। ते नर दोजक जाहेंगे, सत पाख है रविदास। कबीर जो ग्रह करह ता धर्म कर।

खाए, खरीदा शक्कर खंड नवात गुड़, माखियो मांझा दुध, सबे वस्तु मिठिया, रब ना पूजन तो

नाती तोती संभही सुती आए निचिंद फरीदा रही सो बेड़ी हिंग दी गई कथूरी गंद जोबन जांदे ना डरा जे सह प्रीत ना जाए फरीदा कितनी जोबन प्रीत बिन सुख गए कुमलाए फरीदा चिंत खटोला वान दुख बिरह बिछावन लीप यो हमारा जीवना।

तन बेहो ना उपजै सो तन जान मसान। फरीदा ए विस गंदलां धरियां खंड लिवाड़, एक राहिंदे रह गए एक राधी गए उजाड़। फरीदा चार गवाया हंड कै चार गवाया सम, लेखा रब मगेसिया तू आहू केरे कम। फरीदा दर्द रवाजै जाय कै क्यों डिठो कड़ियाल, एहो न दोषा मारिया हम दोषा दा क्या हाल। घड़िए घड़िए।

मिट्टी पई अतोलवी कोई ना हो सी मेता फरीदा मंडप माल ना लाए मर्ग सपाणी चित धार साई जाए समाल जिथे ही तो वंजना फरीदा जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े वसार मत शर्मिंदा थी वही साई दरबार फरीदा साहिब दी कर चाकरी।

वत कुवारी नाथी है कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंज चिंजू बोड़न ना पीवे उड्डन संधी डंज हंस उडर कुदर पया लोक बडारण जाय गहला लोक ना जानदा हंस ना कुदरा खाय चल चल गईया पंखिया जिन्नी वसाए तल फरीदा सर भरिया पी चल सी थके कवल अकल।

अस फरीदा पन्नी कड़ी समन्नवी टुटी नागर लज अजराइल फरीसता कै घर नाथी अज फरीदा पन्नी कड़ी समन्नवी।

ना बग बपड़ा जन्म ना भेड़ी अंग, क्या हंस क्या बगला जा को नदर धरी, जे तिस भावै नानका कागहो हंस करे, सरवर पंखी हेकड़ो फाही वाल पचास, इहो तन लहरी गड थिया सच्चे तेरी आस, कमण सो अखर कमण गुण कमण सो मणिया मंत, कमण सो वेसो हो करी जित बासे आवे कंत, निमण सो अखर खमण गुण जिहबा मणिया मंत, ए त्रै भैणे वेस कर तां वासिया भी कंत, मत हुंदी होए आना ताण हुंदे होए नताणा, अण हुंदे आप बंडाए को ऐसा भगत सदाए।

करण कारण सब आपे सर्ब रहो भरपूर सगल घट रहो ब्यापे व्यापत देखिए जगत जानै कौन तेरी गत सर्ब की रख्या करै आपे हर पत अवनासी अवगत आपे आप उत्पत एकै तू ही एकै अन नाही तुम भत हर अंत नाही पारावार कौन है करै विचार जगत पिता है सर्ब प्राण को आधार जन नानक।

बल बल सद बलिहार अमृत परवाह सर अतुल भंडार भर परे ही ते परे अपर अपार पार अपनो पावन कर मंत्र ना दूसरो धर उपत परलो एक निमख तो घर आन नाही समसर उजियारो निर्मर कोट परास्त जाहि नाम लिए हर हर जन नानक भगत दार।

आप ही धारण धारी कुदरत है देखारी वर्ण चिन्ह नाही मुख नाम सारी जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसार एक जी ही क्या बखाने हां की बल बल बल बल सद बलिहार सर्व गुण निदानं कीमत ना ज्ञानं ध्यानं ऊचे ते ऊचो जा नीचे प्रभ तेरो थानं मन धन तेरो प्राणं एक है सूत है जहानं कवन उपमा देओ बड़े ते बडानं जाने कौन तेरो पेओ अलाखे अपार देओ अकाल कला है प्रभ सर्व को तानं जन नानक भगत दार

कार अशल पूर्ण अबनासी हरखवंत आनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जाको होहि कृपाल सो जन प्रभु तुमह मलासी धन धन ते धन जन जे कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दोहो थे रहो सत सत हर सत सत सती सत पनिये दूसर आन ना अवर पुरख पौरातन सुनिए अमृत हर को नाम लैक मन सब सुन।

गोविंद सर्व सुख तिन्हु पाए, हर गुरु नानक जिन परसेओ ते बहुड़ फिर जोन ना आए। कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन बिद।

पव जल तरना बिनत करूं अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देहो दर्स मन चाऊ भगत एहो मन ठहरावे बलिओ चिराग अंधियार मह सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर पवन मह।

मद माता विचरत बिकल बड़ो अभमानी पर धन पर अपवाद नार निंदा यह मीठी जी माहे हतानी।

चेत तन निर्मत दुर्लभ देहे सवार करी खान पान सोदे सुख पुंचत संकट काट विपत हरी मात पिता पाई अरबंदप गूजन की सब सूझ परी वर्तमान होवत दिन प्रतनित आवत निकट बिखम जरी रे गुणहीन दीन माया क्रिम सिमर स्वामी एक करी कर गह ले हो कृपाल कृपा नित नानक काट परम परी रे मन मूस बिला मह गर्भत करतब करत महामुगना संपत दोल चोल संग चूलत माया मगन प्रमत कुगना सुत बनता साजन सुख बंदप तां स्यो मोह बढ़ियो सो कना बोयो बीज अहं मम अंकुर बीतत औध करत अगना मृत मंजार पसार मुख निरखत पुंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुख।

असव ना गज सिंघासन छिन मह त्यागत नाग सदारु सूर ना वीर ना मीर ना खानम संग ना को दृष्ट निहारु।

साजन साख उल्टत जात बिरख की शारुह दीन दयाल पुरख प्रभ पूरन छिन छिन सिमरुह अगम अपारुह श्री पतनाथ सरन नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारुह प्राण मान दान मग जोहन हीत चीत दे ले ले पारी साजन सहन मीत सुत पाई।

औध तन जारी कर्म धर्म संयम सोच नेमा चंचल संग सगल बेदहारी पास पंखी बिरख अस्थावर बहु विद जोन प्रम्यो अत पारी हिन पल चसा नाम नहीं सिमर्यो दीना नाथ प्राण पत सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत।

निश्चर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंदर मुनिंदर खोजते गोरख तरन गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनुख्य देव अरदानम एक तिल ताको मर्म ना पावत प्रिय प्रभ प्रीत प्रेम रस भगती।

रे मन मूड सिमर सुख दाता, नानक दास तुझ समझावत। माया रंग बरंग करत ब्रह्म, मोह कै कूप गुबार पर्यो है। एता गब आकाश नाम आवत, बिस्ता अस्त क्रिम उदर पर्यो है। दह दिस ताए महा बिखिया को, पर धन शीन अज्ञान हरियो है। जोबन बीत जरा रोग ग्रस्यो, जम दूतन दन मृत मरियो है। अनक जोन संकट नरक पुंचत, शासन दुख गर्त गरियो है। प्रेम भगत उदर है से नानक, कर कृपा संत आप करियो है। गुण समूह फल सगल मनोरथ, पूरन होई आस हमारी। औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर, सर्ब रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मत सर तृष्णा, बिनस जाहे हर नाम उचारी। स्नान दान तापन सुच किरिया, चरण कमल हृदय प्रवतारी। साजन मीत सखा हर बंदप, जी तान प्रभ प्राण अधारी। ओट गही स्वामी समर्थ है, नानक दास सदा बलिहारी। आवद कट्यो ना जात, प्रेम रस चरण कमल संग। दामन बंध्यो ना जात, विदे मन दर्स मग। पावक जरियो ना जात, रहियो जन तूर लग। नीर ना साकस बोर, चलह हर पंथ पग। नानक रोग दोख अग मोह, छिदे हर नाम खग। उदम कर लागे बहु पांति, विचरह अनक शास्त्र बहु खटुआ। भस्म लगाए तीर्थ बहु भ्रमते, सूखम देह बंद है बहु जटुआ। बिन हर भजन सगल दुख पावत, ज्यो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ। पूजा चक्र करत सोम पाका, अनक पांत

तुरत निवारण शब्द सरे गावह गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान धरे गावह इंद्राद भगत प्रहलादक आत्म रस जिन जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह जनकाद जुगत जोगेश्वर हर रस पूरन सर्ब कला गावह सनकाद साध सिधादिक मुन जन गावह अशल चला गावह गुण धूम अटल मंडल वै भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह कपलाद आद जुगेश्वर अपरंपर अवतार वरु गावह जम दगन परसरमेश्वर कर कुठार रग तेज हरियो उदो अक्रूर बिदर गुण गावह सर्वात्म जिन जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह गुण बरन चार खत दर्शन ब्रह्मादिक सिमरंत गुना गावह गुण शेष सहस जिह बारस आद अंत लिव लाग तुना गावह गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो राज जोग मानियो बस्यो निरवैर रिदंतर सृष्ट सगल उदरी।

नानक मस्तक तुम धरियो जिन हथ ता धरियो मस्तक हथ सहज अमियो बुठो सज सुर नर गण मुन बोहे आगाज मारियो कंटक काल गर्ज धावत लियो बरज पंच भूत एक घर राख ली समझ जग जीतो गुरुद्वार खिल है समत सार रत उन्मन लिव राख निरंकार कहो कीर्त कल सहार सप्त दीप मझार लहना जगतर गुर परस मुरार जा की दृष्ट अमृत धार काल

सपत दीप मजार लहना जगतर गुर पर समरार दृष्ट धरत तम हरन दहन अग पाप प्रनासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध बनासन लोग मोह वस करन सरन जाचक प्रतपालन आत्मरत संग्रहण कहन अमृत काल ढालन सतगुरु काल सतगुर तिलक सत लागे सो पै तरै गुर जगत फिरन सिंह अंग रहू

खवै कस बिमल बीचार है, एह तत जानियो सर्वगत अलख बिडाणी। सहज भाए संचियो किरण अमृत कल बाणी, गुरगम प्रमाण तै पायो सत संतोख ग्राहज लयो। हर परसे कल समुल वै,

नाम परस जिन पायो सत प्रगट्यो रब लोए दर्शन परसे है गुरु कै अठ सठ मज्जन होए सच तीर्थ सच स्नान अर भोजन भाओ सच सदा सच पाखंत सो है सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बो है जिस सच संयम वर्त सच कब जन कल बखान दर्शन परसे है गुरु कै सच जन्म परवान हमें दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसार है खोवे गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालक धोवे सो कहो टल गुर सेविए अहनस सहज सुपाई दर्शन परसे है गुरु कै जन्म मरण दुख जाई सोइये महले तीजे के एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोई पुरख सिवर साचा जाका एक नाम अशल संसारी जिन भगत भवजल तारी सिमरहो सोई नाम प्रधान तित नाम रसक नानक लहना थप्यो जीन सर्व सिद्धि कव जन कल सुबुद्धि कीर्त जन अमृत।

कुब अर पश्चम जय जय कार्य पंथ नरा हर नाम रसन गुरमुख बरदायु उल्ट गंग पश्चम धरिया सोई नाम अशल भगत है भव तारन अमरदास गुर को फुरिया सिमरह सोई नाम जख अर किन्नर साधक सिद्ध समाध हरा सिमरह नखियतर अवर ध्रुव मंडल नारदाद प्रहलाद वरा ससियर अरसूर नाम उलास है सैल लोजिन उदरिया सोई नाम अशल भगत है भव तारन अमरदास गुर को फुरिया सोई नाम सिवर नवनाथ निरंजन शिव सनकाद समुद्धरिया चौरासी सिद्ध बुद्ध जित राती अम्बरीक भवजन तरिया।

जातहु मुखहु भगत उच्चरै अमर गुर इत रंग रातहु मस्तक निशान सच्चो कर्म काल जोड़ कर त्याहायु परस्यो गुरु सतगुर तिलक सर्व इच्छ तिन पायु चरण ता पर सकियत चरण गुर अमल पवल रै हाथ ता पर सकियत हाथ लगे है गुर अमर पै जी ता पर सकियत जी गुर अमर पणिजै नैन ता पर सकियत नैन गुर अमर पखिजै श्रवण ता पर सकियत श्रवण गुर अमर सुनिजै सकियत सो ही ओ जित ही बसै गुर अमरदास निज जगत पित सकियत सो सिर

जानियो सुपन एक प्रतख एक एक समहलीनो तीस एक अर पांच सिद्ध पैंतीस ना खीनो इको जे लाख लखो अलख है एक एक कर वर्ण्यो गुरु अमरदास जाल पपण है तू एक लोड़ है एक मन्यो जे मत गही जय देव जे मत नामे सम्मानी जे मत त्रिलोचन चित भगत कंबीर है जानी रुख मांगद करतूत राम जंप हो नित पाई अमरीक प्रहलाद सरन गोबिंद गत पाई तै लोभ क्रोध तृष्णा तजे सो मत जल जानी जुगत गुरे अमरदास ने

गुर अमरदास परसीय सिद्ध साधक असासह। गुर अमरदास परसीय ध्यान लहिय पौ मुकह। गुर अमरदास परसीय अपौ लभै गौ चुकह। एक बिन दुगण जो तौ रह जा समंतर मान वह लह। जाल पाप दार्थ इतड़े गुर अमरदास डिठे मिलह। सच नाम करतार सो दृढ़ नानक संग रहियो। ताते अंगत लहना प्रगट तास चरण है लिव रहियो। तित कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कवण बखाणो। जो गुण अलख अगम तिन्ह गुण अंत ना जानो। बोहिथो विधातै निर्मयो सब संगत कुल उधरन। गुर अमरदास कीरत कह त्राहे त्राहे तो पासरन। आप नारायण कला तार जग मह परवरियो निरंकार आकार। जोत जग मंडल करियो जह कहत है भरपूर। शब्द दीपक दीपायो जेहे सिख है संग्रहियो। तात हर चरण मलायो नानक कुल निम्मल अवतरियो। अंगद लहने संग हो गुर अमरदास तारन तरन। जन्म जन्म पासरन तो जप तप सत संतोख। भिख दर्शन गुर सिख है सरन पर है ते उभर है। छोड़ जमपुर की लिख है भगत भाई भरपूर। हृदय उचरै करतार है गुर गौहर दरियाऊ। पलक डबंत्य है तार है नानक कुल निम्मल अवतरियो। गुण करतार है उचरै गुर अमरदास जिन सेवियो। तिन दुख दरिद्र

शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो परमाव है सो कहूं गुरु अमरदास कारण करन जिव तू रख है तिव रहूं पिखे के गुर ज्ञान अर ध्यान तत स्यों तत मिलावे सच सच जानिए एक चित्त है लिव लावे काम क्रोध वस करे पवन उडंत ना तावे निरंकार कै वसै दीश हुक्म।

आदसनाह ज्ञान है आसन चढ़यो ध्रम तनक कर गहयो भगत सील है सर लड़यो तय निरभउ हर अटल मन शब्द गुर नीजा गड्यो काम क्रोध लोभ मोह अपत पंच दूत बिख

इव जोद कार कनहर बूंद बसो रोमावल कुसुम बसंत गनंत ना आवे राव सास किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के

कब कल ठकुर हरदास तनी गुर रामदास सार अपार परी सतगुर मत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल भया जागिया मन कवल सहज प्रकाशिया अपै निरंजन करह लहा सतगुर दयाल हर नाम दिरडाया तिस प्रसाद वस पंच करे कब कल ठकुर हरदास तनी गुर रामदास सार अपार परी अनभव उन्मान अकल लिव लागी पारस भेटिया सहज करी सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परी मेटिया जन्मांत मरण भउ भागा चित लागा संतोख सरे कब कल ठकुर हरदास तनी गुर रामदास सार अपार परी अपार परे पायो अपार हृदय अंतर तारियो दुख भंजन आ

माणे नानक प्रसाद अंगद समत गुर अमर अमर वरतायु गुर रामदास कल उचरै तैं अटल अमर पद पाय।

पद पायो जग जित हो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दिरडायो नव निद नाम निदान रिद सिद्ध ताकी दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेट्यो अबनासी आदले भगत जित लागत।

कै सतगुर शब्द अथाह हमें तारा रस गुटै मत माता संतोख पिता सर सहज समायो अजूनी संभवयो जगत गुर बचन तरायो अवगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कल उच्चरै कै जगत उदाहरण पायो जगत उदाहरण नव निदान भगत है भव तारन अमृत बूंद हर नाम बिस की बिखै निवारण सहज तरोवर फलियो ज्ञान अमृत फल लागी गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागी ते मुक्त भए सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुरु राम।

है गुर शब्द समाचरयो नाम टेक संगाद बो है आजोनियो पल अमल सतगुर संग निवास गुर रामदास कल उचर तो सहज सरोवर बास गुर जिन को सो प्रसन्न नाम हर हृदय निवास जिन को गुर सो प्रसन्न दुरत दूर अंतर नास गुर जिन को सो प्रसन्न मान

गुर पायो तिन सकियथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुकत सब गुरु लग सतगुर खेमा तानिया जुग जूत समाणे अनपहु नेजा नाम टेक जित भगत आगाणी गुरु नानक।

दस जानी जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावै तिहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बण आवै।

खिन मातर जा कौ दृष्ट तारै शब्द रिद बिचारै काम क्रोध खोवै जियो जियन सभन दाता अगम ज्ञान।

हर तुझै बुझाई है परम भूले संसार छुट हो जूनी संगार जम को ना दंड काल गुरमत।

ज्ञान पांच भूत बस कीने जमत ना त्रास गुर अमर गुरु श्री सत कल जोग राखी पत अघन देखत गत चरण कमल जास सब विद मान्यो मन तब ही भयो प्रसन्न राज जोग तखत दीयन गुर रामदास रड जिसह धार्यो तरत अर व्योम अर पवन ते नीर सर अवर अनल अनाद कियो सास रेख निस सूर दिन सैल तरु फल फूल दियो सुर नर सप्त समुंदर के धार्यो त्रिभवन जास सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर परगास कच्चो हो कंचन भयो शब्द गुर श्रवण है सुनियो बिख ते अमृत होयो नाम सतगुर मुख भण्यो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद धारै पाहण माणिक करै ज्ञान गुर कहियो बीचारै काठो श्री खंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए सतगुरु चरण जिन परसिया से पास परेत सुर नर भए

कियो। ते अकियत संसार में गुरु गुरु गुर कर मन मेरे, तारन तरन समरथ कल युग, सुनत समाद शब्द जिस केरे, हुन दुखन नास सुखदायक सूरो, जो तरत त्यान।

पूस पिवन की बंचत सिद्ध कहो बिद मलायो पूरन पो मन ठौर बसो रस बासन स्यो जो दहंग दिस तायो गोबिंद वाल गोबिंद पुरी सम जलन तीर बेपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो समरथ गुरु सिर हाथ धरियो गुरकीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरन अगन हरियो निसबासर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत पान डरियो पान दास सो आस जगतर गुरु की पारस भेट परस करियो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ धरियो अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाखश फारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी सीनत बस्तर दीन बहु साज सो दामा अपदा ते राखिया

शब्द हर हर जपै नाम नाव निध अपै रसन एहन सरसै सत कर जानी ओह हुन प्रेम रंग पाईऐ गुरमुख है त्याईऐ अन मार्ग तजहो भजहो हर ज्ञानी ओह बचन गुर रिद धरहो पंच भू बस करहो जन्म कुल उधरहो द्वार हर मानी ओह ज्यो ता सब सुख इत उत तुम बंचवहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणी ओह गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सतकार अगम गुण जान निदान हर मन धरहो ध्यान अहनस करहो बचन गुर हृदय धार हुन गुरु जल बिमल अथाह मज्जन करहो संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सार सदा निर्वैर निरंकार निर्भउ जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हार मुग्ध मन भ्रम तजहो नाम गुरमुख भजहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सतकार गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाईऐ उदद गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लिव लाईऐ हुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याईऐ अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाईऐ नाम निर्बाण निदान हर उर धरहो गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाईऐ।

जग जन्म मरण भगा ए आई ही है प्रतीत, प्रतीत ही है आई जिन जन कै तिन कौ पदवी उच भई। तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई। अवलोकया ब्रह्म भरम सब छुटकया दिव दृष्ट कारण करन सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी। श्री राम दास तारन तरन प्रताप सदा गुर का घट घट प्रगास भया जस जन कै। एक पढ़ है सुन है गाव है प्रभात है कर है स्नान, स्नान कर है प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा विद सहत करं। कंचन तन होए परस पारस कहो ज्योत स्वरूपी ध्यान धरं। जग जीवन जगन्नाथ जल थल मह रहया पूर बहु विद वर्णं। सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारन तरन। जिन्हो बात निश्चल ध्रुव जानी ते जीव काल ते बचा तिन तरयो समुद्र रुदर खिन एक मह। जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडलनी सुरजी सत संगत परमानंद गुरु मुख मचा। श्री गुरु साहिब सब ऊपर मन

देख रूप अत अनूप मोह महामग पय किंकनी शब्द चनतकार खेल पाहे जियो काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सकै ईस बम्यो ज्ञान ध्यान धरत ही है चाहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेशुमार सरबर कौ काहे जियो सुथर चित भगत हित भेख धरियो हरनाख शहरियो नख बेदार जियो शंख चक्र गदा पदम आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म लखै कौन ताहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख

कंठ माल मुकट शीश मोर पंख चाहे दियो देव जीर बड़े तीर तर्म अंग अलाके अगम खेल किया अपने उशाहे दियो अकथ कथा कथी ना जाए तीन लोक रहे आसमाए सुतह सिद्ध रूप धरयो साहन कै साहे जियो सत साच श्री निवास आदि।

गुरु रामदास चित्तै बसै गुरु समरथ गह करिया ध्रुव बुद्ध समत समारन कौ हुन धर्म तुजा फहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारन कौ मथुरा जन जान कही जी साच सो और कछु ना विचारन कौ हर नाम बोहित

मतरा पन भाग भले उनके मन इच्छत ही फल पावत है। रब के सुत को तिन त्रास कहां जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुदा पर पूरन शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर गह

कर देखो दर्शन गुरु सगल सुख सागर जा को मन ध्यान धरे फिरत सगल जुग कबहू का को पावे आत्म परगास को वेद बाणी सहत बिरंच जस गावे जाको शिव मन गह नात जात कबलास को।

तास जयो जह जग मह तैं हर परम पद पायो सतगुर नानक भगत करी एक मन तन मन धन गोबिंद दियो अंगद अनंत मूर्त निज धारी अगम ज्ञान रस रस्यो हियो गुर अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो कर त्यायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तैं हर परम पद पायो नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा उब भगत हर के जो गण अम्बरीक जय देव तरलोचन नामा अवर कबीर भणं तिनको अवतार भयो कल भिंतर जस जगतर पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तैं हर परम पद पायो मनसा कर सिमरंत तुझै नर काम क्रोध मिट्यो जो तिन बाचा कर सिमरंत तुझै तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण कर्म कर तू दर्श परस पारस सर बल भट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तैं हर परम पद पायो जेह सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटह खिन जेह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जेह सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे जेह सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निद पावे सोई रामदास गुर बल भण मिल संगत धन धन करहो जेह सतगुर लग प्रभ पाई सो सतगुर सिमरहो नरहो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करतना छोड्यो पास ताते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारू दुख दरिद्र अंधियार को नास कब कीर्त जो संत चर

लोभ अपमान स्यों झाड़ियो जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सो मन्ने भाव सागर बंध्यो सिख तारी सो प्रसन्न सिर आत पत सचो तख्त जोग भोग संयुत बल गुरु रामदास सच सल भण तू अटल राज अभग दल तू सतगुर चहो जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधिक सिद्ध सिख सेवंत तुरह तुर आद जुगाद अनाद कला धारी त्रिहो लोह अगमन।

मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो काल जोड़ कर सुजस वखाणियो भगत जोग कौ जैतवार हर जन के उपायो शब्द गुरु प्रकाश्यो हर रसन बसायो गुर नानक अंगद अमर लाग उत्तम पद पायो गुर अर्जन घर गुर रामदास भगत उतर आयो बडभागी उन मान्यो रिद शब्द बसायो मन मानक संतोखियो गुर नाम दृढ़ायो अगम अगोचर पार ब्रह्म सतगुर दरसायो गुर अर्जन घर गुर रामदास अनुभव ठहरायो जनक राज बरताया सत युग आली।

महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ न हुटै सतवंत हर नाम मंत्र नव निध नान खुटै गुरु रामदास तन सर्ब मैं सहज चंदुआ ताणियो गुरु अर्जन कल उचरै तै राज जोग रस जानियो पै निरपहु माणियो लाख मह अलख लखायो अगम अगोचर गत गंभीर।

देखियत ताम स्यों अपार परंपर पुरख स्यों प्रेम लाग्यो बिन भगवंत रस नाही और है काम स्यों मथुरा को प्रभ सर्व मह अर्जन गुर भगत कै हेत पाई रहो मिन राम स्यों अंत न पावत देव सबै मुन इंद्र महाशिव जोग करी हुन वेद बिरंच विचार रहो हर जाप ना छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुर ज्योत अर्जुन माहि धरी जग और न जाहि महा तम मैं अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटिक दूर गए।

हर पूरन ब्रह्म निवास लियो, जब लो नहीं भाग ललार उदय, तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो, कल घोर समुन्दर मैं बूढ़क थे, कबहू मिट है नहीं रे पछतायो। तत विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो, जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। कल समुन्दर भय रूप, प्रगट हर नाम उदारन, बसह संत जिस हृदय, दुख दारिद्र निवारण, निर्मल भेख अपार, तास बिन अवर ना कोई, मन

हर अजय गंग जल अकल सिख संगत सब नहावै नित पुराण बाचिय है वेद ब्रह्मा मुख गावै अजय चवर सिर टुलै नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जन सिर शतर आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पह गयो हर वंश जगत जस संचरयो सो कवन कह श्री गुरमोयो देवपुरी मह गयो आप परमेश्वर पायो हर संघासन दियो श्री गुरु तह बैठायो रहस कियो सुर देव तोहे जस जय जय जंपह असुर गए ते भाग पाप तिन भीतर कंपह काटे सो पाप तिन नरों के गुर रामदास जिन पायो छत्र संघासन पृथ्वी गुरे

गिड़बड़ी सखिए तौल हरी से पी तहंदी डिठ मैं मुंद ना गर्भ थनी सुन मुंदे हर नाखिए गूड़ा वैन अपार पहला वस्त

पुछतड़न कल ताहू खरे सुजान वन्या एनी कपरी झाड़ झखड़ ओहाड़ लहरी वहन लखेसरी सतगुर स्यों अलाए बेड़े डुब

जो देवे सो देवे नाही, खट्टे दम सहमी पब्बर तू हरियावला, कवला कंचन वन कै दुखड़ै सड़ियो हे, काली होइया देहुरी नानक मैं तन भंग जाना पानी ना लहा, जैसेती मेरा संग।

रह सदा सदा सुरती ही पत होए सर्फ है सर्फ है सदा सदा एवं गई विहाई नानक किसनो।

करे कनेरिया ता अन्ने पवना खाती तो है। पूरे का किया सब किश पूरा कट वध किश नाही। नानक गुरमुख ऐसा जाने पूरे माहे समाही।

ठग मनमुख बन चलाई है ना मिलही वग सग आप भुलाए भुलिया आपे मेल मलाए नानक गुरमुख छुटिया जे चले सतगुर भाई साला ही सालाहना ही सच्चा सालाही।

गुर शब्दी हर मन वसै माया की भुख जाय से जन निर्मल उजले जे गुरमुख नाम समाय नानक होर पातशाहियां कूड़ियां नाम रते पातशाह ज्यों पुरख है कर भगती नार है अत लोचै भगती पाए बहु रस सालने सवार दी खट रस मीठे पाए त्यों बाणी भगत सलाहां।

आई। मन मुख चंचल मत है अंतर बहुत चतुराई, कीता करत्या बिरथा गया एक तिल थाए ना पाई। पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय कह जाई, बिन सतगुरु जमकाल ना छोड़ई दूजे भाए खुआई। जो बन जांदा नदर ना आवई, जर पहुंचे मर जाई। पुत कलात मोह हेत है अंत बेली को ना सखाई, सतगुर सेवे सो सुख पाई। नाओ वसै मन आई, नानक से वड्डे वडभागी जे गुरमुख नाम समाई। मनमुख नाम ना चेतनी।

अंदर शुद्ध नहीं, गुर बचन ना करहे विसास। ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है, नित हर लिव सदा विगास। हर ज्ञानिया की राखदा, हौ सद बलिहारी तास। गुरमुख जो हर सेम दे, जन नानक ता का दास। माया पोयंगम सर्प है, जग घेरिया बिख माए। बिख का मारन हर नाम है, गुर गरुड़ शब्द मुख पाए। जिन को पूर्व लिखिया, तिन सतगुर मिलिया आए। मिल सतगुर निर्म

हर गुरमुख कृपा तारियन जन बिछड़े आप मलाई जन नानक तिस बलिहार ने जो सतगुर लागे पाए नाम लगे से उबरे बिन नामे जमपुर जाहे नानक बिन नामे सुख नहीं आए गए पछताहे चिंता तावत रह गए ता मन भया आनंद गुर प्रसादी बुझी है सा धन सुती निचिंद जिन को पूर्व

बिन हर शांत न आवई किस आगे करी पुकार। वडभागी सतगुर पाया बूझिया ब्रह्म विचार। तिसना अग्न सब बुझ गई जन नानक हर पुर तार। असी खते बहुत कमान दे अंत न पारावार। हर कृपा कर।

जन सिज्जै बिन शब्द मुक्त ना होई। भेख करह बहु कर्म बगुत्ते पाए दूजै परज विगोई। नानक बिन सतगुर नाउ ना पाईऐ जे सौ लोचै कोई। हर का नाउ अत वड ऊंचा ऊंची हूं ऊंचा होई। अपड़ कोई ना सकई जे सौ लोचै कोई। मुख संयम हच्छा ना होवे कर भेख भवे सब कोई। गुर की पौड़ी जाए चढ़ै कर्म प्राप्त होई। अंतर आए वसै गुर शब्द विचार कोई। नानक शब्द मरे मन मानिए साचे साची सोई। माया मोह दुख सागर है बिख दुतर।

आई नानक करता सब किस जानदा जिन रखी बणत बनाई होम जग सब तीर्था पढ़ पंडित थके पुराण विख माया मोह ना मिटई विच हूं मैं आवन जान सतगुर मिले मल उत्तरी हर जप

बहु चित्तवधि बहु आशा लोभ विकार मन मुख अस्तर ना थी मर बिन सजाई खिनवार।

भी का विसाहो ना कीजै, जे का पार वसाए, अंतकाल तिथै तो है, जिथै हाथ ना पाए, मन मुख सेती संग करे, मुहे कालख दाग लगाए, मुह काले तिन लोभियां, जासन जन्म गवाए, सत संगत हर मेल प्रभ, हर नाम बसै मन आए, जन्म मरण

जियो पिंड सब ते सदा प्रतपाल करे हर राय। चुगल निंदक भुखे रुल मोए इना हाथ ना कथाऊ पाए। बाहर पखंड सब कर्म करह मन हिरदय कपट कर।

सदा सदा हर गुण रवह, अंतर सहज ध्यान ओए सदा आनंद विवेक रह। दुख सुख एक समान, तिन्ना नदरी इको आया, सब आत्म राम पछान। मनमुख बालक बिरद समान है, जिन्ना अंतर हर सुरत नाही। विच हउ मैं कर्म कमाव दे, सब धर्म राय कै जाही। गुरमुख हच्छे निर्मले, गुर कै शब्द सुपाई। ओना मैल पतंग ना लगई, जे चलन सतगुर पाई। मनमुख झूठ ना उतरै, जे सौ धोवन पाई। नानक गुरमुख मेलियन, गुर कै अंक समाई। बुरा करे सो केहा सिजै, अपने रोहे आपे ही दज्जै। मनमुख कमला रगड़ै लुज्जै, गुरमुख होए इस सब किस सुजै।

सुख पाया हत तिसना तज विकार जन्म मरण का दुख गया जन नानक शब्द बीचार हर हर नाम त्याए मन हर दरगाह पावह मान किल विख पाप सब कटी है हम मैं चुकै गुमान गुरमुख कमल विगसिया सब आत्म ब्रह्म पछान हर हर कृपा धार प्रभ जन नानक जप हर नाम तनासरी तनवंती जानी है भाई।

बूंद पवै सहज सुभाए, जल ही ते सब उपजै, बिन जल प्यास ना जाय। नानक हर जल जिन पिया, तिस भूख ना लागै आय। बाबी हा तू सहज बोल, सच्चै शब्द सुभाए, सब किस तेरे नाल है, सतगुर दिया दिखाए। आप पछाण है प्रीतम मिले, वुठा शहबर लाई। चिम

तन मन सुख होए जा तत बूंद मुहे पाए। अन धन बहुता उपजै धरती शोभा पाए। अन दिन लोक भगत करे गुर कै शब्द समाए। आपे सच्चा बख्श लए कर कृपा करै रजाए। हर गुण गाव हुकामणी सच्चै शब्द समाए। भय का सहज श्रृंगार करहु

पास सतगुर मिले है जल पाई है चूके भूख प्यास जियो पिंड सब तिसका सब किश तिसके पास बिन बोलिया सब किश जानदा किस आग्या कीचे अरदास नानक घट घट एको वरतदा शब्द करे परगास नानक तिसे बसंत है जे सतगुर सेव समाय हर गुठा मन तन सब परफड़े सब जग हरियावल होय शब्दे सदा बसंत है जित तन मन हरिया होय नानक नाम ना विसरे जिन सिरिया सब कोय नानक तिना बसंत है जिन्ना गुरमुख वस्या मन सोय हर उठे मन तन परफड़े सब जग हरिया होय वडड़े चाल चाल चलंबल है।

नानक घर बैठिया जोग पाइय सतगुर कै उपदेश चार कुंडा जे पवह वेद पढ़ह जोग चार नानक साचा भेटै हर मन वसै पावह मोख द्वार नानक हुक्म वरतै खसम का मत पवी फिरह चल चित मन मुख सहु कर दोस्ती सुख के पुछह मित गुरमुख सहु कर दोस्ती।

प्रसाद वडभागियां सुहागणी जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राय अंतर जोत परगासिया नानक नाम सुमाए। वाहो वाहो सतगुर पुरख है जिन सच

जिसनो समत सब कोए, वाहु वाहु सतगुर निर्वैर है, जिस निंदा उस्तत तुल होए, वाहु वाहु सतगुर सुजान है, जिस अंतर ब्रह्म विचार, वाहु वाहु सतगुर

हो, क्यों सज्जन मिलह प्यारिया, औंट नेंदी तिन सज्जन सच सुआरिया। सतगुर मैं दा मित है, जे मिले ता एहो मन वारिया।

सकी दुत्तर तरिया ना जाए नदर करे जिसे अपनी सो चले सतगुर पाए सतगुर का दर्श

नानक थीवन पी हरे जिन्ना गुरमुख अंदर ने हो तै प्रीतम सच्चै लाया राती अतै देहो नानक प्रेम समाया गुरमुख सच्ची आशकी जित प्रीतम सच्चा पाईऐ अन दिन रह आनंद नानक सहज समाईऐ।

नानक ले हो मलाए मैं जाचक दीजै नाम हर गुरमुख हसै गुरमुख रोवै जे गुरमुख करे साई भगत होवै।

संसार मन चिंदिया फल पाए सी अंतर विवेक विचार नानक सतगुर मिले प्रभ पाईए सब दुख निवारण हार मन मुख सेवा जो करे दूजे पाए चित लाए पुत कलत कुटुंब है माया मोह वधाए।

आए मानमुख हुकुम ना बुझे बपड़ी नित हों मैं कर्म कमाए वर्त नेम सोच संयम पूजा पाखंड भरम ना जाए अंतरों कसुद माया मोहे बेदे ज्यों हस्ती शार उड़ाए जिन उपाए तिसे ना चेत है बिन चेते क्यों सुख पाए नानक परपंच किया तुर करतै पूर्व लिखिया कमाए गुरमुख प्रतीत भई मन मानिया।

हो से सज्जन मैं नाल अंतर बाहर हों फिरा पी हिरदै रखा संभाल जिन्ना एक मन एक चित त्याया।

कूड करै आहार भिख माया धन संच मर है अंते हुए सब शार कर्म धर्म सुच संजम कर है अंतर लोभ विकार नानक मनमुख जे कमावै सो थाए ना पवै दरगाह हुए खुआर सबना रागा विच सो भला पाई जित वसया मन आए राग

आए जम्मन मरन ना चुकई हौ मैं कर्म कमाए गुर शरनाई उबरे नानक लए छडाए सतगुर पुरख हर त्याईंदा सत संगत सतगुर पाए सत संगत सतगुर सेवंदे हर मेले गुर मेलाए एहो भौ जल जग

जागन जे रसना नाम उचारने मृग तिसना पेख भुलने वुठे नगर गंधर्व जिन्नी सच अरादिया नानक मन तन फब पतत उदाहरण पार ब्रह्म समरथ पुरखे अपार जिस है उदारे नानका सो सिमरे सिरजनहार दूजी छोड़ कवाटड़ी इकस सौ चित लाए दूजै पावी नानका वहन लड़ंदड़ी जाए ते हटड़े बाजार सौदा करन बन जा रिया

जिस पास बहते आंसू ही है सब ना दावे सा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला नौवां गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन कहो नानक हर पज मना जेह बिद जल कौ मीन बिखियन स्यों काहे रचियो निमुख न होए उदास कहो नानक पज हर मना पर ना जम की पास तरना पो यों ही गयो लियो जरा तन जीत कहो नानक पज हर मना औद जात है बीत बिरद पयो सूजै नहीं काल।

नानक बिन हर भजन परत ताहे जम फंद जो सुख कौ चाहे सदा शरण राम की ले कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे माया कारण तावही मूरख लोग अजान कहो नानक बिन हर भजन।

है पाई चितवत रहे उठ गौर नानक फासी गल परी जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो ना कोए कहो नानक सुनरे मना हर पावे सो होए।

पहारा खौ खटियो पौरा नद गाय अष्टमाल कौ सक संग लाई पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सोत।

असंख भाओ, असंख पूजा, असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख योग मन रह उदास, असंख भगत गुण ज्ञान।

असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गाल वढ़त्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंद

हम कीरे किरम सतगुर शरणाई तर दया नाम परगास। मेरे मीत गुरदेव मुख और राम नाम परगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सुखाई।

मिले तब तस मिल संगत गुण परगास, जिन हर हर हर्ष नाम न पाया ते पाहीन जमपास, जो सदगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सदगुर संगत पाई तेन तुर मस्तक लिखया लिखास, तन तन सत संगत जित हर्ष पाया मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित्त वह उद्यम, जा आहार हर जीव परया।

तिनका पौ सब गवासी, जिन सेव्या जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर का रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत पंडार जी, परे बेंत बेंता, तेरे भगत सलाहंत जी।

मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, अवर काज तेरे कित ना काम, मिल साध संगत पद के वलना, सरंग जाम ला पवजल करन कै, जन्म बिरथा जात रंग माया कै, रहाओ जब तब संजम धर्म।

नित नित जीड़े समालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवे ते दाते तमन सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देव सज्जन असीसड़िया जो होवे सह सो मेल कर कर एहो पव।

मद देख फूला विसर तेरा चेतन आवे नाओ। श्री राग महला पहला कोट कोटी मेरी आरजा पावन पीण अपे आओ। चंद सूरज दो गुफे ना देखा सुपने सौन ना थाओ। ती तेरी कीमत ना पवे

रस सोयना रस रूपा कामन रस परमल की वास रस घोड़े रस से जा मंदर रस मीठा रस मास एते रस शरीर के कै कड़ नाम निवास जित बोलिया पद पाई है तो बोलिया प्रवान फिक्का बोल विगुचना

तन सास अड़सठ तीर्थ का मुक्टिकता तिरकड़ मत विगास उत्मति सालहाना सच नाम गुणतास बाबा होर मत होर जे सो वेर कमाई है कूड़े कूड़ा जोर रहाव पूजल के पीर आखिए ता मिले संसार नाव सदाए अपना होवे सिद्ध समार जापत लेखे ना पवे सबा पूज खुवार जिनको सा गुर थापिया तिन मेट न सके कोए ओ न अंदर ना मनदान है नामो प्रगट होए नाव पूजिए नाव मनिए अखंड सदा सच सोए खेऊ खेर लाइए ता जियो के आ होए जलियां सब सियाणपा उठी चलिया रोए नानक नाम सा।

सुख होए। जग सुपना बाजी बनी फिर मैं खेल खिलाए, संजोगी मिल एक से वियोगी उठ जाए। जो भाणा सोती है अवरना करना जाए, गुरमुख वस्त विसाई है सच वखर सच रास। जिन्नी सच वणंजिया गुर पूरे साबास, नानक वस्त पछाण सी

गुर निंदा पते पचान, परमे पूला दुख कणो, जमार करे खुलहान, मनमुख सुख न पाईए, गुरमुख सुख सुभान, ऐथे तंद पटाईए, सच लिखत परवान, हर सज्जन गुर सेवदा,

कर परमाइये मन हृदय कपट कमाए हर का महल न पावई मर विष्टा माए समाए मन रे गृह ही माए उदास सर संजम करनी सो करे गुरम खोए प्रगास हराव गुर के शब्द मन जीत।

इस मन को समझाए, ये मन आलस क्या करे, गुरमुख नाम त्याय, हराव हर भगत हर का प्यार है, जे गुरमुख करे विचार, पाखंड भगत ना हो गई, दुबदा बोर खुआर, सोजन रलाया ना रले, इस अंतर विवेक विचार, सो सेवक हर आखी है, जो हर राखे उर तहार, मन तन सौंपे आगे तरे, होमे विचो मार, तन गुरमुख सो प्रवान है, जे कदे न आवे हार, कर्म मिले ता पाई है, विण कर्म में पाया ना जाए, लखचौ रसी तरस दे, जिस मिले सो मिले हर आए, नानक गुरमुख हर पाया, सदा हर नाम समाए, श्री राग महला तीजा, सुख सागर हर नाम है, गुरमुख पाया जाए, अंदर नाम त्याई है, सहजे नाम समाए, अंदर रचे हर सच स्यों, रसना हर गुण गाए, पाई रे जग दुखिया दूजे पाए, गुरसरनाई सुख लह, अनदिन नाम त्याए, अरहाओ साचे मैल ना लग गई, मन निर्मल हर त्याए, गुरमुख शब्द पछाणिए, हर अमृत नाम समाए, गुर ज्ञान प्रचंड बलाया, अज्ञान अंधेरा जाए, मनमुख मैले मल परे, होमे तृष्णा विकार, बिन शब्दे मैल ना उतरे, मर जम्मे हुए खुवार, तातर बाजी पलच रहे, ना उरवार ना पार, गुरमुख जब तब संजमी, हर कै नाम प्यार, गुरमुख सदा त्याई है।

नित जोहे जम जाले, सुपने सुख ना देखनी, बहु चिंता पिर जाले, सबना का दाता एक है, आपे बख्श करे, कहना किशु ना जावई।

संतां संगत मिल रहे, जप राम नाम सुख पाए, हरहाव गुरमुख सदा सुहागणी, तिर रख्या उर तार, मिठा बोले निव चले, सेजै रवे पतार, होबावंती सुहागणी, जिन गुर का खेत अपार, पूरे भाग सदगुर मिले, जा भागे का उदय होए, अंतरों दुख प्रम कटिए, सुख प्राप्त होए, गुर के पाणे जो चले, दुख न पावे कोए, गुर के पाणे विच अमृत है।

अमृत सच्चा नाम है, तैना कछु न जाए, पीवत हू परवान पया, पूरे शब्द समाए, आपे देता पाई है, होर करना किशु न

जत सत संजम नाम है, विण नावे निर्मल न होए, पूरे भाग नाम मन वसे, शब्द मिलावा होए, नानक सहजे ही रंग वर्तदा, हर गुण पावे सोए, श्री राग महला तीजा, काया साधे उर्द तप करे, विचो होमे ना जाए, अध्यात्म कर्म जे करे, नाम ना कब ही पाए, गुर कै शब्द जीवत मरे, हर नाम से मन आए, सुन मन मेरे भाजे सतगुर सरना, गुर प्रसादी छुट्टी है, बिग भवजर शब्द गुर तरना, हर हाओ त्रै गुण सभा तात है।

क्या जप करी सतगुर पूछो जाए, सतगुर का पाणा मन लई विचों आप गवाए, एहा सेवा चाकरी नाम से मन आए, नामे ही ते सुख पाई है सच्चे शब्द सुहाए, मन मेरे

सच खटना सच रास है, सच्चे सच्ची सोए, सच मिले से ना विछड़ है, नानक गुरमुख होए। श्री राग महला तीजा, आपे कारण करता करे, सिरट देखे आप उपाय, तब एको एक वर्तदा, अलख न लिखया जाए, आपे प्रभु दयाल है, आपे दे बुझाए, गुरमति सद मनवसया, सच रखे लिवलाए, मन मेरे गुर की मन लेर जाए, मन तन शीतल सब सीए, नाम से मन आए, हरहाओ जिन कर कारण तारिया, सोई सार करे, गुर कै शब्द पछाणिए, जा आपे नदर करे, छे जन शब्द सोने तिस सच्चे दरबार, गुरमुख सच्चे शब्द रते आव मेले करतार, गुरमति सच सलाना, जेदा अंत न पारावार, कड़कड़े आपे हुमस।

खूब संतापना लगई, जिस घर का नाम आधार, बां पगड़ गुड़ काढ़िया सोई उतरिया पार, थान सुहावा पवित्र जिथे संत सभा, धोई तेसरी नो में।

गुरपूरा आराध नित एक सकी लिव लाग अरहाओ इको भाई मित एक इको मात पिता एक सकी मन टेक है जिन जियो पिंड दिता हो प्रमनो ना विसर जिन सब केश।

संग सुमाओ हर जप के आराधी है आड़ पैर गोविंद जी प्राण तान तन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दोह उतारेन प्रापार ब्रह्म भगसिंद श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तेज सच स्यो मरे न आवे जाए ना विछोड़िया विछड़े सब में रहा सुमाए दीन दर्द दुख पंजना सेवक कै सत पहा।

संता संगत मानस प्रीतम भग सिंध जिन सेव्या प्रवे अपन सोई राज नरेंद्र अवसर हर जस गुण रावण जित कोड मजन इस

पूरे ते पाई है अपनी नदर निहाल कर्म प्राप्त तिस होवे जिसनु होए दयाल मेरे मन गुर जेवड़ अवर ना कोए दूजा थाओ ना को सुजे गुर मिले ससोय अरहाओ सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए गुर चरणी जिन मन लगा सेवड़ पागी माए गुर दाता समरथ गुर गुर सब में रहा सुमाए गुर परमेश्वर पार ब्रह्म गुर डुबदा लय तराए केतम गुर साल आईए करण कारण समरथ से मथे नेचल रहे जिन गुर त्यारा हथ

विचार क्या छोड़ी बात गुमान रहाओ जैसे रैन प्रौने उड़चल से प्रभात क्या तू वृत्ता ग्रस्त स्यों

पौ संत सरणी लाग चरणी, मिटे दुख अंधार, सत संतोख दया कमावे एक करनी सार। आव छोड़ सब होए रेणा, जे दे प्रभ निरंकार, जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार। कहो नानक गुर परम काटया सगल ब्रह्म विचार। श्री राग महला पंजवा, दुकृत सुकृत मंद संसार सगलाना, तू ते रहत भगत है कोई विरला जाना। ठाकुर सर्वे समाना, क्या को सुनो स्वामी, तू वड़ पुरख सो जाना। रखाओ मान अवमान मंद सो सेवक नाही, तत्सम दर्शी संतो कोई कोड़ मंदाही।

रही जिन दिता आत्म दान आए से प्रवान है जिन गुर मिलिया सुखाए सच्चे से तीरतया दरगह बैसन जाए करते हाथ वडियाईया पूर्व लिखया पाए सच करता सच करन हार सच साहेब सच टेक सचो सच वखाणी है।

आओ सर्ज गबादो काल को बिन गुर काल अफार सच रते से उबरे दुबदा छोड़ विकार हों तिन के बलहारण दर सच्चे सतियार सीता ने जो पंखिया जाली बदक हाथ गुर राखे से उबरे

रावे रंग सच सुहागण सा भली फिर मोही गुण संग भूली भूली थल चढ़ा थल चढ़ू गर जाओ बन में भूली जे फिरा बिन गुर बूझ न पाओ नावो भूली जे फिरा फिर आवो जाओ पुछो जाए पधाऊआ चले चक्कर होए राजन जाने अपना दर कर ठाक न होए नानक एक और अवर दूजा अवर न कोय श्री राग महला पहला गुरते निर्मल जानी है।

मैल नाही निर्मल जल नहाए, निर्मल साचा एक तू और मैल परी सब जाए। अरहाओ हरका मंदिर सोना किया करने हार, रसा दीप अनूप जोत तिर पवन जोत पार, हाड पटनगढ़ कोचड़ी स सौदा व्यापार, ज्ञान अंजन पय पंजना देख नरंजन पाए, गोबत प्रट सब जानिए ये मन रखे ठाए, ऐसा सतगुरु जे मिले ता सहजे लय मिलाए, कस कस वट्टी लाई है परखे हित चित लाए, खोटे ठौर न पाए नी खरे खजाने पाए, आस अंदेसा दूर कर यूं मल जाए सुमाए, सुख को मांगे सब को दुख न मांगे कोए, सुखे को दुख अगला मन मुख बूझ न होए, सुख दुख सम कर जानिए शब्द पे सुख होए, वेद पुकारे वाचिए बाणी ब्रह्म व्यास, मुन जन सेवक साधका नाम रते गुणतास, सब दरते से जिन गए हाऊ सब बलिहारे जास, चौदुग मैले मल भरे जिन मुख नाम न होए, भक्ति पाए विगुणिया मोकाला पद खोए, जिन्नी नाम सारिया अवगुण मुठी रोए, खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए, आप पछाणे कर।

मारो वार सब सल आए आपको वडो वडेरी होए गुरमन आप ना चीनिए कै सुने क्या होए नानक शब्द पछाणिए होमे करे न कोए श्री राग महला पहला बिन पिर तन सी गारी है जो बनबाद खुआर ना माने सुख सेजड़ी बिन पिर बा सीगार दू कणो दोहागणी ना कर सेज पतार मान रे राम जपो सुख होए बिन गुर प्रेम न पाई है शब्द मिले रंग होए हरहाओ पुर सेवा सुख पाई है हर वर सह सीगार सच माने पिर सेजड़ी गूड़ा हेत प्यार गुरमुख जान सजानी है पुर मिली गुण चार सच मिलो वर कामणी फिर मोही रंग लाए मन तन साज बगसया कीमत कहन न जाए हर वर कर सोहागणी निर्मल सचे नाए मन में मनुआ जे मरे ता पिर रावे नार इकत तागे राह मिले कल मोतियन का हार संत सभा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार खिन में उपजे खिन खपे खिन आवे खिन जाए शब्द पछाणे रब रखे ना ते काल संताए साहेब अतुल ना तोलिए कसम न पाया जाए वापारी बन जा रहे आए वजो लखाए तार कुमावे सच की लाहा मिले रजाए पूंजी साची गुर मिले ना तिस तिल ना तुमाए गुरमुख तोल तोलाए सी सच तरा जी तोल आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल आप तलाए तोल सी पूरे पूरा तोल कसने कहन ना छुट्टी है ना पढ़ पुस्तक पार काया सोच ना पाई है।

साचो साहिब सेवी है गुरमुख अकथो कात आवे जाए पवाई है पए किरत कमाए पूर्व लिखिया क्यों मेटी है लिखिया लेख रजाए बिन घर नाम ना छुट्टी है गुरमत मिले मिलाए इस दिन मेरा को नहीं जिसका जियो प्राण हो में ममता जल बलो लोभ जलो अवमान नानक सौद विचारी है।

रय बक्से पवित्र भंडार अरहाओ रे मन ऐसी हरसो प्रीत कर जैसी मछली नीर यो अलको तो सोकनो मन तन सांत शरीर व्यंजल कड़ी न जीवई प्रभ जाने अव पीर रे मन ऐसी हरसो प्रीत कर जैसी चातक मेह सर पर थल हरी आवले एक बूंद न पवी के कर मिले सो पाईए किरत पया सिर देह अरे मन ऐसी घर सो प्रीत कर जैसी जल दुध होए आवटन आपे खवे दुध को खपन ना दे आपे मेल सुनिया सच वडियाई दे अरे मन ऐसी घर सो प्रीत कर जैसी चकवी सूर खेन पल नींद न सोवई जाने दूर हजूर मनमु सोजी ना पवे गुरमु सदा हजूर मनमुख गणत गणामणी तरता करे सोहोए ताकि कीमत ना पवे जे लोचे सब कोए गुरमत होए ता पाईए सच मिले सुख होए सच्चा रहो न टुटे जे सरगुर पेटे सोए ज्ञान पदार्थ पाईए तिर पवन सोजी होए निर्मल नाम ना विसरे जे गुण का घाक होए खेल गए से पंखणु जो चुगदे सर तल कड़ी के मोद के चलना खेल अज के कल जे तू मिले सो मिले जाए सच्चा पिड़ मल बिन गुर प्रीत न उपजे पौमे मैल न जाए सो हंग आ पछाणिए शब्द भेद पतियाए गुरमुख आ पछाणिए अवर के करे कराए मिलिया का क्या मेलिए शब्द मिले पतियाए मनमुख सोजी ना पवे।

मैं तुझ बिन अवर ना पावई, तू पावे सुख होय। हरहाओ नाम सलाही रंग स्यों, गुर के शब्द संतोख। जो दिसे सो चलसी, कूड़ा मोह ना वेख। वाट बटाऊ आया नित चलदा सा देख। आखने आखे केतड़े, गुर बिन बूझ ना होए। नाम डाई जे मिले सच रपे पद होए। जुत पावे से पले खोटा खरा न कोय। कुरसरनाई छुट्टिए मनमुख खोटी रास। अच ताद पासा की कड़ी गए शब्द विगा।

पहला राम नाम मन विद्या और के करी विचार शब्द सुरत सुख उपजे प्रवरतो सुसार क्यों पावे तू राख तू मैं घर नाम आधार मन रे सची खसम रजाए किन तन मन सा सिगारिया ते सेती लिवलाए हरहाओ तन बै संतर होमिए एक रत्ती तोल कटाए तन मन समदा जे करी अन्तन अग्न जलाए।

आगे पूछना हो भाई जबेली कुर करतार, आप छिड़ाए छुट्टी है आपे बख्शन हार, मन गुजाने अपने धिया पूत संजोग, नारी देख विगासी है नारे हरख सो सोग, गुरमुख शब्द गावले तहे निस हर रस भोग, चित ले वित जामुन सागत डोल डोलाए, बार टूंड गुची है कर्म वस्त सुधाए, मन बखो में कर्म सी गुरमुख पल्ले पाए, साकत निर्गुण आरिया अपना मूल पछाण, रगत बिंद का यो तनो अग्नि पास पिराण, पावने के बस देवरी मस्तक सच निशान, बहुता जीवन मंगिए मुआरा लोड़े कोए, सुख जीवन तिसिया किए जिस गुरमुख वसिया सोए, नाम विहूने क्या गणी जिस हर गुर दर्शन होए, जो सुपने निस पुलिए जब लग निंद्रा होए, तू सरपन केवल जीड़ा अंतर होमे दोए, गुरमत होए विचारिये सुबना एव जग लोए, अग्न मरे जल पाईए जो बारक दूते माए, बिन जल कमसो नाथिए बिन जल मीन मराए।

सिद्ध बह दे सुदान सोर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन सिख पीर सलार तार कूज कूचा कर गए अवरे पे चलन हार सुल्तान खान मलूक उमरे गए कर कर कूच कड़ी मोत के चलना दिल समझ तू पे पहुच सबदा माए बखानी।

सदगुर सेव गुण निधान पाया, तिसकी कीम न पाई, प्रभ सख हर जीओ मेरा, अंते हुए सखाई, तेईड़े जग जीवन दाता, मानमुख पत गवाई, बिन सदगुर को मग न जाने, अंधे ठौर न काई, हर सुख दाता मन नहीं वसया, अंत गया पछताई, तेईड़े जग जीवन दाता, गुरमत

आवे कवन बत मन खोज मार्ग हरहाओ ध्यानी ध्यान लाभ है ज्ञानी ज्ञान कुमाव है प्रभ किन ही जाता भगवती रहत जुगता जोगी कहत मुक्ता तपसी तपहराता मोनी मोन तारी सन्यासी ब्रह्मचारी उदासी उदास राता भगत नवे प्रकार पंडित वेद पुकार गृहस्थी गृहस्थ धर्महता एक शब्दी बहुरूप अवधूता कापड़ी कौते जागूता एक तीर्थ नाता निरहार वर्ती आ परसा एक लूक न देव है दर्शा एक मन ही ज्ञाता ताट न किन ही कहाया सब कहते हैं पाया जिस मेले सो पगता सागल उगत ओ पावा त्यागी शरण पावा नानक गुरचरण पराता एक ओंकार सदगुर प्रसाद श्री राग मुहला पहला कार तीजा जोगी अंदर जोगिया तू भोगी अंदर भोगिया तेरा अंत न पाया थुरग मछ पयाल जियो होंवारी होंवारणे कुर्बान तेरे नाव नो हरहाओ तू संसार उपाया सिरे सिर तंदे लाया वेख कीता अपना कर कुदरत पासा टाल जियो प्रगट पहारे जापदा थव नावे नू परतापदा सदगुर बाज ना पायो थव मोही माया जाल जियो सदगुर कौ पल जाइए जित मिले परमगत पाइए सुर नर मुंदन लोच दे तो सदगुर दिया बुझाए जियो सत संगत कैसी जानिए जिथे एको नाम खानिए एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो यो जगत परम भुलाया आपो तुद खुवाया।

तेरे अंतर शब्द वसाया सईया से सोहागनी जिन सय नाल प्यार जियो जिन्ना भाणे का रस आया तिन विचो परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए जियो सतगुर मिले फल पाया तिन विचो ऐ करण चुकाया दुरमत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतां हृदय सुमाणिया सुख सेवा अंदर रखे अपनी नदर तरे निस्तार जियो सतगुर मिलिया जानिए जित मिले नाम खाणिए सतगुर बाज ना पायो तब तक की कर्म कमाए जियो हो सतगुर विटो कुमाया जेन प्रफुल्ला मार्ग पाया नदर करे जय अपनी आपे लय रलाए जियो तू सबना माए सुमाया इन करते आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जा को जोत तरी करतार जियो आपे खसम निवाजया जियो पिंड दे साजया अपने सेवक की पैज रखिया तुए करमस्तक तार जियो सब संजम रहे सियाणपा मेरा प्रभ सब कुछ जानदा।

उत्तम नामक जिन श्रेया सब कोय जियो भारती सवे प्रतपालदा कर कर मैया सोए तो हर सदा त्याई है तिस बिन अवर ना कोए जो मोह माया चित लाए दे छे छोड़ चले दुख रोए जन नानक नाम त्याया हर अंत सकाई होए मैं हर बिन अवर न कोए हर गुर सुननाई पाइये वणजारिया मित्रा वडपाग प्राप्त होए हर हाओ संत जना विण पाइया हर किने न पाया ना हो विच होमे कर्म कमाम दे जो वेसवा पुत निनाओ पिता जात ना होई है गुर तुठा करे पसाओ वडभागी गुर पाया हर अहेनस लगा पाओ जन नानक ब्रह्म पछाणिया हर कीर्त कर्म कमाओ मन हर घर लगा चाओ गुर पूरे नाम दृढ़ाया हर मिलिया हर प्रभ नाओ हर हाओ जब लग जोबन सास गए तब लग नाम त्याए चल जा नाल घर चरसी हर अंते ले छिड़ाए हों बलेगारी तिन को जिन हर मन उठाया जिनी हर घर नाम न चेत्यो से अंत गए पछताए तुर मस्त घर प्रभ लिखया।

मन हर घर जपन करे, हर गुर सुननाई पज पो जिंदु, साब केल विख दुख पर हरे हरहाओ। धड़कड़ रमैया मन मसे, क्यों पाईए कित पत, गुर पूरा सदगुर पेटीए, हर आए वसे मन चित, मैं तर नाम आधार गए।

जननी जानत सुध बड़ा होत है, इतना को ना जाने, जे दिन दिन अवध कटत है, मोर मोर कर अटक लागत तार, पेगत ही जामरा हस है, ऐसा तय जग परमलाया, कैसे बूझे जा मोया गए माया रखाओ, कैद कबीर छोड़ बिखिया रस, इत संगत नेचो मरना, रमैया जपो प्राणी, अंत जीवन बाणी, एन वेद पवसागर तरना, जत भावे तां लागे भाओ, परम पुलाव चू जाए, उबजे सहज ज्ञान मत जागे, गुर प्रसाद अंतर लिव लागे, इत संगत ना ही मरना, हुं पछाण तां खसमें मिलना, रहाओ दूजा श्री राग त्रिलोचन का, माया मोह मन अग लड़ा प्राणी, जरा मरण पो मिसर गया, कुटंब देख विसे कमला ज्यों, पर कर जोग है कपट नरा, दूड़ा आयोह जमह तना, दिन आगलड़े में रहन न जाए, कोई कोई साजन आए कहे, मिल मेरे बीठला ले भाड़ी वलाए, मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए रहाव, अनक अनक भोगराज बिसरे प्राणी, संसार सागर पे अमर भया, माया मूठा चेत सनाही, जन्म गवायो आलसिया, बिगम कोर पंथ चलना प्राणी, रवस तय ना प्रवेशन, माया मोह तब सर गया, जा तजियले संसारं, आज मेरे मन प्रगट पया है, पेखियले तमराओ, तय करदल करन महाबली, तिन आगलड़े में रहन न जाए, जे को मुंह उपदेश करत है, ता वण त्रिण रतड़ा नारायण, अय जी तू आपे सबके जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया, श्री राग भगत कबीर जियो का, अचरज एक सुनो रे पंडिया, आप किस कहन न जाई, छोड़ नर गणक दर्बजन मोह, तिर पौन मेख लीलाई, राजा राम अनहद किंगुरी बाजे, जाकी दुष्ट नाद लिव लागे रखाओ, पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया, कनक कलश एक पाया, जमे तार चोया त निर्मल, रसमय रसन चोआया, ये जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजया, तीन पवन में एको जोगी, कहो कमन है राजा, ऐसे गण प्रगटिया पुरखोत्तम, कहो कबीर रंग राता, और दुनी सा परम पुलानी, मन राम रसायन माता, श्री राग बाणी भगत बेणी जियो की, पहरिया कह कर गावना, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, रे नर गर्भ कुंड जब आहित, उर ध्यान लिव लागा, मृतक पिंड पद मदना अहनिस, एक ज्ञान सो नागा, ते दिन संबल कष्ट महा दुख, आप चेत अलक पसारिया, गर्भ छोड़ मृत मंडल आया, तो नर हर मनो मसारिया, फिर पछतावेगा मूढ़िया, तुम कमन कुमत प्रम लागा, चेत राम नाही जयपुर जाएगा, जन बिचरे अनराधा, रहाव बाल विनोद चिंद्र सलागा, खिन खिन मोहे व्यापे, रस मिस मेद अमृत दिख चाखी, तो पंच प्रगट संतापे, जब तब संयम छोड़ सुकृत मत, राम नाम ना अराध्या, कुछ लिया काम काल मत लागी, तो आन सकत काल बंधया, तरण तेज परतरे मुख जो है, तर अवसर ना पछाणया, उन मत काम मां दिख भूले, पाप उन ना पछाणया, सुत संपत देख यो मन गर्भया, राम हृदय ते खोया, अवर मर्त माया मन तोले, तो भाग मुख जन्म मगोया, पुंडर केस कुसुम ते तौले, शब्द पाताल की बाणी, लोचन समय बुद्ध बल नाठी, ता काम पव समाधानी, ताते विखे पई मत पावस, काया कमल कुमलाना, अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाशे पछताना, निगटी दे देख तन उबजे, मान करतनी बूझे, लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कछु ना सूझे, ठाका ते उड्या मन पंखी, कर अंग ना सुखाई, बेणी कह सुनो रे भगतो, मरण मुक्त किन पाई, श्री राग तोही मोही, मोही तोही अंतर कैसा, तनक कटक जल तरंग जैसा, जो पे हमना पाप करंता, अहे अनंता पतद पावन नाम कैसे हुंता, रखाओ तुम जो नायक आछो अंतर जामी, प्राप्त जान जानी जय जानते स्वामी, शरीर आराध्य मोको विचार देहु, रवदास समदल समझावे को, राग माज

प्रकाश हुआ जी अन दिन सरगुण गावनिया रखाओ तन मन खोजे ता ना ओ पाए ताप राखे ठाक रखाए गुर की बाणी अन दिन गावे सहजे भगत करावनिया इस काया अंदर वस्त असंखा गुरमुख साच मिले ता वेखा नौ दरवाजे दसवें मुक्ता अनहद शब्द बजावनिया सच्चा साहेब सच्ची नाई गुर प्रसादी मन वसाई आन दिन सदा रहे।

ठाकुर सदृढ़ाए, गुर प्रसादी सच चित लाए, सचो सच वरते सबनी ताई, सचे सच समावणिया, वे प्रवाहो सच मेरा प्यारा, किल विख अवगन कट नहारा, प्रेम प्रीत सदा तिहाईए, पै पाए भगत दृढ़ावणिया, तेरी भगत सची जे सचे पावे, आपे देना पुछो तावे, सबना जिया का एको दाता, सबदे मार जीवामणिया, हार तुद बाजो मैं कोई नाही, हर तुदे सेवी ते तु सारा ही, आपे मेले ओ प्रसाचे, पूरे कर्म तू पावणिया, मैं होर न कोई तुदे जेहा, तेरी नदरी सीज देहा।

अंतरवस रहे नानक नहीं सुमार दिन रहन जे प्रभु कौ सेम दे तिन कै सद बलिहार संत आराधन ससदा सबना का बगसिंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दित्ती अन जिंद गुरसबदी आराधी है जपिए निर्मल मंत कीमत कहण ना जाई है परमेसर बेअंत जिस मन वसे नारायण सो कहिए भगवंत जी की लोचा पूरी है मिले स्वामी कंत नानक जी वे जप हरी दोग सबे ही हंत दिन रहन जिस नाम विसरे सो हरिया हो वै जंत सर्व कला प्रापूर्ण मन ने माणी थाओ हर ओढ़ गई मन अंदर जप जप जीवान आओ कर कृपा प्रवे अपनी जन धूड़ी संग समाओ ज्यों तू राख त्यों रहा तेरा दिता पहना खाओ उदम सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाए ना सुजई किथे कूकण जाओ अज्ञान बिनासन तम हरण ऊचे अगम अमाओ मन विछड़िया हर मेलिए नान क्यो सुआओ सर्व कल्याणा तित देन हर परसी गुर के पाओ वार माज की तथा श्लोक महला पहला मलका मरीद तथा चंद हरड़ा सुया की तुनी।

असंत अनाड़ी कदे ना बूझे, कथनी करे तै माया नाल लूझे, अंध अग्ञानी कदे ना सीजे। इस जुग में राम नाम निस्तारा, विरला को पाए गुरु शब्द विचारा, आप करे सगले कुल उधारा। इस कल युग में कर्म तर्म ना कोई, कली का जन्म चंडाल कह कर होई, नानक नाम बिना

प्रीत होवे अन्न खाए, गुर सिख प्रीत गुरमिल आघाए, हर दर्शन देव हर आस तुम्हारी, हर कृपा लोज पूर हमारी रहाओ। चकवी प्रीत सूरज मुख लागे, मिले प्यारे सब दुख त्याग, गुर सिख प्रीत गुरु मुख लागे, बचरे प्रीत खीर मुख खाए, हिरदे बिगसे देखे माए, गुर सिख प्रीत गुरु मुख लाए, होर सा प्रीत माया मुख काचा, बिन सजाए पूरा कज पाचा, जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा। गौड़ी ग्वारेरी महला चौथा, सतगुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम त्याया हर तनी, जिन हर जपया तिन पीछे छूटी कणी, गुर सिख

तोड़ बंधन माया, धरके कमलाए नित हर गुण गावे हर नाम समाए रहाओ। नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजे अर्थ सब माया, कै बंध कै डान ले कै नरपत मर जाया। तन तन सेवा सफल सतगुरु की जित, हर हर नाम जप हर सुख पाया। नित सौदा सूद कीते बहु पांत कर, माया कहताई जा लहा दे ता सुख मने। टोटे मर जाई जो गुण सांझी गुर स्यों करे, नित नित सुख पाई। जितनी भूख अनर साध है तितनी भूख फिर लागे, जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आगे। जन नानक हर हस तृप्तया फिर भूख न लागे, गौड़ी बैरागण महला चौथा। हमरे मन चित हर आस नित क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा, जिन प्रीत लाई सो जानता। हमरे मन चित हर बहुत प्यारा, हों कुर्बानी गुर अपने जिन विछड़िया मिलिया।

उपदे दियो हर नाम छिड़ावे तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुर बोले ता विस्म हो जाए हम जैसे अपराधी अबर कोई राख है जैसे हम सतगुर राख लिए छिड़ाए तू गुर पिता तू है गुरु माता तू गुर बंधप मेरा सगा सगाए जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा सा विद तुम घर जानो आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता

आओ जो हमरे मन चित है स्वामी साबिद तुम घर जानो मेरी अनदिन नाम जपी सुख पाई निर्जीवा आस घर तेरी गौर सतगुर दाते पंथ बताया हर मिलिया आयपा मेरी अनदिन अंध पया बड़ भागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश करते साब

आगे हर जन घर घर नाम समान दुख जन्म मरण पव खंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहुत शोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मुस्कीन प्रातेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नाम में ही सुगमंडा है गौड़ी पूर्वी मोहल्ला चौथा इस गढ़ में हर राम राय है।

और अग्मे को तिर पार ब्रह्म है मिले सदगुरु लाग बसीठा जिन गुर बजन सुखा ने ही अरे तिन आगे आन परीठा मानमुख हीरा अत कठोर है तिन अंतरकार करीठा बिशीर कौबो दूध पियाये बिग निगसे फोल फुलीठा हर प्रभ आन मिलावो गुर साधु कास गरड़

प्रीत राम राय की गुरमार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सगुर आगे जिन विछड़िया हर गल लाया। मेरे अंतर प्रीत लगी देखन को गुर हिरदे नाल दिखाया। सहज आनंद पया मन मोर गुर आगे आ विच आया। हम अपराध पाप कीने सर दुटी चोर चुराया। आप नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर पाया। गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाहद। गुरमत मनुआ गावे वड़भागी गुर दर्शन पाया। तन तन गुरु लिवलावे गुरमुख हर लिवलावे रहाओ। हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे। हम मल मल धोवे पाप गुरु के जो हर हर कथा सुनावे। हिरदे गुरमत राम रसायण जे वा हर गुण गावे। मन रसक रसक रस आघाने फिर बोर ना पूख लगावे। कोई करे उपाय।

जियो और अंतर नाम निधान है मेरे गोविंदा गुरशब्दी हर प्रभ गाजे जियो आपे शरण पवाएदा मेरे गोविंदा हर भगत जना राख लाजे जियो वडभागी मिल संगति मेरे गोविंदा जन नानक नाम सिद्ध काजे जियो गौड़ी माज मखला चौथा मैं घर नामे घर बिरो लगाई जियो मेरा हर प्रामित मिले सुख पाई जियो हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो मेरा नाम सखागर पाई जियो गुण गावो संत जियो मेरे घर प्रभ केरे जियो जब गुरमुख नाम जियो भाग वडेरे जियो हर घर नाम जियो प्राण घर मेरे जियो फिर बौड़ ना पवजल फेरे जियो क्यों हर प्रभ वेखा मेरे मन तन चाओ जियो हर मिलो संत जियो मन लगा पाओ जियो गुर सबदी पाई गए घर प्रीत मराओ जियो वडभागी जपनाओ जियो मेरे मन तन वडड़ी गोविंद प्रव्यासा जियो हर मिलो संत जियो गोविंद प्रापासा जियो गुरमत नाम सदा प्रगासा जियो जन नानक पूरे अड़ी मन आसा जियो गौड़ी माज मगला चौथा मेरा बिरगी नाम मिले ता जीवा जियो मन अंदर अमृत गुरमत घर लीवा जियो मान हर अंगरतड़ा हर सदा पीवा जियो हर पायड़ा मन जीवा जियो मेरे मन तन प्रेम लगा घर बाण जियो मेरा प्रीत मित्र घर पुरख सुजान जियो गुरमेले संत हर सुड़ सुजान जियो हौ ना मिटो कुरबान जियो हौ हर घर सज्जन हर मीत दसाई जियो हर दसो संतो जी।

जाकी सोभा कड़कड़ बनी, जे सिमरत तो डेरा टहे, जे सिमरत जम किशु ना कहे, जे सिमरत खुद सूके घरे, जे सिमरत डूबत पान तरे, संसभा को सदा जयकार, हर का नांदन प्राण आधार, कहो नानक मेरी सुनी अरदास, संत प्रसाद मोको नाम निवास, गौड़ी ग्वारेरी मोहल्ला पनवा, ठाकुर दर्शन अग निवारी, ठाकुर पेड़ तहो में मारी, ठाकुर संग नाही मन डोले, अमृत बाणी गुरमुख बोले, सब जग साचा जा सत मेरा ते, शीतल सांत गुरते प्रव जाते रहाओ, संत प्रसाद जपे हर नाओ, संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ, संत प्रसाद सगर दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुट्टे, संत कृपा ते मिटे मो परम, साध रेण मज्जन सब धर्म, साध कृपाल दयाल गोविंद, साधा मैं ए हमरी जिंद, कृपा निर कृपाल ते आव, साध संगता बैठन पाव, हुए निर्गुण को प्रो की नी दया, साध संग नानक नाम लया, गौड़ी ग्वारेरी मोहल्ला पंजवा, साध संग जप्यो भगवंत, केवल नाम दियो गुरमंत, अज अवमान पै निरवैर, आड़ पैर पूजे गुर पैर, आव मत मिर्ची दुष्ट बगानी, जाते सुनिया हर जकानी, हरखाओ सह सु आनंद निधान, रखन हार रख ले निदान,

मिल नानखर अंतर जामी गौड़ी मोहल्ला पंजवा आड़ पर संगी पटवारे हर कृपा प्रलय निवारे ऐसा हार सरमो सब कोय सर्वकला पूर्ण प्रसोए रहाओ महा तप्त सागर संसार प्रखिर में पार उतारन हार अनक बंधन तोरे नहीं जाहे सिमरत नाम मुग्ध फल पाहे उगत सियानप इस्ते कशनाहे हर कृपा नान गुण गाहे गौड़ी मोहल्ला पनवा साती पाई हर को नाम बिचर संसार पूर्ण सब काम वडभागी हर कीर्तन गाई है पार ब्रह्म तू देता पाई है रहाओ हर के चरण हृदय उतार हर सागर चढ़ उतरे पार साधु संग करो सब कोय सदा कल्याण फिर दुख न होए।

सोपाया मया करी पूर्ण हर राया रहाओ। कहो नानक जाके पूरे पाग हर हर नाम हस्त्र सुहाग। गौड़ी मोहल्ला पनवा तोती खोल विछाए हेठ गर्द वांगू लागे पेट। बिनकर तूती मुक्त न पाई है मुद पदार्थ नाम त्याई है रहाओ। पूजा तिलक करत इसनाना चुरी कढ़ लेवे हसदाना। वेद पढ़े मुख मीठी बाणी जिया कोतना संगे प्राण।

संतन टहलायो, एक नाम को थियो पुजारी, मोको अचरज गुरे दिखायो, पयो प्रगास सर पुजियारा, गुर ज्ञान मने प्रगटायो, अमृत नाम पियो मन तृप्तया, अनपय ठहरायो, मान आज्ञा सर सो पाए, दुखे ठाओ गवायो, जौ सो प्रसन्न पय प्रभ ठाकुर, तब आनंद रूप दिखायो, नाकश आवत नाकश जावत, तब खेल कियो हर आयो, तो नानक अगम अगम है ठाकुर, भक्त ते कर नायो, गौड़ी मखला पंजवा पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मनता की ओढ़ भी जय रे जिन तारे ब्रह्मांड खंड हर ताको नाम ज पी जय रे रखाओ मन की मत त्यागो हर जन सुगम भू सुख पाइये रे तू प्रभ करे सोई फल मानो सुगद ओई त्याई गे रे ओढ़ पत ओधारे खिन में करते बार ना लागे रे दीन दर्द हो पंजन स्वामी ते भावित से निवाजे रे सबको माल पिता प्रतपालक जी प्राण सुख सागर रे तेंदे तोड़ नहीं तस करते पूरे और तनागर रे जाजग जाते नाम तेरा स्वामी कड़कड़ अंतर सोई रे नानक दाता की शरणाई जाते बिरथा ना कोई रे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद हर घर कबूरा मनो विसारे ईगा उहा सर्व सुख दाता सगल कटा प्रतपारे रखाओ महा कट काटे पीतर रसना नाम पितारे शीतल सांत सुखर सरणी जलती अगन निवारे गर्भ कुंड नरक ते रख हजल पारे उतारे चरण कमल आरा तुम में जमकी त्रास बेदारे पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगमे पारे गुण गावत त्यात सुख सागर जुए जन मनागारे ताम क्रोध लोभ मोह मन लीनो निर्गुण के दातारे कर कृपा अपनो नाम दीजे नानक सत बरेगारे राग गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुगना ही रे घर भगत बेना जीत जन रतने मूर्ख सा संगत जप एक ना रहाओ सुत संपत बनता बिनोद छोड़ गए बो लोग भोग हैबर गैबर राज रंग जा चलो गए मूड रंग चूवा चंदन दे पूलिया सो तन तरसंग रूलिया मोय मोया जाने दूर है कहो नानक सदा हदूर है गौड़ी महला पंजवा मान कर तरबे हर नाम नो सागर लहर संसार संसार गुर बोध पार ग्राम नो रखाओ कल कालक अंधियारिया गुर ज्ञान दीप उजियारिया बिख बिखिया पसरी अत कनी उबरे जब जब हर गुनी मतवारो माया सोया गुर पेड़ प्रम पखोया कहो नानक एक तिहाया काल कर नदरी आया गौड़ी महला पंजवा दीवान हमारो तुही एक सेवा तारी गुरे टेक रखाओ अंग जुगत नहीं पाया गुर चाकर ले लाया मारे पंच बिखा दिया गुर कृपा ते दल साध्या बगसी जो मिल एक नाम सोग सहज आनंद विश्राम प्रभ के चाकर से पले नानक तेन मुख उजले गौड़ी महला पंजवा जीरे ओला नाम का अवर जे करन कराम नो तिन मैं पौ है जाम का रखाओ अवर जतन नहीं पाई है वडे पा घर त्याई है लाख इकमती जानिए आगे तिल नहीं मानिए अंग बुद्ध कर्म कुमामने ग्रे बालू नीर बगामने प्रभ कृपाल कृपा करे नाम नानक साधु संग मिले गौड़ी महला पंजवा बार ने बलिहार ने लख बरिया नाम हो नाम सब को प्राण अधरिया रहाओ करन करावन तुही एक जी जंद की तुही टेक राज ओम प्रा तू तनी तू निर्गुण तू सरगुनी ईगा ऊगा तुम रखे गुर कृपा ते को लखे अंतर जामी प्रसुजान नांग तकिया तुही तान गौड़ी महला पंजवा हर घर हर आरा दिए संत संघर मन मसे पर मोह पो सदिये रहाओ वेद पुराण सिमरत पने सब ऊच ब्राजत जन सुने सगल स्थान पे पीत कीन राम सेव कह रहत कीन लख चौरासी जून फिरे गोविंद लोक नहीं जन्म मरे बाल बुस जान पहो में रही हर सा शरण नानक गही गौड़ी महला पंजवा मन राम नाम गुण गाई है नीत नीत घर सेवीए सास हर त्याई है रखाओ संत संघर मन मसे दुख दर्द अनहेरा प्रमन से संत प्रसाद हर जापी है तो जन दुख ना व्यापी है जाको गुरु हर मंत्र दे तो उबरिया माया अगन ते नानको प्रमया कर मेरे मन तन वसे नाम हर गौड़ी महला पंजवा रसना जपिए एक नाम ईगा सुख आनंद कना आगे जी के संग काम रखाओ
ਕਟਕੇ ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਰੋਗ, ਤੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਰਾ ਜੋਗ, ਹਰ ਜਨ ਜਨ ਚਾਖਿਆ, ਤਾਕੀ ਤਿਸ ਨਾ ਲਾਥੀਆ, ਹਰ ਵਿਸਰਾਮਦ ਪਾਇਆ, ਤੋ ਬਹੁਰ ਨਕਤ ਹੀ ਤਾਇਆ, ਹਰ ਘਰ ਨਾਮ ਜਾਕੋ ਗੁਰਦੀਆ, ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਪਉ ਗਿਆ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਾਕੋ ਬਿਸਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਤਾਉ ਕੋ ਪੀਰ, ਸਾ ਸੰਤ ਮਿਲ ਹਰ ਅਵੇ, ਸੇ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਰਖਾਓ, ਜਾਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੇ ਬੁੱਧ, ਤਾਕ ਕੇ ਕਰਤਲ ਨਵਨ ਸਿੱਧ, ਜੋ ਜਾਣੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤਨੀ, ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਤਾ ਕੇ ਕਮੀ, ਕਰਨੇ ਘਰ ਪਛਾਣਿਆ, ਸਰਬ ਸੂਹ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ, ਹਰ ਤਨ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਸੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਸੰਗ ਦੁੱਖ ਨਸੈ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੜਬੜੋ ਮੂਲ ਇਤਨੋ।

चित संसार गुर में ले रहाओ, जावला होक सोचो चितवाओ, तौलो दुखन परे, जो कृपाल गुर पूरा फिटया, तो आंद सहजे, जेती स्यानप कर्म हो किए, तेते बंद परे, जो साधु कर मस्तक तरयो, तब हम मुक्त पए, जो लो मेरो मेरो करतो, तौलो भे केरे, मन तन बुद्ध अर्पी ठाकर को, तब हम सहज सोए, जो लो पोट उठाई चले हो, तौलो डान परे, पोट डार गुर

पारगरामी गुर सेवो हर नाम त्यावो यगो मनो गुमानी गौड़ी माला मोहल्ला पंजवा माधो हर घर हर मोह कही है हम ते कछु न हो वै स्वामी ज्यो राखो त्यों रही है रखाओ क्या किस करे के करने हारा क्या इस हाथ बिचारे जित तुम लाभ हो तित ही लागा पूर्ण खसम हमारे।

बहुमान जोर तुम्हारे सुख वसा सच शब्द निशान रखाओ सबे गल्ला जातियां सुन के चुप किया कद की सुरत ना लदिया माया मोड़िया दे बुझारत सारता से अखें डिठड़िया कोई जे मूर्ख लोभिया मूल ना सुनी कहया एक स दो चौक्या गणी सब एक त साध मुठी एक अग नाय रसीड़ा।

दियो गुर, गुर सच्चा सिरजनहार, गुर तुठे सब किछ पाया, जन नानक सद बलिहार, गौड़ी माज मखला पंजवां, हर राम राम राम रामा जब

मित्र सब पदार्थ सब भला सर्व गुणा जिस माहे क्यों गोविंद मनो मसारी है जिस सिमरत दुख जाहे जिस लड़ लगे है जीवी है भवजल पई पार मिल साधु संग उधार होए।

बाद यो मन गयो न जाई, चंचल तृष्णा संग बस्त है, या ते थिर न रहाई, रहाओ कठन क्रोध कट ही के पीतर, जे शुद्ध सब सराई, रतन ज्ञान सब को हर लीना, तासु कछना बसाई, जोगी जतन करत सब हारे, गुनी रहे गुन गाई, जन नानक हर पय दयाला, तौ सबिद बन आई, गौड़ी महला नामा, साधो गोविंद के गुन गावो, मानस जन्म अमोलक पायो, बिरथा काय गवाव और हाओ, पतत पुनीत दीन बंद हर, शरण ताए तुम्हें आओ, गाय को त्रास मिट्यो जे सिमरत, तुम काहे बिसरावो, ताज अभमान।

माया मोह महासंकट बाण तास्यो रुच उपजावे अंतर बाहर सदा संग प्रभ तास्यो निहो न लावे नानक मुक्त ताहे तुम मानो जे कड़ राम सुमावे गौड़ी मोहल्ला नावा साधो राम शरण बिसरामा वेद पुराण पढ़े को ए गुण सिमरे हर को।

कैसा डर कमन, शब्द पिछाने तीन ने पावन, जिन कहया तिन कहे नुखाने, जिन बूझिया तिन सहज पिछाने, देख विचार मेरा मन माने, कीर्त सूरत मुक्त इकनाई, तही निरंजन रहा सुमाई, निकर व्याप रहा निचाई।

मन त्रिवतास्या अलख अपेवा, जय जय देखो तय तय साचा, बिन बूझे झगरत जग काचा, गुर समझावे सोजी होई, गुरमुख विरला बूझे कोई, कर कृपा रख हो रखवाले, बिन बूझे पशु पय बेताले, गुर कया अवर नहीं दूजा, किस को देख करो अन पूजा, संत हेद पर तिरपमन तारे, आत्म चीने सो तत् विचारे, साज हृदय प्रेम निवास, परम नानक हम ताके दास, गौड़ी महला पहला, ब्रह्मे गर्व किया नहीं जानिया, वेद की विवत पड़ी पछतानिया, जय प्रसमरे तई मन मानिया, ऐसा गर्व बुरा संसार, जिस गुर मिले जिस गर्व निवार रहाओ, बल राजा माया अहंकारी, जगन करे वो पारे वारी, बिन गुर पूछे जाए पयारी, हरि चंद दान करे जस लेवे, बिन गुर अंत न पाए अपेवे, आप पुलाए आपे मत देवे, दुर्मत हरनाश दुराचारी, प्रभ नारायण गर्व प्रहारी, प्रहलाद उधारे कृपा तारी, फूलो रावण मुद अचेत, लूटी लंका सीत समेत, गर्व गया बिन सदगुर हेत, सहस बहु मद कीट में खसा, हरनाश ले नहो बेदासा, दय संघारे बिन भगत अभ्यासा, जरा संध काल जमना सिंघारे, रक्त बीज काल नेम बिदारे, दय सिंघार संत निस्तारे, आपे सदगुर शब्द बीचारे, दूजे पाए दैत संघारे, गुरमुख साहिब भगत निस्तारे, बूढ़ा दुर्योधन पद खोई, राम न जानिया करता सोई, जान को दुख पचे दुख होई, जिन मेजे गुर शब्द न जानिया, क्यों सुख पावे परम भुलानिया, एक तिल पूले बौर पछतानिया, कांस केस चांडूर ना कोई, राम न चीन्या अपनी पद खोई, बिन जगदीश न राखे कोई, बिन गुर गर्ब न मिटिया जाए, गुरमत धर्म तीर्ज हर नाए, नानक नाम मिले गुण गाए, गौड़ी महला पहला, चोवा चंदन अंक चढ़ाओ, पाठ पटंबर पैर हंडाओ, बिन हर नाम कहाँ सुख पावो, क्या पैरो क्या ओढ़ दिखावो, बिन जगदीश कहाँ सुख पावो, रहाओ कानी कुंडल गाल मोतियन की माला, लाल निगाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहाँ सो पाला, नैन सुनोनी सुंदर नारी, खोर सीगार करे अद प्यारी, बिन जगदीश पजे नित कुवारी, दार कर महिला से सुखाली, तैनस फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो दे सुखाली, ऐबर गैबर नेजे वाजे, लस्कर नेब खुवासी पाजे, बिन जगदीश झूठे दिवाजे, सिद्ध कहावो हृद सिद्ध बुलाओ, ताज कुल है सिर छत्र बनाओ, बिन जगदीश कहां सद पाओ, खान मलूक हावो राजा, अबे तबे कूड़े गए पाजा, बिन गुर शब्द न सबर सकाजा, होमे ममता गुर शब्द विसारी, गुरमत जान्या हृदय मुरारी, परमत नानक शरण तुम्हारी, गौड़ी महला पहला, सेवा एक न जानस अवरे, पर पंच ब्याद त्यागे कवरे, पाए मिले सच साचे सच रे, ऐसा राम पत जन होई, हर गुण गाए मिले मलत होई रहाओ, उन्दो कावल सगल संसारे, दुर्मत अगन जगत पर जारे, सो उबरे गुर शब्द विचारे, प्रेंग पतंग कुंचर अरमीना, मिर्ग मरे से अपना कीना, तिसना राज तत् नहीं बीना, काम चिते कामन हितकारी, क्रोध बेनासे सगल विकारी, पात मत खोवे नाम सारी, पार कर चीत मनमुख डोलाए, गल जेवड़ी तंदे लपटाए, गुरमुख शूड़स

वेद पुराण पढ़े सुन थाटा, बिन रस राते मन भो नाटा, ज्यों चातरक जल प्रेम प्यासा, ज्यों मीना जल भाए उलासा, नानक हरस पी त्रिपतासा, गौड़ी महला पहला, हड़ कर मरे ना लेखे पावे, वेस करे बो पसम लगावे, नाम सार बोल पुछतावे, तू मन हर जियो तू मन सूख।

मुका सा मरे संते माया दाम मैं तन दीजे हर अमृत नाम रैयत मैर मुकदम सिकदार निचल कोई ना दिसे संसार अफर काल कूड़ सिर मार निचल एक सच्चा ससोई जिन कर साजी तिने सब गोई ओ गुरमुख जापे ता पद होई काजी सेख पेह फकीरा वड्डे कहावे होमे तन पीरा काल ना छोडे बिन सरगुर की तीरा काल जल जेवा अरनैनी कानी काल सुने बिखबैनी बिन शब्दे मूठे दिन रैनी हिरदे साच बसे हर नाय काल ना जोए सके गुण गाए नानक गुरमुख सब सुमाए गौड़ी महला पहला बोले साज मिथ्या नीराई चाले गुरमुख हुक मर जाई रहे अतीत सच्चे सरनाई सत कर बैसे काल ना जोह मनमुख को आवत जावत दुख मोह रहाओ आप्यो पियो अकथ कथ रहिए निर कर बैस सहज कर लइए हस माते उस कहिए गुरमत चाल निचल नहीं डोले गुरमत साच सहज कर बोले पीवे अमृत तत विरोले सतगुर देखिया दिखिया लीनी मन तन अर्प्यो अंतरगत कीनी गत मित पाई आत्म चीनी भोजन नाम निरंजन सार परमहंस सजो त्यो पार जय देखो है एक अंकार रहे निरालम एक असर करनी परम पद पाया सेवा गुर चरणी मन ते मन मानिया चुकी अंग प्रमणी एन बिद कौन कौन नहीं तारिया हर जस संत भगत निस्तारिया प्रभ पाए हम अवर ना पारिया साच मैल गुर अलख लखाया निचल मैल निशाया माया शासन तोखे परम चुकाया जिनके मन मसिया ससोई तिनकी संगत गुरमुख होई नानक साच ना मलख होई गौड़ी महला पहला राम नाम चित्रा पे जाका उपजंब दर्शन की जे ताका राम ना जपो अपाग तुम्हारा जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा रहाओ गुरमत राम जपे जन पूरा तेत काट अनहद बाजे तूरा जो जन राम भगत हर प्यार हे प्रभ राखे कृपा तार जिनके हृदय हर घर सोई तिनका दर्श परस होई सर्व जिया में एको रवे मन अहंकारी फिर जूनी पवे सो बुझे जो सदगुर पाए होमे मारे गुर सब दे पाए अर्ध उर्ध की संद क्यों जाने गुरमुख संद मिले मन माने हम पापी निर्गुण को गुण करिए प्रभ होए दयाल नानक जन करिए सोले अष्टपदियां।

ले आप हो जाओ। मानमुख सूत को कहे न जाए, जिचिर शब्द न पीजे हर कहे न आए। रहाओ सबो सूत के जेता मो आकार, मर मर जमे वारो वार। सूतक अग्न पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किस खाहे। सूतक करमन पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए। सदगुर सेवे सूतक जाए, मरे न जन्मे काल न खाए। शास्त्र सिमरत सो देखो कोए, विण नावे को मुक्त न होए। जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, काल में गुरमुख उतरस पार। साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रहे सुमाए। गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण आधारा। हर जू राखो हृदय उरतारा, गुरमुख सोभा साज दुआरा। पंडित हर पढ़ तजो विकारा, गुरमुख भौजल उतरो पारा। रहाओ गुरमुख विचो होमे जाए, गुरमुख मैल न लागे आए। गुरमुख नाम से मन आए, गुरमुख कर्म धर्म सच होई। गुरमुख अंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुखोई। अपना मन पर बुद्ध हो बुझो सोई, लोग समझावो सुने ना कोई। गुरमुख समझो सदा सुखोई, मनमुख डंप बहु चतराई। जो कुछ कमावे सो थाए ना पाई, आवे जावे ठौर ना काई। मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना, बागजो लाए बहे नित्याना। जा पकड़िया तब की पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई। गुर प्रसादी मिले हर सोई, गुरदाता जुग चारे होई। गुरमुख जात पद नामे वड्याई, सायर की पुत्री बिदार गवाई। नानक बिन नावे झूठी चतराई, गौड़ी महला तीजा। ए जो का धर्म पढ़ो तुम पाई, पूरे गुरसब सोजी पाई। ऐथ अगे हर नाम सिखाई, आराम पढ़ो मन करो विचार। गुर प्रसादी मैल उतार। रहाओ वाद विरोध न पाया जाए, मन तन फीका दूजे पाए। गुर कै शब्द सच लिव लाए, हौ में मैला एओ संसारा। नित तीर्थ नावे न जाए अंकारा, बिन गुर पेटे जम करे खुवारा। सोजन साचा दे हो में मारे, गुर के शब्द पंच संघारे। आप तरे सगले कुल तारे, माया मोहे नट बाजी पाई। मानमुख अंदर है लबटाई, गुरमुख अलिप्त रहे लिवलाई। बहुते पेख करे पेख तारी, अंतर से न फिरे अंकारी। आप न चीने बाजी गारी, कापड़ पैर करे चतराई। माया मोहे अध परम फुलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई। नाम रते सदा बैरागी, गृह अंतर साच लिव लागी। नानक सतगुर सेवा से वड़भागी, गौड़ी महला तीजा। ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा, तेते उपजे दे मोह प्यासा। त्रै गुण परमे नाही निज करवासा, हम घर राखे सतगुरु मिलाया। अन दिन भगत घर नाम दृढ़ाया। रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पड़वाद वखाणे सिर मारे जमकाला। तत न चीने बन्ने पंड पराला, मनमुख अज्ञान कुमार्ग पाए। हर नाम सारिया बहु कर्म दृढ़ाए, पवदल डूबे दूजे पाए। माया का मोहताज पंडित कहावे, विख्या राता बहु दुख पावे। जम का गल जेवड़ा नितकाल संतावे, गुरमुख जम काल ने

पद पाईए ना मने सुख होय, सगुर ते नाम पाईए धर्म मिले प्रसोय, सगुर ते जो मोह फेरे ओए भ्रम दे ना टिकन, तरत असमान ना चलई विच विष्टा पए पचन, यो जग परम भुलाया मोहे ठगो ली पाए, जिन्ना सगुर फिटया ते नेड़ न फिटे माए, सगुर सेवन सो सोने होमे मैल गवाए, अवदरते से निर्मले चले सतगुर पाए, हर प्रदाता एक तू तू आपे बख्श मिलाए, जन नानक शरणागति ज्यों पावे तवे छिड़ाए, राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा कर हले, एक ओंकार सतगुर प्रसाद कर हले, मन परदेसिया क्यों मिल गए घरमाए, गुर पाग पूरे पाया गल मिलया प्यारा आए, मन कर हला सतगुर पुरख ते आए, हरहाओ मन कर हला विचारिया हर राम नाम ते आए, जिथे लेखा मंगिए हर आपे लय छिड़ाए।

लाख अडंबर बहुत विस्तार, ना बिना झूठे पासार, हर का नाम सोई जन ले, हर कृपा नानक जिस दे, गौड़ी महला पंजवा, आद मर जो अंत निभा है, सो सजम मेरा मन चाह है, हर की प्रीत सदा संग चाल है, दयाल पुरख पूर्ण प्रतपाल है, रहाओ बिन सतनाही शो

हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, रहाओ तज होमे गुर ज्ञान भजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसे सो संग न गयो, सागत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रब रहे हो, ओड़ मदे किने गुरमुख लहे हो।

मारे हो में मारे इन बद मेरो प्यारे सातन सुहागन सदा रंग राती साचे नाम प्यारे अपने गुर मिल रही है अमृत गई है दुबदा मार निवारे नानक कामन हर वर पाया सगले दुख विसारे कामन पिरों भुली जियो माया मोए प्यारे झूठी झूठ लगी जियो कूड़ मुठी कूड़ियारे कूड़ निवारे गुरमत सारे जुए जन्म नहारे गुर सब

ओं साध सदगुर नमस्कारं आद मद अंत निरंकारं आपे सुन आपे सुगयासन आपे सुनत आप ही जासन अपने आप आपे उपायो आपे बाप आप ही मायो आपे सूखम आपे अस्थूला लखी न जाई नानक लीला कर कृपा प्रभ दीन दयाला तेरे सं

साध रज रात्य तंदे काम बेअपह ताहु जो एक शाड अन कतह ना जाहू या के ही है दियो प्रवनाम नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक पेख अर ज्ञान ध्यान मरहड मिलो।

तर पातो ज्ञानी सोए जाके दृढ़ सोउ कैत सुनत कस जोग न हो ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाके उसन सीत संसर सबताक ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा थारी श्लोक आमन आए से तुम्हें बिन बूझे पल ठोर नानक गुरमुख सो बुझ जाके पाग मथोर पौड़ी या जुग में एक को आया जन्म तुम्होयो मोहनी माया गर्भ कुंट में उर तब करते सास सास सिमरत प्रव रहते उर्ज परे सो छोड़ छिडाना देवन हार मने बिसराना तारो कृपा जिसे कुसाई एत उत नानक इस बिसरो नाही श्लोक आवत हुक्म विनाश हुक्म आज्ञा पिन ना कोय आमन जाना ते मिट नानक जे मन सोय पौड़ी एओ जी बहुत गर्भ वासे मोह मगन मीड जोन फासे इन माया त्रैगुण बस कीने आपन मोह कटे खड़ दीने ए साजन काशिप कहो उपाया जा ते तरो बिखम ए माया कर कृपा सत्संग मिलाए नानक ताके नित न माए श्लोक किरत कमामन शोभ अशोभ इन्ने तिन प्रवे आप पास आपन हों करे नानक।

कुसुम रंग बिरसोर नांग ते सरणी परो बिरस जाए मैं मोर पौड़ी रे मान बेनखार जह रचो तह तह बंधन पाखे जेब कथु ना छूटी है साकत तेऊ कुमाए हो करते कर मरत।

एक नाम ले मने परो यैया जन्मन हारिये पुर पूरे की टेक नांग ते सुख पाया जाके हीरे एक श्लोक अंतर मन तन बस रहे ई पूत के मीत गुरपूरे उपदेसया नानक जपिए नीत पौड़ी अनदिन सिमरो तास को जो अंत सहाई होए ए बिखिया दिन चार छे छाड़ चलो सब कोए ताको मात पिता सुतिया गृह बंता का संग न लिया ऐसी संच जो बिनसत नाही बासे ती अपने कर जाही सा संग काल कीर्तन गाया नानक ते बौर न आया श्लोक

जम मरे गर्भ जोन दुख पाए, मोह मगन लपटत रहे आहो आवे जाए। टहे तो टहे अब टहे परे साजना सरनाए, दुके फाहे काटिया नानक लिए सुमाए। श्लोक जय साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत, अणा हो अणा तू अण छुटे निट न जाइयो दूत पौड़ी। नानारण ते सीजिए आत्म जीते कोए, होमे अनसो लार मरे तो सोभा दू होए। मणि मिटाए जीवत मरे गुर पूरे उपदेश, मनुआ जीते हर मिले ते सूरत तनवेश। अणा को जाने अपनो एक टेक आधार, रैन दिनस सिमरत रहे ओपरा पुरखे पार। रेण सगल या मन करे एऊ कर्म कमाए, हुक्मे बूझे सदा सुख नानक लिखिया पाए। श्लोक तान मत तान अर्पो तिसे प्रभु मिला वे मोह, नान प्रमपो काटिए चूके जमकी जो पौड़ी। तत्ता तसो प्रीत कर गुणित गोबिंद राय, हल पावे मन बाजते तप्त तुहारी जाए। त्रास मिटे जम पंथ की जास बसे मन नाओ, गद पावे मत होए परगास मैलनी पावे ठाओ। ताऊ संग न तन चले ग्रह जो बन्ने राज, संत संग सिमरत रहो है तुहारे काज। ताता कछु न होई है जो तापने वारे आप, प्रतपाले नानक हमें आपे माई बाप। श्लोक थाके बोविद काल ते तृप्तना तृष्णा लाथ, संच संच साकत मुए नानक माया ना साथ। पौड़ी थत्था थेर को नहीं काय पसारो पाव, अनक बंच बल चल करो माया एक पाव। थैली संचो श्रम करो था के परो गावार, मन के कामन आवई अंते अवसर बार। चित पावो गोविंद भजो संते की सगले हो, प्रीत करो स एक स्यो या साचा असने हो। कारण करन करामनो साबिद एक हाथ, जित जित लाभ हो तित तित लगे नानक जन अनाथ। श्लोक दस एक निहारिया सबका दे मनहार, सास सास सिमरत रह नानक दर्श आधार।

हर हर नाम श्रवण जे सुनिया गुरमुख जे कटरहे समाई नानक ते जन मिली वडाई श्लोक नानक नाम नाम जब जपया अंतर बार रंग गुर पूरे उपदेसया नरक नाहे सा संग पौड़ी नन्ना नरक परे ते नाही जाके मन तन नाम साही नाम निधान गुरमुख जो जपते बिख माया मय ना ओए खपते नन्ना कार न होता ताको ना मंत्र गुर दीनो जाको निध निधान हर अमृत पूरे ते बाजे नानक अनहर तूरे स्वरूप पतरा की गुर पार ब्रह्म।

स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सख अज्ञान भंजन गुरुदेव बंदप सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश गुरुदेव मंत नरोदरा गुरुदेव सांत सत बुद्ध मूर्त गुरुदेव पारस परस परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन।

दिन रात हर हर औखद साध कुमात हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एक नानक जन के बिरत विवेक हर का नाम जन को मुक्त जोत हर के नाम जन को तृप्त भूत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का परे न पंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत

सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मल जैसे मैल न लागे जल। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अवमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊज ते ऊंचा मन अपने गए सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पए नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब परमय ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समंदर सी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी परे उपकार माह। ब्रह्म ज्ञानी कै नागी तंदा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै हो सो फल ब्रह्म ज्ञानी सोबल फल। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै एक कै रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसे प्रसंग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत ब्रह्म ज्ञानी अंगबोध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता। ब्रह्म ज्ञानी कै होए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी करे प्रव्याप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का तथ्या न जाए अधाखेर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सिद्ध का करता ब्रह्म ज्ञानी ता जीवे नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता।

ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक, उर तारे जो अंतर नाम सर्वमय पेखे भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानको अपरस सगल निस्तार अष्टपदी, मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श, पर त्रे रूपना पेखे नेत्र साध की टहल संत संग हेत, करना सुने काहू की निंदा तब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद दिखिया पर हरे मन की बासना मन ते टरे, इंद्रियजित पंच दुख ते रहत नानक कोड मध्य को ऐसा अपरस, वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, विष्णु की माया ते होए पिन्न, कर्म करत होवे ने कर्म जिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बचे केवल भगत कीर्तन संग रचे, मन तन अंतर सिमरन गोपाल तब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरह नाम जपावे नानको वैष्णो परम गल पावे, भगवती भगवंत पवित का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग, मन ते बिरसे सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म, सा संग पापा मन खोवे इस भगवती की मत उत्तम होवे, भगवंत की टहल करे नित नीत मन तन अर्प विष्णु प्रीत, हर के चरण हृदय बसावे नान कैसा भगवती भगवंत कौ पावे, तो पंडित जो मन प्रबोध राम नाम आत्म मैं शुद्ध, राम नाम सार रस पीवे उस पंडित कह उपदेश जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे तो पंडित फिर जो न आवे, वेद पुराण तिमृत बूझे मूल सूख मैं जाने अस्तूल, चौवरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान क्यों वरना में जपे को नाम, जो जो जपे जिसकी गद होए सा संग पावे जन कोय, कर कृपा अंतर और तार पास प्रेत मुग्ध पाथर कौतार, सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जूत कते ना पाई गे धर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, जिसका नाम सत रामदास आत्म राम तुझ नदरी आया, दाद संतन पाए तिन पाया सदा निकट निट हर जान, तो दास दर गए परवान अपने दास को आप कृपा करे, ते दास को सब सोजी पर सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभु की आज्ञा आत्म खेतावे, जीवन मुक्त सौ कहावे तैसा हरक तैसा ओ सोग, सदा अनंत नहीं बेयोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बेख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान, जो वर्ता ऐसा ही जुत नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित का रखे तैसा तिन नाओ, आपे करन करामन जोग प्रभ पावे सोई पुन हो, पसर आप हो अंत तरंग लखे न जागे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अविनाश, सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पय निहाल, श्लोक उस्तुत करे अनेक जान अंत न पारावार, नानक रचना प्रभृति बहुविध अनक प्रकार अष्टपदी, कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पे तीर्थवासी कई कोट बन प्रमेय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान तार कई कोट सबका विचार, कई कोट नर्तन नाम त्याव है नानक करते का अंत न पावे, कई कोट पय अवमानी कई कोट अंत अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर कई कोट अपेग आत्मन कोर, कई कोट पर दर्व को हिरे कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रम माहे कई कोट प्रदेश परमाहे, जित जित लाभो ते तित लगना नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर प्यो पाए कई कोट पाथर बिरख निप जाए,
ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਕਈ ਕੋਟ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖੇਤਰ ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨ ਇੰਦਰ ਸਿਰ ਛਤਰ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਤਾਰ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰ ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਾਧਕ ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰ ਤਰ ਸਾਸਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਤ੍ਰਿਜੀਵ ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਨ ਤੀਵ ਕਈ ਕੋਟ ਜਖ ਕਿੰਨਰ ਪਸਾਚ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਤੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ ਸਭ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤਹੂ ਤੇ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲਿਪਤ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮੈ ਜੀਵੈ ਮਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਫਿਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠ ਤਖੀ ਖਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਕਾਲੇ ਥਕ ਪਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਧਨਵੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚਿੰਤ ਜੈ ਜੈ ਭਾਣਾ ਤੈ ਤੈ ਰਾਖੇ ਨਾਨਕ ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਕਹੇ ਹੱਥ ਕਈ ਕੋਟ ਪੈ ਬੈਰਾਗੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਿਲ ਨਿਵਲਾਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜਨ ਤੇ ਆਤਮ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖਨ ਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਪਿਆਸ ਦਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸ ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗੇ ਸਤਸੰਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਇਆ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰਖੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ।

प्रवते हुए प्रम है सुमत ताका अंत न जाने कोय आपे आप नानक प्रसोय कई कोड़ पार ब्रह्म के दास तिन होते या तुम प्रगास कई कोड़ तत् के बेते सदा निहारे एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीव अमर भय सदही जीव कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस तुख सह सुमावे अपने जन कौ सा सा सुमारे नान कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर ना ही कोय नानक बलिहारण जल तल मही अल सोय अष्टपदी करण करावन करने जोग जो तु भावे सोई होग खिन में था था पनहार अंत नहीं किस पारा वार हुक्म तार अतार रखावे हुक्म उपजे हुक्म सुमावे हुक्म ऊंच नीच व्यवहार हुक्म अनक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वड्याई नानक सब में रहा सुमाई प्रभ भावे मानु गद पावे प्रभ भावे ता पात्र त्रावे प्रभ भावे बिन सास्ते रख प्रभ भावे ता हर गुण पख प्रभ भावे ता पत उधार आप करे अपन विचार दुआ सिरिया का आप स्वामी खेले बिगसे अंतर जामी जो भावे सो कार करावे नानक दृष्टि अवर न आवे कहो मान गुते क्या होए आवे जो तु भावे सोई करावे इसके हाथ होए ता सब कुछ ले जो तु भावे सोई करे अनजानत दिखिया में रत जे जानत अपने आप बच परमे पूला दर्द तावे निवख मैं चार कुंट फिरे आवे कर कृपा जे अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले खिन में नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका दिश कशु न आवे तिस तत्काल दैज प्रटावे जाको अपनी करे बगसीस ताका लेखा ना गने जगदीश जियो पिण सत की रास घड़ घड़ पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनत आप बनाई नानक जीवे देख बढ़ाई इसका बाल नाई इस हाथ करण करामन।

विचार कभू ऊब कस पयाल कभू बेता ब्रह्म विचार नानक आ मिला मनहार कभू नित करे बोपात कभू सोए रहे।

कृत में आवे, कबहू पला पला कहावे, यूं प्रवरा के तिवही रहे, गुर प्रसाद नांग सच कहे, कबहू होए पंडित करे बखियान, कबहू मोन तारी लावे ध्यान, कबहू तड़ती स्नान, कबहू सिद्ध साधक हो ज्ञान, कबहू कीट हस्पतंग हो जिया, अनक जोन परमे परमिया, नाना रूप जो स्वांगी दिखा।

तेन पुरुष का उत्तम कर्मान योगज करे सो प्रभु के रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुपय होवे सो होए करणे गार पछाणे सोए प्रभु का किया जन्म मीठ लगाना जैसा सा तैसा त्रिटाना जेते उजे तुमाए सुमाए ओ सुख निदान उनहू बने आए आस को अवधि नो मान नानक प्रभ जन एको जान। श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जाननहार जाके सिमरन उदरी है नानक तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गंढनहार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन मागे तिस ते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा।

अनद रूप मंगल सुजाक सर्व शोक सुनहे करताक राजमय राज जोग मैं जोगी तप मैं तपीसर गृहस्त मैं भोगी त्याए त्याय भगते सुख पाया नानक पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्यावे से त्यो गुण मैं जा को फरमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच इसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेख करे एक रंग नाना विद तीनो विस्तार प्रभ अविनाशी एक अंकार नाना चलत करे खिन माहे

रंग सेवक को प्रपालनहार सेवक की रखे निरंकार सो सेवक जे दया प्रवतार नानक सो सेवक सास सास सुमार अपने जन का पर्दा ढक अपने सेवक की सर पर रख अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत रख ताकि गतमित कोई ना लख प्रभ के सेवक को ना पहुंचे प्रभ के सेवक ऊचते ऊचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दहत से प्रगटाया निकी कीरी मैं कल रख पसम करे लस्कर कोट लख जिसका साधन काटते आप ताको राखत दे कर हाथ मानस जतन कर्तव पात जिसके कर्तव्य व्यर्थ जात मारे ना रखे अवर न कोय सर्ब जिया का रखा सोय काहे सोच कर हे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी बारंबार बार प्रभ जपिए ई अमृत यो मन तन त्रपिए नामृत जिन गुरमुख पाया तिस किश अवर नाही दृष्टाया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन त्रिवतान ने मर्तन नामे नाम सुमा।

निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला तार जिन सगली मोही अपने चित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोय सर्व निरंतर एको सोय ओत पोत रव्या रूप रंग पय प्रगास साध कै संग रच रचना अपनी कलतारी अनकबार नानक बलिहारी श्लोक साधना चले बिन भजन बिखिया सगली शार हर हर नाम कुमावना नानक यो तनसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव समीत बसारो चरण कमल हृदमय उरतारो करण कर्ण सो प्रसमरथ दृढ़ कर गहो नाम घर वथ यो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रखो मन माहे सर्व रोग नारक मिट जाहे ये तन को चार कुण टुड़तावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सो कोवनत बाछे मीत सो सो साधु संग परीत जे सोभा को करे पली करनी सा सोभा पज हर की सरनी अनको पावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवख दलाए सर बनधान मै हर नाम निधान जप नानक दरगह परवान मन पर बुद्ध हर कै नाए दस ताव त्या बैठाए ताको बिगन ना लागे कोय जा कर दे बसे घर सोए कल ताती ठंडा घर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ भव बिन से पूर्ण होए आस भगत पाया तुम परगास जित कर जाए बसे अविनाशी

सर्वभूत आपवर्तार सर्वनयन अपेखनगार सगल समगरी जा कातना आपन जस आप की सुना आमन जान के खेल बनाया आज्ञाकारी की नीम आया सबके मत अलिप्त रहे जो कुछ कहना सुवा पे कहे आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता ले सुमाए इसते हुए सो नाही बुरा और कहो किने कुछ कर आप भला करतूत अतली की आपे जाने अपने जी की आप सब तारी सब साच ओत पोत अपन संग रात ताकि गतमत कही न जाए दूसर हो इतना सोजी पाए त्रिका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नान के ओ जान जो जाने ते सदा सुख हो आप मिलाए लय प्रसोय ओ तनवंत कुरवंत पदवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत तन तन तन जने आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आमन का ए स्वभाव जन के संग चित आवे नाव आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक ते जन को सदा नमस्कार श्लोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जा का नाव नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निट कर पेख सास सास सिमर हो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्यागो त्रंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो सास संग अग्न सागर तर हो हर तन के परले ओ पंडार नानक गुरपूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग पर परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल ए रतन संत कुमावत होते उधार आप तरह लोक के निस्तार सबल जीव सबलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वज सुन सुन अंध करे प्रभ गज प्रगटे गोपाल महात कहे माथे नानक उदरे तिन कह साथे शरण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभ आ मिलाए मिट गए बैर पए सब रेन अमृत नाम सासंग लैन तो प्रसन्न पए गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की सेव आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रतारी नानक निगी खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सोहो तन दान सर्विशाता की पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रण सबल होए सब ते ऊज पाए अस्थान बौर न होवे आमन जान हरतन खाड़ चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम सांत रिद्ध नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व ते सिद्ध विद्या तप जो प्रत्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सबके मध्य सगर ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता ए फल हे जन के मुख पने गुरु नानक नाम भजन मन सुने एहो निदान जपे मन कोय सब जुग में ताकि गद होय गुण गोविंद नाम तुनु वाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत के मन बसराम कोड अपराध सासंग मिटे संत के पाते जमते छुटे जाके मस्त कर्म प्रापाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसे सुने लाए प्रीत तेजन आवे हर प्रचीत जन्म मरणता का दुख निवारे दुलभ देह तत्काल उधारे निर्मल शोभा अमृतता की बानी एक नाम मन माये सुमानी दुख रोग बिनसे पै परम साध नाम निर्मलता के कर्म सब ते ऊचता की शोभा बनी नानक ए गुण नाम सुखमनी स्थिति गौड़ी महला पंजवा श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद जलथल मही अल पूरिया स्वामी सृजनहार
ਅਨਕ ਪਾਂਧ ਹੋਏ ਪਸਿਆ। ਨਾਨਕ ਏਕੰਕਾਰ ਪੌੜੀ, ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕਰੋ ਬੰਦਨਾ ਤਿਆਏ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨ ਪਰੋ ਹਰ ਰਾਏ। ਤਾਕੀ ਅਸ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਜਾਤੇ ਸਭ ਕਛ ਹੋਏ। ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦੈਸ ਪ੍ਰਮਿਓ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਸੁਣੇ ਬਹੁਧ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਪਤ ਉਧਾਰਨ ਪਏ ਹਰਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਦਾਤਾ ਪੂਤਾ ਦੇਨਹਾਰ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋਈ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਗੋਬਿੰਦ ਜਦ ਗਾਈ

तपे तरम हारिया भाई ए तपा ना होवी बगला है भय साधना विचारिया सतपुरख की तपा निंदा करे संसारे की उस्तुति।

लोभ मोह संग साधा पखे पर कृपा प्रवे अपनी हर आप परखे नानक चलतना जापनी ओ सके ना लखे। श्लोक महला पंजवां नानक सोई दिन सो सुहावड़ा जित प्रवे आवे चित जित देन विसरे पार ब्रह्म हिट पलेरी रुत महला पंजवां नानक मित्राई ते स्यों सब केश

कार बंदो सज धर्म का गढ़ थम अहल ओट लहो नारायण दीन दुनिया चल नानक पकड़े चरण हर तेस दर गए मल सलोक महला पंजवा जाजक मंगे दान दे प्यारिया देवन हार दातार मैं नित चितारिया निखुट न जाई मूल अतुल पंडारिया नानक शब्द अपार तेन सब किश सारिया महला पंजवा सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिमरत एक पौड़ी उत अमृत वंडी है सुखिया हर करने जमके पंथ न पाई है फिर ना ही मरने जिसनु आया प्रेम रस तिसे ही जरने बाणी उचले साध जान अम्यो चले चरने एक दर्शन नानक जीवया मन अंदर तरने सलोक महला पंजवा सतगुर पूरे सेवे दुखा का होए नास नानक नाम आराध्य कार्ज आवे रास महला पंजवा जे सिमरत संकट छुट है अंध मंगल विश्राम नानक जपिए सदा हर निमख ना विसरो नाम पौड़ी तिनकी शोभा क्या गणी जिन्नी हर हर लद्दा साधा सरणी जो पवे सो छुट्टे बद्दा गुण गावे अवनासी है जोन गर्भ ना दद्दा गुर पेटिया पार ब्रह्म हर पाड़ बुझ समद्दा

एक पय देखो सब नारी, क्या जानो सह कौन प्यारी। कहो कबीर जाके मस्तक पाग, सब पर हरता कहो मिले सुहाग। गौड़ी कबीर जी जाके हरसा ठाकुर पाई, मुक्त अनंत पुकारण जाई। अब कहो राम भरोसा तोरा, तब काहू का कमन ने होरा।

जी वे जो दिसै अंबर तारे किन वे चीते चीतनहारे कौरे पंडित अंबर कास्यों लागा बूझे बूझन हास पागा रहाओ सूरज चंद करे उजियारा सामे पसरिया ब्रह्म पसारा कहो कबीर जानेगा सोए हृदय राम मुख रामे होए गौड़ी कबीर जी बेद की पुत्री सिमरत पाई सांकल जेवरी लह गए आई आपन नगर आप ते बंधया मोह के फाक तार सर संध्या रखाओ कटी न कटे टूट न जाई सास आपन हुए जग कौ खाई हम देखत इन सब जग लूटिया कौ कबीर मैं राम कै छूटिया।

कहे तो कबीर पले असवारा, बेर कतेबते रह निरारा, गौड़ी कबीर जी। जे मुख पांचो अमृत खाए, ते मुख देखत लूप टलाए, एक दुख राम राय काटो मेरा, अग्न दह अर गर्भ बसेरा, रहाओ काया विभूति बहुविध पाती।

ग्वारेरी अष्टपदी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख मांगत दुख आगे आवे सो सुखमो न मांगया पावे बिखिया अजो सुरत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाओ इस सुखते से ब्रह्म डराना सो सुखमो साज कर जाना संकादक नारद मुन सेखा तिन पी तर मैं मन नहीं पेखा इस मन को कोई खुद जो पाई ता छूटे मन कहां सुमाई गुर प्रसादी जय देव नामा भगत के प्रेम इन ही है जाना इस मन को नहीं आवन जाना जिसका परम गया तिन साज पछाना इस मन को रूप न रेख्या काई हुक्मे होया हुक्म बूझ सुमाई इस मन का कोई जाने पेओ ए मनलीन पय सुख देओ जियो एक अर सगल शरीरा इस मन को रव रहे कबीरा गौड़ी ग्वारेरी अहे निस एक नाम जो जागे केतक सिद्ध पय लिव लागे रहाओ साधक सिद्ध सगल मुनहारे एक नाम कल्प तरतारे जो हर हरे सो होए न आना कहे कबीर राम नाम पछाना गौड़ी पी सोठ पी रे जी न लज लाज तोय नाही हर ताज कद काहू के जाही रहाओ जाको ठाकुर ऊंचा होई सो जान पर कर जातन सोही सो साहेब रहया पर पूर सदा संग नाही हर दूर।

मन बौरार, माया यो व्यवहार, जैसा रंग सुंभ का मन बौरार, त्यो पसरो पासार। नावन को तीर्थ कने मन बौरार, पूजन को बो देव कहो कबीर, छूटन नहीं मन बौरार, टूटन घर की सेव गौड़ी, अग्न न दह पवन नहीं मगन, तस्कर नेर न आवे, राम न तन कर संचौनी, सो तन कत ही न जावे, हमारा तन माधो गोविंद तरणी तार, ए सार तन कही है, जो सो प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लई है, हरहाओ इस तन कारण से संकादक, खोज पय उदासी, मन मुकंद जे बा नारायण, परे न जम की फासी, निज तन ज्ञान पद गुर दीनी, तास सुमत मन लागा, जलत अम्ब थम मन तावत, परम बंधन पो पग, कहे कबीर मदन के माते, हृदय देख बिचारी, तुम कर लाख कोट अस्वस्ती, हम कर एक मुरारी, गौड़ी ज्यो कब के कर्म हिट चनन की, लुब्ध न त्याग दयो, जो जो कर्म किए लालच सियो, ते फिर गरे परे हो, भगत बेन बिरथे जन्म गयो, साध संगत भगवान भजन बेन, कई न सच रहो रहाओ, ज्यो उद्यान कुसुम प्रफुल्लत, किने न कराओ लयो, तैसे प्रमत अनेक जोन में, फिर कार हयो, या तान जोबन आर सुध दारा, पेखन को जो दयो, तिन ही माहे अर्घ जो उर्जे, इंद्री प्रेर लयो, औध अनल तन तिन को मंदर, चौध ठाट ठयो, कहे कबीर है सागर तरण को, मैं सदगुर ओट लयो, गौड़ी पानी मैला माटी गोरी, किस माटी की पुत्री जोरी, मैं नाही कस आए न मोरा, तन तन सरस गोविंद तोरा रगाओ, किस माटी में पवन सुमाया, झूठा प्रपंच जोर चलाया, किन्हू लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी, कहे कबीर एक नीव सारी, खिन में बिरस जाए अंकारी, गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे, त्रू प्रहलाद जप्यो हर जैसे, दीन दयाल परोसे तेरे, सब परवार चिढ़ाया बेड़े, रहाओ जत पावे ता हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लंघावे, गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध सुमानी, चुग गई फिर आमन जानी, कहो कबीर भज सारंग पानी, उरवार पार सब एको दानी, गौड़ी नावी जोन छाड़, जो जग में आयो, लागत पवन खसुम बिसरायो, जियरा हर के गुना गाओ रगाओ, गर्भ जो में उर तब करता, तो जठर अग्न में रहता, लगत उरासी जोन प्रमे आयो, अब के शुटके ठौर न ठायो, कहो कबीर पर सार्ग पानी, आर्त जिसे जात न जानी, गौड़ी पूर्वी सुर्गवास न बाची है, डरके नरक निवास, होना है सो होई है, मने न की जे आस, रमैया गुण गाइये, जाते पाइये पर मन धान रखाओ, क्या जप क्या तव संजमो, क्या व्रत क्या स्नान, जब लग जूत न जानिए, पाओ भगत भगवान, संपै देख न हरखिए, विपत देख न रोए, जो संपै त्यो विपत है, बिदने रचिया सो होए, कहे कबीर अब जानिया, संतन हृदय मजार, सेवक सो सेवा पले, जे कड़ बसे मुरार, गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं, खिंच ले जिन पार, बिरख बसेरो पंख को, तैसो यो संसार, राम रस पिया रे, जे रस बिसर गए रस और रखाओ, और मुए क्या रोई है, जो आपा थे न रखाए, जो उपजे सो बिनस है, तो का रोवे बलाए, जय की उपजी तैरची, पीवत मर्दन लाग, तय कबीर किद चेतया, आराम सिमर बैराग, राग गौड़ी पंथ निहारे कामनी, लोचन परी ले उसासा, और ना पीजे पग ना खिसे, हर दर्शन की आसा, उड़ो ना कागा कारे, बेग मलीजे अपने राम प्यारे रहो, कहे कबीर जीवन पद कारण, हर की पद करीजे,

बैकुंठ जाइए, ना पदार्थ मने बसाइए। हृदय सुजो निंदा होए, हमरे कपड़े निंदक तोए। निंदा करे सो हमारा मीत, निंदक माए हमारा चीत। निंदक सोजो निंदा हो रे, हमरा जीवन निंदक लोर। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करे उधार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरभव, तरन तारन राम राया हरहाओ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक पय है, एक के देखत मन पतिया ही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल ना खटाई। कहे कबीर बुद्ध हर ली मेरी, बुद्ध बदली सिद्ध पाई गौड़ी। खट नेम कर कोठड़ी बंदी, बस अनूप बीच पाई। कुंजी कुल्प प्राण कर राखे, करते बार न लाई। अब मान जागत हो रे पाई, गाफल हो के जन्म गवायो। चोर मुसे कर जाई रहाओ, पंच पैरुआ दर में रहते। इनका नहीं पतियारा, चेत सुचेत चेत होए रहो। तौले प्रगास उजारा, नाव कर देख जो कामन पूली। बस अनूप न पाई, कैत कबीर नवे कर मुसे। दसवें तत् सुमाई गौड़ी, माई मुहे अवर ना जान्यो आना ना। थे सुनकाद जस गुण गावे, तस बसे मोरे प्राणा ना। रहाओ हृदय प्रगास ज्ञान गुरगमत, गगन मंडल में ध्याना ना। बिखे ओक पय बंधन पागे, मन निज कर सुख जाना ना। एक सुमतरत जान मान प्राप्त, दूसर मने ना आना ना। चंद्र बाज पय मन बासन, त्या कट्यो अब माना ना। जो जन गाये त्याय ठाकुर, तास प्रभु है थाना ना। ते बड़पा बस्यो मन जाके, कर्म प्रधान मथाना ना। काड़ सकत शिव सह प्रगास्यो, एक एक सुमाना ना। कहे कबीर गुर पेट महासुख, परम तरह मन माना ना। राग गौड़ी पूर्वी

आदि करे भगत आरंभ, काया मंदर मनसा थंभ, अहिर अखंड सो रही जाए, तो अनहद बेण सहज मैं बाय, सोमवार सज अमृत चरे, त्यागत बेग सगल बिखरे।

परगास, हृदय कामल मैं हर का वास। गुर मिल दो एक सम तरे, उर्द पंकले सूदा करे। बृहस्पति दिखिया देव बिखाए, तीन देव एक संगलाए। तीन नदी ते त्रिगुटी नागे, अंश कसमल तो वे नागे। सुकृत सहारे तो ए व्रत चढ़े, अंत ने आप आप स्यो लड़े। सुरखी पंचो राखे सब, तो दूजी दृष्टना पैसे कबे। थावर थिर कर राखे सोए, जोत दी वट्टी कड़ में जोए। बाहर पीतर पया परगास, तब हुआ सगल कर्म का नास। जावला कट में दूजी आन, तौलो महल ना लाभे जान। रमत राम स्यों लागो रंग, कहे कबीर ता निर्मल अंग। राग गौड़ी चेती बाणी, नाम दियो जियो की। एक ओंकार सदगुर प्रसाद, देवा पान तारी ले। राम कहत जन कसना तरे, रघाओ तारी ले। गनका बिन रूप कुबजा, ब्याल अजामन तारी ले। चरण बदक जन तेऊ मुक्त पय, औ बल बल जिन राम कहे। दासी सो जन बिद्र सुदामा, उग्रसैन को राज दिए। जापहीन तपहीन कोलहीन क्रमहीन, नामे के स्वामी तेऊ तरे। राग गौड़ी रविदास।

राजा न्याय करे हथ होए, कहे खुदाए ना माने कोय, मानस मूर्त नानक नाम, करणी कुत्ता दर फुरमान, गुर प्रसाद जाने मेहमान, ता किस दर गए पावे मान। आसा महला पहला, जेता शब्द सुरत तुन तेती, जेता रूप काया तेरी, तू आपे रसना आपे बसना, अवर ना दूजा कहो माई, साहिब मेरा एक।

नदर करे जो कुछ करना सो कराया अवरण करना जाई। जैसा वर्त तैसो कही है सब तेरी वड्याई। काल कलवाली माया मद मीठा मन मतवाला तीवतर है। आपे रूप करे बो भांति नानक बपड़ा एव कह। आसा महला पहला वाजा मत पखाव जपाओ। होए आनंद सदा मन चाओ एह भगत एहो तपताओ। ए तरंग नाचो रख रख पाओ पूरे ताल जाने साला। और नचना खुशियां मन माह हरहाओ। संतोख वजे दोए नाल पैरी वाजा सदा निहाल। राग नादनी दूजा पाओ ए तरंग नाचो रख रख पाओ। पाओ फेरी होवे मन चीत बहिंदिया उठदिया नीता नीत। लेटन लेट जाने तन स्वाह ए तरंग नाचो रख रख पाओ।

बंद खीन खराब होवे नित कंद खान जीवन की बहुती आस लेख तेरे साध गिरास एहस अंधले दीपक दे भौजल डूबत चिंत करे।

जाए, नदर करे इतना सदगुरु मिले, परमत नानक पहुंच जलता रहे। आसा महला पहला पंच बदे, दुध बिन तेन पंख बिन पंखी, जल बिन उदबुज कामना ही, क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नाही, की विसर दुख बहुता लागे, दुख लागे तू विसर नाही, हरहाओ अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पवन ना वाजे, चरणी चले पजूता आगे, विण सेवा फल लागे, अखर देख बाग पे चोखी, सिंचित भाव करेगी, सब ना फल लागे नाम एको, बिन कर्मा कैसे लेगी, जेते जी तेते सब तेरे, विण सेवा फल किसे नाही, दुख सुख पाना तेरा होवे, विण नावे जियो रहे नाही, मत विच मरण जीवन होर कैसा, जा जीवा ता जूत नाही, कहे नानक जीवाले जिया, जय पावे है राख तुही, आसा महला पहला, काया ब्रह्मा मन है तोती, ज्ञान जिनेऊ ध्यान कुसपाती, हर नामा जा जा चौनाओ, गुर प्रसादी ब्रह्म सुमाओ, पांडे ऐसा ब्रह्म विचार, नामे सोच नामो पढ़ो, नामे चज आचार रखाओ, बार जनेऊ जिचर जोत है नाल, धोती टिक्का नाम सुमाल, ऐथे उथे निभगी नाल, विण नावे होर कर्म ना पाल, पूजा प्रेम माया परजाल, एको वेखो अवर ना पाल, तीन तत् गगन दा द्वार, हर मुख पाड़ पड़े विचार, भोजन पाओ परम पाओ भागे, पारू रश बचोर न लागे, तिलक ललाट जाने प्रवेक, बूझे ब्रह्म अंतर बवेक, आचारी नहीं जीत्या जाए, पाठ पड़े नहीं कीमत पाए, अष्टदशी चौपेद न पाया, नानक सदगुर ब्रह्म दिखाया, आसा महला पहला, सेवक दास भगत जन सोई, ठाकुर का दास गुरमुख होई, जिन सिर साजी तिन पुन गोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई, साथ

का सोई, जे सकता सकते को मारे ता मन रोस न होई। हरहाओ सकता सियो मारे पै वगे, खसमे सा पुरसाई। रतन विगाड़ भगोए कुत्ती, मोया सार न काई। आपे जोड़ विछोड़े आपे, वेख तेरी वड्याई। जे को नाओ तराए वड्डा, साध करे मन पाणे। खसमे नदरी कीड़ा आवे, जेते चुगे दाने। मर मर जीवे ता किश पाए, नानक नाम खाने। अराग आसा कर दूजा, महला तीजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर दर्शन पावे वडपाग। गुर के शब्द सच्चे बैराग, खड़ दर्शन वरते वरतार। गुर का दर्शन अगमे पार, गुर के दर्शन मुक्त गद होए। साचा आप वसे मन सोए, रहाओ गुर दर्शन उदरे संसारा। जे को लाए पाओ प्यारा, पाओ प्यारा लाए विरला कोए। गुर के दर्शन सदा सुख होए, गुर के दर्शन मुख द्वार। सदगुर सेवे परवार सधार, निगुरे कौ गद काई नाही। अवगुण मुठे चोटा खाही, गुर के शब्द सुख सांत शरीर। गुरमुख ताको लगे ना पीर, जम काल ते नेड़ न आवे। नानक गुरमुख साज सुमावे, आसा महला तीजा। शब्द मुआ विचू आप गवाए, सदगुर सेवे तिल ना तुमाए। निरपो दाता सदा मन होए, सती बाणी पाए पाग कोए। गुण संग्रह विचू अवगुण जागे, पूरे गुर के शब्द समागे। हरहाओ गुणा का गाहक होवे, सो गुण जाने। अमृत शब्द नाम खाने, साची बाणी सुचा होए। गुण ते नाम प्राप्त होए, गुण अमोलक पाए ना जागे। मन निर्मल साचे शब्द समागे, सेवड़ भागी जिन नाम ते आया। सदा गुण दाता मन वसाया, जो गुण संग्रह तिन बलिहारे जाओ। दर साचे साचे गुण गाओ, आपे देवे सहे सुपाए। नानक कीमत कहन न जाए, आसा महला तीजा। सतगुर विच वड्डी वड्याई, किरी मुछुने मेल मिलाई। आपे मेले मेल मिलाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर की कीमत किन बिद होए, हर अपरंपर अगम अगोचर। गुर के शब्द मिले जन कोए, रहाओ गुरमुख कीमत जाने कोए। विरले कर्म प्राप्त होए, ऊची बाणी ऊचा होए। गुरमुख शब्द वखाणे कोए, विण नावे दुख दर्द शरीर। सागुर पेटे ता उतरे पीर, बिन गुर पेटे दुख कमाए। मनमुख बहुती मिले सजाए, हर का नाम मीठा अतरस होए। पीवत रह पियाए सोए, गुर कृपा ते हर रस पाए। नानक नाम रते गद पाए, आसा महला तीजा। मेरा प्रसाचा गहर गंभीर, सेवत ही सुसांत शरीर। शब्द तरे जन सह सुपाए, तिन के हम सद लागे पाए। जो मन राते हर रंग लाए, तिन का जन्म मरण दुख लाता। ते हर दरगे मिले सुपाए, रहाओ शब्द चाखे साचा साध पाए। हर का नाम मन वसाए, हर पर सदा रहा भरपूर। आपे नेड़े आपे दूर, आखने आखे बके सब कोए। आपे भविष्य मिलाए सोए, कहने कथन न पाया जाए। गुर प्रसाद वसे मन आए, गुरमुख विचू आप गवाए। हर रंग राते मोह चुकाए, अत निर्मल गुर शब्द विचार। नानक नाम सुवारण हार, आसा महला तीजा। दूजे पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरथा जन्म गवाया। सतगुर सेवे सोझी होए, दूजे पाए न लागे कोए। मूल लागे सृजन प्रमाण, अन दिन राम नाम जग हिरदे। गुर शब्दी घर एको जान, रखाओ डाली लागे ने फल जाए। अंधी कमी अंध सजाए, मनमुख अंधा ठौर न पाए। दिष्टा का कीड़ा दिष्टा माए पचाए, गुर की सेवा सदा सु पाए। संत संगत मेल हर गुण गाए, नामे नाम करे विचार। आप तरे कुल उदरन हार, गुर की बाणी नाम जाए। नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत सर हर जल नाया।
ਦੁਰਮਤ ਮਾਇਲ ਸਭ ਦੁਰਤ ਗਵਾਇਆ, ਆਸਾ ਮੁਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਨਮੁਖ ਮਰੇ ਮਰ ਮਨਨ ਵਿਗਾੜੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਆਤਮ ਸੰਘਾਰੇ, ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰ ਕਰ ਵਿਗੂਤਾ, ਆਤਮ ਨਾ ਚੀਨੈ ਪਰਮੇ ਵਿਚ ਸੂਤਾ, ਮਰ ਮੋਇਆ ਸਭ ਦੇ ਮਰ ਜਾਏ, ਉਸ ਨਿੰਦਾ ਗੁਰ ਸਮਝਾਣ ਆਈ, ਇਹ ਯੁਗ ਮੈਂ ਲਹਾ ਹਰ ਜਪ ਲੈ ਜਾਏ, ਰਹਾਓ ਨਾ ਵਿਹੂਣ ਗਰਬ ਗਲ ਜਾਏ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਦੂਜੇ ਲੋਭਾਏ, ਨਾ ਵਿਹੂਣੀ ਦੁਖ ਜਲੇ ਸਬਾਈ, ਸੋ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ, ਮਨ ਚੰਚਲ ਬਹੁ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ, ਇਥੋਂ ਛੁਟਕਿਆ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਏ, ਗਰਭ ਜੋਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾ ਵਾਸ, ਇਤ ਕਰ ਮਨ ਮੁਖ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਦਾ ਬਲ ਜਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨਿਰਕਰ ਵਾਸਾ, ਨਾਨਕ ਹੋਮੇ ਮਾਰੇ ਸਦਾ ਉਦਾਸਾ, ਆਸਾ ਮੁਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਲਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਗੁਵਾਈ, ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ, ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਸਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਸੁਖਾਈ, ਸੋ ਲਾਲਾ ਜੀਵਤ ਮਰੇ, ਸੋ ਹਰਖ ਦੋਇ ਸਮਕਰ ਜਾਣੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ

सोई जन जान हर गुण सदगी आख वखाण जिन घर सेवया तिन सुब पाया सहजेगी घर नाम सुमाया तू आपे करता तेरा किया सब होय तुद बिन दूजा अवर न कोय तू कर कर वेख जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होय।

आग हमारो अब हुन सोयो, कंत मिलियो मेरो सब दुख जोयो, आंगन मेरे शोभा चंद, निसबसर प्रे संग आनंद, बस्तर हमारे रंग चलूल, सगल अपर्ण शोभा कंठ फूल, प्रे पेखी दिट पाए सगल निधान, दुट दूध की चूकी कान, सद खुशियां सदा रंग माने,

माया मूठा चेत नाही, परमे पूला बोती राही, बाहर पेह करे कनेरे, अंतर बिखय उतरी केरे, आवर उपदेश आप ना बूझे, ऐसा ब्राह्मण कही ना सीजे।

बिगड़ रूप मन में अवमान तो निस्रूप सुजान बचकन आत दरब मुहिफाकी तू रहाओ असूची तेरी पाकसार तर स्नान पूजा तिलक लाल गली गर्भ मुख गोवे ज्ञान साबित खोई लोभ स्वान कापर पैरे पुगे पोग आचार करे सोभा में लोग चुआ चंदन सुगंध विस्तार संगी खोटा क्रोध चंडा अवर जोन

रूप सब सुख बने सुहागन अत सुंदर बचखन तू रहाओ दूजा आसा मोहल्ला पंजवा एक तुके दो जीवत दीस ते सर पर मरना मुआ होए तिस निचल रहना जीवत मोए मोए से जीवे हर हर नाम अब खुद मुख पाया गुर सबदी रस अमृत पीवे हरहाओ काची मटकी।

रब रहे आप सबके साथ, पूरा गोर पूरी बंत बनाई, नानक भगत मिली वड्याई। आसा महला पंजवा, गुर के शब्द बनावो इहो मन, गुर कर दर्शन संचो हर तन,

मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत पद केवल नाम सरंग जामला पवजल तरन कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै हरहाओ जब तब संजम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जान्या हर राया कहो नानक हम नीज करमा सरण परे की राखो शर्मा आसा महला पंजवा कुछ बिन अवर नही मैं दूजा तू मेरे मन माही तू साजन संगी प्रा मेरा काहे जी डराही तुमरी ओट तुम्हारी आसा बैठत उठत सोवत जागत विसर नही तू सास गिरासा रहाओ राख राख शरण प्रव्यापनी अग्न सागर विकराला नानक के सुखदाते सदगुर हम तुमरे बाल गोपाला आसा महला पंजवा हर जन लीने प्रभु छाए प्रीतम स्यों मेरो मन।

साध संग गुण गाए अतोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा मोहल्ला पंजवा, काम क्रोध माया मद मस्तर, ए खेलत सब जुए हारे। सत संतोख दया धर्म सच, ए अपने गृह पीतर वारे। जन्म मरण चूके सब पारे, मिलत संग पयो मन निर्मल। गुर पूरे लेखिन में तारे, रहाओ सबकी रेन होए रे मनुआ। सगले दिसे मीत प्यारे, सब मध्य रव्या मेरा ठाकुर। दान देत सब जी सम्हारे, एको एक आप एक एक, एक एक सगला पासारे। जप जप होए सगल साध जन, एक नाम तै बहुत उधारे। गैर गंभीर बेंत गुसाई, अंत नहीं किश पारा वारे। तुमरी कृपा ते गुण गावे, नानक त्याए तै प्रभु को नमस्कारे। आसा महला पंजवा, तू बेअंत अवगत अगोचर। यो सब तेरा आकार, क्या हम जंत करे चतराई। जा सब तुझे मझार, मेरे सतगुर अपने।

नहीं दर गए टोई, जम पुर जाए पचावे, निंदक ऐ ला जन्म गवाया, पहुंच न सके काहू बाते, आगे ठौर न पाया, रहाओ किरत पया निंदक बपरे का, क्या ओ करे बिचारा, तहां बेगूता ते कोई न रखे, ओ किस पे करे बुकारा, निंद की गत तथू नागी, खसमे ए वे पाना, जो जो निंद करे संतन की, त्यों संतन सुख माना, संतन टेक तुम्हारी स्वामी, तू संतन का सगाई, कहो नानक संत खरा रखे, निंदक दिगे रोढ़ाई, आसा महल्ला पंजवा, बाहर तोय अंतर मलमायला, दोए ठौर अपने खोए, ईहा काम क्रोध मुए व्यापया, आगे मुस मुसरोए, गोंद पजन की मत है होरा, वर्मी मारी साप ना मरी, नाम न सोई डोरा, रहाओ माया की किरत छोड़ गवाई, भक्ति सार ना जाने, वेद शास्त्र कहो तरकन लागा, तत् योग ना पछाने, उगर गया जैसे खोटा टबुआ, नदर सरापा आया, अंतरजामी सब के जाने, उसते कांश पाया, कूड़ कपट बांच ने मुनियादा, बिनस गया तद काले, सत सत सत नानक कहया, अपने हृदय देख समाले, आसा महला पंजवा, उदम करत होवे मन निर्मल, नाचे आप निवारे, पंच जनाले वस गद रख, मन में एक अंकारे, तेरा जान नृत करे गुण गावे, रबाब पखावज ताल कुंगुरु, अनगद शब्द वजावे रखाओ, प्रथमे मन पर बोधे अपना, पाछे अवर री जावे, राम नाम जप हृदय जप, मुक्ते सगल सुनावे, तर संग साधु चरण पखारे, संत तूर तन लावे, मन तन अर्प तरे गुर आगे, सत पदार्थ पावे, जो जो सुने पेखे लै सरदा, ताका जन्म मरण दुख पागे, ऐसी निरत नरक निवारे, नानक गुरमुख जागे, आसा महला पंजवा, अदम चंडाली पई ब्रह्मणी, सूदी ते सृष्टाई रे, पाताली आकाशी सखनी, लैबर बूजी खाई रे, घर की बलाई अबर सखाई, मूसा देख डराई रे, आज के वसगुर कीनो केहर, कुकर तने लगाई रे, रहाओ बाज थूनिया छपरा थामिया, नी

गुरपूरे के चरण गए, कोड़ जन्म के पाप लहे, रतन जन्म त्यो सबल पया, कहो नानक प्रभु करी माया, आसा महला पंजवा। सतगुर अपना साध सदा सुमारे, गुर के चरण के संग चारे, जाग रे मन जागन हारे, बिन अवर न आवस कामा, झूठा मोह मिथ्या पसारे, रहाओ गुर की बाणी सो रंग लाए, गुर किरपाल होए दुख जाए, गुर बिन दूजा ना ही ताओ, गुर दाता गुर देवे नाओ, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप, आठ पैर नानक गुर जाप, आसा महला पंजवा। आपे पेड़ विस्तारी साख, अपने खेती आपे राख, जद कद पेखो एक ओगी, कड़कड़ अंतर आपे सोई, रहाओ आपे सूर किरण विस्तार, तोई गुप्त सोई आकार, सरगुण निर्गुण थापे नाओ, दो मिल एक की नो ठाओ, कहो नानक गुर ब्रह्म पौ खोया, अंध रूप सब नयन अलोया, आसा महला पंजवा। उगत सियानप किशु न जाना, दिन रहन तेरा नाम खाना, मैं निर्गुण गुण ना ही कोय, तरन करावन हार प्रसोय, रहाओ मूर्ख मुग्ध अज्ञान विचारी, नाम तेरे की आस मन तारी, जब तब संजम तर्म न साधा, नाम प्रभु का मने अराधा, किशु न जाना मत मेरी तोरी, विनवत नानक ओढ़ प्रातोरी, आसा महला पंजवा। हर हर अखर दोए ए माला, जबत जबत पै दीन दयाला, करो बेनती सदगुरे अपनी, कर किरपा रखो शरणाई, मोको देव हरे हर जपनी, रहाओ हर माला और अंतर तारे, जन्म मरण का दुख निवारे, हृदय संभाले मुख हर हर बोले, सो जान ए तुत कते न डोले, कहो नानक जोरा चैनाए, हर माला ताके संग जाए, आसा महला पंजवा। जिसका सब कित का होए, हे जन लेपना व्यापे कोए, हर का सेवक सदगी मुक्ता, जो करे सोई फल जान के, हाथ निर्मल दास की जुगता, रहाओ सगल त्यागर सरणी आया, हे जन काम व्यापे माया, नाम निधान जाके मन माहे, जिसको चिंता सुपने नाहे, कहो नानक गुरपूरा पाया, परम मोह सगल बिनसाया, आसा महला पंजवा। जौ सो प्रसन्न होयो प्रभ मेरा, ता दुख परम कौ कैसे नेरा, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, मोए निर्गुण को लिहो उधारी, रहाओ मिट गया दुख सारी चिंता, फल पाया जब सदगुरमंता, सोई सत सत गए सोए, सेमर सेमर रख कंठ परोए, कहो नानक कौन ओ कर्मा, जाके मन मसिया घर नामा, आसा महला पंजवा। काम क्रोध अंकार विभूते, हर सिमन कर हर जन छूटे, सोए रहे माया मदमाते, जागत भगत सिमरत हर राते, रहाओ मोह परमो जोन पवाया, अस्तिर भगत हर चरण ते आया, बंधन अंध कूब गृह मेरा, मुक्ते संत बुझे हर नेरा, कहो नानक तो प्रसरणाई, ईहा सुख आगे गद पाई, आसा महला पंजवा। तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे, तू मेरा ठाकुर हम तेरे द्वारे, तू मेरा कर्ता हम सेवक तेरा।

नरक सुर्ग फिर अवतारा। कहो नानक जो लाया नाम सबल जन्मता का प्रवान। आसा मोहल्ला पंजवा सोए रही प्रभ खबर न जानी। और पया बौर पछतानी प्रे प्रेम सहज मन अंध तरोरी। प्रभ मिलबे की लालसा ताते आलस कहां करोरी। रहाओ कर्म अमृत आन निसारे खिसर गयो तूम पर डारे। साध मुहे लादी अंकारे दोष नहीं प्रभ करने हारे। साध संग मिटे परम अंधारे नानक मेली सिर जनहारे। आसा महला पंजवा चरण कमल की आस प्यारे। जम कंकर नस गए विचारे तू चित आवे तेरी माया। सिमरत नाम सगल रोग खया। रहाओ अनक दुख देवे अवरा कहो पहुंच न साके जन तेरे कहो। दर्श तेरे की प्यास मन लागी सहज आनंद बसे बैरागी। नानक की अरदास सुनी जय केवल नाम हृदय मैं दीजे। आसा महला पंजवा मन तृप्तानो मिटे जंजाल। प्रभ अपना होया कृपाल संत प्रसाद परी बनी। जाके गृह सब किस गए पूर्ण तो फेटिया निर्भय तनी। रहाओ नाम दृढ़ाया साध कृपाल मिड़गी भूख महा विकराल। ठाकुर अपने की नी दात जलन बुझी मन होई सांत। मिट गई पाल मन सह समाना नानक पाया नाम खजाना। आसा महला पंजवा ठाकुर स्यो जाकी बने आई भोजन पूर्ण रहे अगाई। पशु न थोरा हर भगतन को खात खर्चत दिलशत देवन को। रहाओ जाका तनी अगम गुसाई मानुख की को केत चलाई। जाकी सेवा दस अष्ट सिधाई पालक दिष्ट ताकीला गोपाई। जा को दया करो मेरे स्वामी कहो नानक नाही तिनकामी। आसा महला पंजवा जो मैं अपना सदगुर त्याया तब मेरे मन मां सुख पाया। मिट गई गणत बनास्यो संसा नाम

प्रीत सद निर्मल होए, सुनो मीत ऐसा प्रेम प्यार, जी प्राण घड़ घड़ आधार, रहाओ प्रभ की प्रीत पै सगल निधान, प्रभ की प्रीत हृदय निर्मल नाम, प्रभ की प्रीत स शोभावंत, प्रभ की प्रीत स मिटी है चिंत, प्रभ की प्रीत तो पव जल तर, प्रभ की प्रीत जमते नहीं डरे, प्रभ की प्रीत सगल उधारे, प्रभ की प्रीत चले संगारे, आपो कोई मिले ना फूले, जिस कृपाल तिस साथ संग कूले, ओ नानक तेरे कुर्बान, संत ओढ़ पर तेरा तान, आसा महला पंजवा, उबत हो के राज कमाया, कर कर अनर्थ विहाजी माया, संचत संचत थैली कीनी, प्रवस्ते डार अवर को दीनी, काग गगरिया अंब मझरिया, गर्भ गर्भ वाहू में परिया, रहाओ निरपो होयो पया निहंगा, चीतन आयो करता संगा, लश्कर जोड़े किया संभाहा, निकस्या भूख ता होए गयो स्वाहा, ऊंचे मंदर मैल अररानी, हस्त कोड़े जोड़े मन पानी, वड़ परवार पूत अरतिया, मोए पचे पच अंधा मुआ, जिने उपाह तिने बिनाहा, रंग रस जैसे सुबनाहा, सोई मुक्त इस राजमाल, नानक दास जिस खसम दयाल, आसा महला पंजवा, इन सो प्रीत करी कनेरी, जौ मिलिए तो वधे वधेरी, कल चमड़ी जो छोड़े नाही, ला छुट्टो सगुर की पाई, जग मोहनी हम त्याग गवाई, निर्गुण मिलो वजी वधाई, रहाओ ऐसी सुंदर मन को मोह, बाढ़ घाट गृह बन बन जोह, मतन लागे होए के मीठी, गुर प्रसाद में खोटी जीठी, अगर उसके वडे ठगाऊ, छोड़े नाही बाप ना माऊ, मिली अपने उनले बंदे, गुर कृपा ते मैं सगले साधे, अब मोरे मन पया आनंद, पौ चूका टूटे सा फंद, कहो नानक तैं सतगुर पाया, हर सगला में सुखी बसाया, आसा महला पंजवा, आठ पहर निट कर जाने, प्रभु का किया मीठा माने, एक नाम संतन आधार, होए रहे सबकी पक्षार, संत रहे सुनो मेरे पाई, हुआ की महिमा कथन न जाई, रहाओ वर्तन जाके केवल नाम, अंदर रूप कीर्तन विश्राम, मित्र सत्र जाके एक समाने, प्रभ अपने बिन अवर न जाने, कोट कोट अग काटन हारा, दुख दूर करन जी के दातारा, सूर वीर बजन के बली, कौला बपरी संति छली, ताका संग बाचे सुरदेव, अमोग दर्स सबल जाकी सेव, कर जोड़ नानक करे अरदास, मुझे संते टहल दीजे गुणतास, आसा महला पंजवा, सगल सुख जग एक के नाम, सगल धर्म हर के गुणगाम, महा पवित्र साध का संग, जिस पेड़त लागे प्रवरंग, गुर प्रसाद होए आनंद पावे, जे सिमरत मन होए परगासा, ताकि गतमित कहन ना जावे, अरहाव वर्तनेम मजन तिस पूजा, वेद पुराण तिन सिमरत सुनी जा, महापुनीत जाका निर्मल थान, साध संगत जाके हर हर नाम, प्रत्यो जोजन सगले पवन, पद पुनीत ताकि पगरेन, जाको पेट्यो हर हर राय, ताकि गतमित कथन ना जाए, आड़ पैर कर जोड़ तिहावो, उन साधा का दर्शन पावो, मुए गरीब को लिहो रलाए, नानक आए पै शरणाए, आसा महला पंजवा, आड़ पैर उद किसनानी, तधी पोग लगाए सो ज्ञानी, बिरथा काहू छोड़े नाही।

सदा प्रफुल्ल काट काट संपट भय रे जाका अपग सभा संघ है साधा आरती कीर्तन सदा आनंद महिमा सुंदर सदा बेअंत जिसे प्राप्त इस ही लेना संत चरण ओ आयो शरणा आचड़े उखर साल।

ऐसी स्त्री एक राम उपाई, उन सब जग खाया, हम गुर राखे मेरे पाई, रहाओ पाठ गौरी सब जग जोया, ब्रह्मा विष्ण महादेव मोया, गुरमुख नाम लगे से सोया, वर्त नेम कर था के पुनः चरना, तट तीर्थ पवे सब तरना, से उबरे ये सदगुर की सरना, माया मोहे सबो जग बाधा, हमें पचे मनमुख मुँह राखा, गुर नानक बाँ पकर हम राखा, आसा महला पंजवा, सर्व दुख जब विसरे स्वामी, ईगा ऊहा कामना प्राणी, संतर्पता से हर घर त्याय, हर कृपा अपने नाय लाए, सर्व सुख पर तुमरी रिजाए, रहाओ संग होवत को जांत दूर, सो जन्म मरता नित नित चूर, जिन किसी दिया ते चेतुत नागे, माँ बिखिया में दिन रहन जागे, कौ नानक प्रसिमरो एक, गद पाइगे गुर पूरे टेक, आसा महला पंजवा, नाम जपत मन तन सब हरिया, काल मर दोख सगल पर हरिया, सोई दिवस पला मेरे पाई, हर गुण गाए परम गद पाई, रहाओ सात जना के पूजे पैर, मिटे उपद्रे मन ते बैर, गुर पूरे मेल चगर चुकाया, पांच दूत सब वसगत आया, जिस मन

बंधन काट सेवक कर राखे, अमृत बानी रसना चाखे, वडे भाग पूज गुर चरना, सगल त्याग पाई प्रसरना, गुर नानक जाको पया दयाला, सो जन होआ सदा निहाला, आसा महला पंजवां, सतगुर साचे दिया पेज, चिर जीवन उपजिया संजोग, उदरे माए आए किया निवास, माता कै मन बहुत विगास, जम्या पूत भगत गोविंद का, प्रगटिया सामे लिखिया तुरका रहाओ। दसी मासी उगुं बालक जन्म लिया, मिटिया सोग मां आनंद चिया, गुरबाणी सखी आनंद गावे, साचे साहिब कै मन भावे, वधी वेर बहु पीढ़ी चाली, धर्म कलागर बंद बहाली, मन चिंदिया सतगुरु दिवाया, पै अचिंत एक लिवलाया, ज्यों बालक पिता ऊपर करे बहुमान, बुलाया बोले गुर के पान, गुज्जी शन्नी नाही बात, गुरु नानक तुठा की नींदात, आसा महला पंजवा, गुर पूरे राख्या दे हाथ, प्रगट पया जन का प्रताप, गुर गुर जपी गुरु गुर त्याई, जी की अरदास गुरु पे पाई, रहाओ शरण परे साचे गुरदेव, पूर्ण होई से

गोविंद गोपाल दयाल प्रभ तू सब ना के नाथ तेरी सिट सब रहाओ सदा सहाई संत पेखे सदा हजूर नाम बिहू नड़िया से मरन विसूर विसूर दास दासन पाए मिटिया तिना गौन विसरिया जिन्ना नाम तिनाड़ा हाल कौन जैसे पस हरियाओ तैसा संसार सब नानक बंधन काट मलाव आ प्रभ आसा महला पंजवा हब्बे थोक विस्तार इको ख्याल कर झूठा लाए गुमान मंत्र अर्प तार आड़ पैर साल आहे सिरजनहार तू जीवा तेरी दात किरपा करो मुंह रहाओ तोई कम कमाए जित मुख उजला तोई लगे सच जे तू दे अला जो न टहंदो मूल सो कर रास कर इको चित वसाय कदे ना जाए मर तिना प्यारा राम जो प्रापाणिया गुर प्रसाद अकथ नानक वखाणिया आसा महला पंजवा जिन्ना ना विसरे नाम से कनेहा खेद न जाणो मूल साई जेया मन तन होए निहाल तुम संग पेटिया सो पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया रहाओ जेते खंड ब्रह्मांड उधारे तिनखे जिन मन मुठा आप पूरे भगत से जिसनु मने आप सोई मानिए प्रगट पुरख प्रवान सब ठाई जानिए दिन सरैन आरात संभाले साहा सहा नानक की लोचा पूर सचे पातशाह आसा महला पंजवा पूर रहा सर्व ठाए हमारा खसम सोए एक सहब सिर छत दूजा ना है कोय जो पावे त्यों राख रखन हारिया कोई बिन अवर न कोय नदर निहारिया रहाओ प्रद पाले प्रवे आप धड़कर सारिये जिस मन उठा आप तिस नाम सारिये जोज करे सो आप अपन पाणिया भगता का सहाई जुग जुग जानिया जप जप हरका नाम कदे ना चूरिए।

वन्यन वहंदे बोतड़ा चरण मन चढ़ लंगी है आड़ पैर गुण गाय साधु संगी है रहाओ भोगे भोग अनेक विण नावे सुनिया हर की भगत बिना मर मर रुनिया तप्पड़ पो सुगंध तन मर्दन मालना बिन सिमरन तन शाह।

तद गीते बंदा गुर काटी अज्ञानता, तब छुटके फंदा जावला हुक्मना बूझता, तभी लो दुखिया गुरम हुक्म पछाणिया, तभी ते सुगिया ना को दुश्मन दुखिया, ना ही को मंदा गुर की सेवा सेवको, नानक खसमे बंदा। आसा महला पंजवा, सुख सहज आनंद कणा, हर कीर्तन गाओ गृह निवारे सतगुरु, दे अपना नाओ बलिहारी गुरे अपने, साध सद बल जाओ गुरु विटो हो वारे, जिस मिल सच सुवाओ रहाओ सागन अपसागन, किसको लगे जे चीत न आवे।

मार्ग पंथ सुम्हारी ना दृढ़ गुरमन में दिया मोरी तसा बुझारी बिन पी गावो रह नी गावो गावो सास सास रसनारी सत्संगत में विसास होए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक कहो त्यो दान दियो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवणी कथा नयन दर्श देखो।

भगत परम पौ नस हर नानक सदा हजूर आसा मोहल्ला पंजवां आगम अगोचर दर्स तेरा सो पाए जिस मस्तक भाग आप किरपाल किरपा प्रतारी सदगुर बख्शिया हर नाम कालजुग उधारिया गुरदेव मालमूत मूर जे मुगध होते सब लगे तेरी सेव रखाओ तू आप करता सब सृष्ट तरता समय रहा सुमाए धर्म राजा बिस्माद होआ सब पई पैरी आए साजुग त्रेता द्वापर पणिये कालजुग ऊतमो जुगा माघे अहे कर करे सो अहे कर पाए कोई ना पकड़िए किसे थाए हर जियो सोई करे

मो कुटुंब बिखे रसमाते मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ शोभन आनंद उलास मान मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संग तेल मर्म ना लहे कर कृपा रखे सत्संग नानक शरण आहे आसा महला पंजवा ए पदे ओहा प्रेम प्री हरहाओ कनक मानक गज मोती न लालन नह नहा नही राजन पागन हुकुम न साधन किश किश न चाही चरणन शरणन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तप्त हरी मिले प्रेम प्री आसा महला पंजवा गुरे दिखायो लोए न रहाओ ईत ऊत कड़ कट तू ही मोहना कारण करना तारण करना एक सोयना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोयना आसा महला पंजवा हर घर नाम अमोला ओ सहज सुहेला रहाओ संग सहाई छोड़ न जाई ओ अगह अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुरते पाया नानक ओ हर का चोला आसा महला पंजवा अपनी भगत निभागे ठाकुर आयो आहे हरहाओ नाम पदार्थ हुए सकारत हृदय चरण बसागे

अनप्राणः रवयो सर्वथानः लयो ज पयानः पायो पेड़ थानः तो चुकी सगल कान लैनो जिस मथानः पय पावक पार प्राणः निरकर किसे थानः हार रस रसे मानः लाती तिस पूगानः नानक सह सुमायो रे मना आसावरी महला पंजवा हर हर हर गुणीगा जपिगे सहज तुनीगा साधु रसन पनीगा छूटन बिद सुनीगा।